प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशांकवन्निनयनं वंदे मुकुंदप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। प्रातः काल के इस पुण्य वेला में, सावन प्रभात के इस विशेष कार्यक्रम में, मॉरिस ऑफ सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के तत्वावधान में आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन।

हम भगवान शिव की उपासना कर रहे हैं। श्रावण मास और अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया है। भगवान विश्वनाथ जिन्होंने कहा कि जया वृत महाविश्व जयानावृत के नचित जयोत्तर समस्तस्य जयांत्यंत निरुत्तरम, अपने विराट विश्व को जिन्होंने व्याप्त कर रखा है, किंतु आप किसी से भी व्याप्त नहीं हैं, आपकी जय हो। हे शंभु जय हो, आप सबसे उत्कृष्ट हैं, किंतु आपसे कोई श्रेष्ठ नहीं है, आपकी जय हो। जय हो जयाद्भुत जया क्षुद्र जया क्षत जया व्यय जयामेव जया माय जया भव जया मल, आप अद्भुत हैं, आपकी जय हो। आप अक्षुद्र मतलब महान हैं, आपकी जय हो। आप निर्विकार हैं, आपकी जय हो। आप अविनाशी हैं, आपकी जय हो। अप्रमेय परमात्मन, आपकी जय हो। माया रहित महेश्वर, आपकी जय हो। अजन्मा शिव, आपकी जय हो। निर्मल शंकर, आपकी जय हो। महाभुज

महाबाहो, महासार, महागुण, महति कीर्ति कथा से युक्त महाबली, महामायावी, महारसिक तथा महारथ, आपकी जय हो। नमः परम देवाय, नमः परम हेतवे, नमः शिवाय शांताय, नमः शिवतराय ते। आप परम आराध्य को नमस्कार है, आप परम कारण को नमस्कार है, शांत शिव को नमस्कार है, और आप परम कल्याणमय प्रभु को नमस्कार है। त्वदधीनमिदं कृत्स्नं जगद्धि ससुरासुरं अतस्ताद्विहितामाज्ञां क्षमते कोतिवर्तितुं। देवताओं और असुरों सहित यह संपूर्ण जगत आपके अधीन है, अतः आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने में कौन समर्थ हो सकता है। अयम पुनर्जनो नित्य भवदेक समाश्रयः, भवानतो नुग्रयास्मै प्रार्थितं संप्रयच्छतु। हे सनातन देव, ये सेवक एकमात्र आपके ही आश्रित है, अतः आप इस पर अनुग्रह करके इसे इसकी और प्रार्थित वस्तु प्रदान करें। जयाम्बिके जगन्मातर, जय सर्व जगन्मयी, जयानविध कैश्वर्ये, जयानुपम विग्रहे। अम्बिके जगन्माता, आपकी जय हो। सर्व जगन्मयी, आपकी जय हो। असीम ऐश्वर्यशालिनी, आप

नमस्कार, श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस श्रावण प्रभात कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। प्राणी मात्र की कल्याण कामना। सर्वत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामय।

0: सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माम काश्चित् दुखवाद् भवेत्। इस विश्व में सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सब कल्याण मंगल का दर्शन करें, कोई भी क्लेश मात्र दुख का भागी न हो। सर्वस्तन्तुरः दुर्गाणि सर्वेणि भद्राणि पश्यन्तु सर्वसद्बुद्धिमाप्नोति सर्वत्र सर्वत्र नन्दतु। कठिनाइयों से, विपत्तियों से सब त्राणि पाए, सब मंगलों का दर्शन करें, सब सद्बुद्धि को प्राप्त हों और सब सर्वदा सर्वत्र आनंद भाल करें। दुर्जनः व्यंजनो भूयात् संजन शांति माप्नुयात् शांतो मुंचे बंधुस्यो मुक्त चांत्यात विमोचयेत्। दुष्ट लोग जन जो जाए सजन शांति प्राप्त करे, शांत जन बंधन से मुक्त हो जाए और मुक्त जन दूसरों को बंधन से मुक्त करें। स्वस्ते प्रज्ञायां परिपालयन्तं येन मार्गेन मयि महिषां गो ब्राह्मणेभ्यो सुभस्तेभ्यो नित्यलोकां समस्ता सुखिन भवन्तु। प्रजाजनों का कल्याण हो, राजा लोग न्याय युक्त मार्ग से पृथ्वी पर शासन करें, गौओं एवं ब्राह्मणों का सर्वदा मंगल हो, संपूर्ण लोक सुखी हुए। इस प्रकार से ऐसे मनुष्य अपने कामना करें कि सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिना, सबका सुख हो। ओम शांति शांति इति शुभम।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।
1: हरि ओम तत्सत् वर्णानामर्थसंघाणां रसानां छन्दसामपि मंगलानां

Shanti Siddha Swanta Stamishwaram Shri Shri Sita Ramachandraya Namaha Shri Ramadutaya Namaha Shri Guru Charana Kamalibhyo Namaha Bhagavate Shri Samba Sada Shivaya Namaha Om Namo Bhagavate Siyaram Krishna Hari Narayan. Maa Sati ke apradh ka varnan na karte huwe Bhagavan ne keval apni sankalp ko अपने मन में रख दिया। तुलसीदास जी आगे बढ़ाते हुए कहते हैं,

शिव जी का रुख देखकर सती माता ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय यानी भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा।

वृष केतु भगवान शिव ने सती को चिंता युक्त देखकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश पहुंचे।

0: फिर वहाँ शिव जी अपना प्रतिज्ञा को याद करके बड़े के पैर के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसही कैलाश तब अधिक सोचु मन माही, मरमु न को जान कछु जुग सम दिवस सराई। तब सती जी ने कैलाश पर रहने लगे, उनके मन में बड़ा दुख हुआ था। इस रहस्य को कोई भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। आपकी ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति, ओम श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु, साधुवाद, जय श्री हरि।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: ओम कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाम एवं त्वयि नान्यतोस्ति न कर्मलिप्यते नरे। आदरणीय श्रोताओं नमस्ते। आर्य सभा मॉरिशस के पंडित जीवन महादेव की ओर से इस विशेष कार्यक्रम के अवसर पर आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मनुष्य के शरीर को वेदों का क्षेत्र कहा गया है। एक जगह लिखा है, स्वे क्षेत्रे अनमीवा विराज, अर्थात अपने शरीर को निरोग रखें। शरीर के को क्षेत्र कहने का विशेष प्रयोजन है। क्षेत्र में कृषि कर्म होता रहता है, बोना काटना आदि चलते रहना चाहिए। इसी से इसको कुरुक्षेत्र भी कहते हैं। इस दृष्टि से वेद में संदेश है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कर्म करते हुए ही कर्म की तीन गतियाँ हो सकती हैं, कर्म विकर्म तथा अकर्म, न करने को अकर्म तथा उल्टे कर्म करने को विकर्म कहते हैं। शेष कर्म का अर्थ सत्कर्म या सुकर्म ही हुआ। कर्म अकर्म की विवेचना करना बहुत गहरा है। गीता में कहा गया कि कर्म किम कर्म मेति वाक्यो अपि मोहित, अर्थात कर्म क्या है अकर्म क्या है इस विषय में कवि लोग विद्वान लोग विमुग्ध हैं। इस मंत्र से पूर्व वाले मंत्र में कहा गया, मा गृह कस्य स्विद्धनम्, अतः किसी के धन का लालच मत कर। पराये धन का लालच करना समस्त बुरे कर्मों का उपलक्षण है, अर्थात बुरे कर्म मत कर, इससे विकर्म का निषेध हो जाता है। समस्त कर्म और अकर्म के विवाद में कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेषतम से अकर्म का निषेध कर दिया गया है। शेष कर्म सुकर्म रह गए, इससे अर्थ हुआ मनुष्य इस संसार में संपूर्ण आयु सत्कर्म करता हुआ ही जीने की इच्छा करें। कहीं पर किसी ने कहा है

एवं त्वयि नान्यते दोस्ति न कर्म लिप्यते नरे, ऐसा करने पर कर्म तुझे बांधेगा नहीं और कोई उपाय नहीं। जब कामना छोड़कर केवल कर्तव्य बुद्धि से भगवान की आज्ञा समझकर कर्म किए जाते हैं, तब से कर्म बंधन के कारण नहीं बनते। इच्छा वासना के कारण कर्म बंधन के कारण नहीं बनते। ध्यान कीजिए। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।

हि विद्वानुदयनं पथ आरोहणम् आक्रमणम् जीवतो जीवतो अयनम्। ओम शम। गहलोत राजपूत महासभा की ओर से प्रस्तुत मैं पंडिता आकाशवंती पियति इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वेद मास की शुभकामना है आप सभी को। यहाँ पर उक्त मंत्र में कहा गया है कि हे मानव, मार्ग से चढ़ाव को जानता हुआ और प्रोत्साहित किया हुआ तू फिर इस पथ पर आरोहण कर, तू आगे बढ़, क्योंकि उन्नति करना, आगे बढ़ना प्रत्येक जीव का, प्रत्येक मनुष्य का मार्ग है, प्रत्येक जीव मनुष्य का उद्देश्य और लक्ष्य है। श्रोतागण, इस मंत्र में शब्दार्थ ये होता है

कि मंत्र में हारे थके और निरुत्साही व्यक्ति के लिए एक दिव्य संदेश भी है। वो पहला संदेश इस मंत्र में है कि हे मानव, यदि तू प्रयत्न करके थक गया है तो क्या हुआ, तू हतोत्साह मत हो, उत्साह के घट रीते मत होने दे, आशा को अपने जीवन का संबल बनाकर फिर इस मार्ग पर आरोहण कर। दूसरा निर्देश यह है कि मार्ग की चढ़ाई को देखकर घबरा मत, सदा स्मरण रख कि तेरे लिए चढ़ाई का मार्ग ही नियत है। आशा और उत्साह से इस मार्ग पर आगे ही आगे बढ़ता जा। आगे बढ़ना, उन्नति करना ही जीवन मार्ग है। पीछे हटना, अवनति करना मृत्यु मार्ग है। पथ कठिन है तो क्या हुआ, परीक्षा तो कठिनाई में ही होती है। श्रोतागण, तीसरा निर्देश यह इस मंत्र में है कि निराश और हताश होने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़, उन्नति कर, क्योंकि आगे बढ़ना और उन्नति करना प्रत्येक जीव का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति अवश्य होगी। हाँ, इसके लिए बल लगाने की, पुरुषार्थ करने की तथा निराशा और दुर्बलता को मार भगाने की आवश्यकता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: अथ वेद मंत्राः ओम इद्धर्यो सचा सम्मिश्ल आवचो युजा इंद्रो वज्रे हिरण्ययः।
2: जैसे वायु के आने जाने से वायु में विलक्षण गति उत्पन्न होती है और उस गति से संसार के पदार्थों में चलने फिरने और ठहरने की शक्ति आती है, जैसे उसी वायु के कारण जीभ में बोलने का सामर्थ्य उत्पन्न होता है, ठीक वैसे ही वज्र के समान तेजोमय न्यायकारी प्रतापी और दंड देने वाले राजा के न्याय से सब लोगों में शुभ गुणों का मेल होता है। परमात्मा एवं राजा के उत्तम न्याय से समाज से दोषों और बुराइयों का नाश होता है तथा मनुष्यों की वाणी में सत्यता का वास होता है। राजाओं का राजा परमात्मा सब पर ऐश्वर्य की वर्षा करता है।
1: ओम सहधानो योग आभुवत्सराये सपुरंध्याम गमत्वाजे भिरासनः।
2: मनुष्य सदैव परमात्मा पर अपनी आस्था व्यक्त करते हुए उसकी उपासना में तत्पर रहें। ईश्वर की भक्ति में सबका मार्ग प्रशस्त होता है। साथ ही अनुभवी पूर्ण ज्ञानी और पुरुषार्थी विद्वानों की संगति करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की बुद्धि और कार्य करने की कुशलता उत्तम बनती है। बुद्धि श्रेष्ठ होने से जीवन में अन्न बल धन ऐश्वर्य और आत्मिक उन्नति की वृद्धि होती है। धर्मात्मा विद्वान एवं पुरुषार्थी मनुष्यों के संघ से ग्राम नगर और राष्ट्र की उन्नति होती है।
1: ओम पृथ्वी शांतिरंतरिक्षम।

0: शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिः विश्वे मे देवाः शांति सर्वे मे देवाः शांति शांति शांतिभिः ताभिः शांतिभिः सर्वशांतिभिः शमयामोहं यदिह घोरं यदिह क्रूरं यदिह पापं तच्छांतं तच्छितं सर्वमेव शमस्तु नः।
1: भूमि और अंतरिक्ष शांतिदायक हो, प्रकाशमान सूर्यादि लोक और जल सभी के लिए शांतिदायक और सुखकारी हो, सभी औषधियां अन्न सोमलता आदि और वनस्पति वट पीपल आदि वृक्ष शांति प्रदान करने वाले हो, विश्व के सभी देव सभी विद्वान और दिव्य शक्तियां सबके लिए कल्याणकारी हो, नकारात्मक पाप युक्त एवं क्रूरता का व्यवहार शांत हो, सभी सुख देने वाले कार्यों और साधनों के द्वारा सर्वत्र पूर्ण शांति स्थापित हो, धैर्य देने वाली शांति मन में स्थिर रहे, निर्दयता और पाप की भावना शांत हो। मनुष्यों को हमेशा ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जिससे धरती और प्रकृति के सभी पदार्थ सबके लिए शांतिदायक हो।

0: टाइम चेक सुबह के 6 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आशिता से। आशिता आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार। आज शुक्रवार 21 अगस्त 2026 के पहले प्रातकालीन फ्लैश न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले स्थानीय खबरें। मॉरिशस ने पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार के साथ एक समझौता तय किया है। पोर्ट लुइस में कल हस्ताक्षरित ये सरकारी समझौता देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दीर्घकालीन सहयोग का ढांचा भी तैयार करता है। मॉरिशस और भारत के बीच कल हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत पेट्रोलियम की कीमतों को लेकर भी बातचीत की गुंजाइश रखी गई है। व्यापार मंत्री माइकल सिक्वेन के अनुसार भू राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव होने पर दोनों पक्ष फिर से बातचीत कर सकते हैं, जबकि हर साल समझौते की शर्तों पर पुनर्विचार का भी अवसर रहेगा। और सऊदी अरब की दमम जेल में बंद मॉरिशस के नागरिक अनिशन एलन से मॉरिशस के राजदूत ने मुलाकात की। ड्रग मामले में हिरासत में लिए गए एलन की कानूनी स्थिति और जेल में उनकी परिस्थितियों की जानकारी ली गई, जबकि उनके वकील गमावालाइदन ने उनकी बेगुनाही पर भरोसा जताया है। एबन में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक नई प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक और इलेक्ट्रॉनिक्स से लैस इस प्रयोगशाला का उद्देश्य मॉरिशस के युवाओं को अपने विचारों को व्यावहारिक रूप देने और नए प्रोजेक्ट विकसित करने का अवसर देना है। मॉरिशस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ने रेजवी में मॉरिशस कल्चर ट्रिप .mu नामक एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य पर्यटकों के साथ साथ विद्यार्थियों और शिक्षकों को मॉरिशस के इतिहास, संस्कृति और विरासत को बेहतर ढंग से समझने का अवसर देना है। और रेजवी में आयोजित एक फील्ड डे के दौरान फारी ने आयन और जिंक से भरपूर जैव सुदृढ़ बीन्स की किस्म फिरीना को फिर से किसानों के सामने पेश किया। अब मुख्य चुनौती इस किस्म को अधिक संख्या में किसानों द्वारा

अपनाने और बड़े पैमाने पर उत्पादन तक पहुंचाने की है ताकि स्थानीय उत्पाद खाद्य उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस के ताज़ा मिसाइल हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है जबकि कई इमारतों और अन्य ठिकानों को नुकसान पहुँचा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि जब तक देश के पास पर्याप्त एंटी बैलिस्टिक रक्षा प्रणाली नहीं होगी तब तक रूस गंभीरता से शांति के बारे में नहीं सोचेगा। तो इसके साथ ये संक्षिप्त समाचार समाप्त हो, चला बढ़ते हैं अब हम मौसम की हाल की ओर। मौसम का हाल, आम हालत, पूर्व से आने वाली कुछ बादल हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है। सुबह के समय विशेषकर पूर्वी और सेंट्रल प्लेटो वाले इलाकों पर बादल घिराएंगे और थोड़ी वर्षा होगी। आंशिक तौर पर दोपहर बाद में विशेषकर पश्चिमी इलाकों में बादल घिराएंगे और रहकर बारिश होगी। शाम के समय आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी और प्रवाह रेखा के पास समुद्र सामान्य रहेगा तथा दक्षिण पश्चिम की ओर से 2 मीटर के जुआर उठेंगे। तापमान, अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा यानी सेंट्रल प्लेटो पर 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय सुबह 6:28 पर और सूर्यास्त शाम 5:58 पर। तो इसी के साथ ये फ्लैश न्यूज समाप्त हो चला। हमारी ड्रॉप की मुलाकात पुनः होगी ठीक 6:30 बजे। आज्ञा दीजिए।

বেলা তাজগি ভরি শুরুয়াত। ভোর কি বেলা তাজগি ভরি শুরুয়াত।

0: प्रणाम और सुप्रभात श्रोतागण, घरे मिलाते चलिए। समय सुबह के 6:05 हो चुके हैं इस शुक्रवार की, 21 अगस्त 2026 को साथ निभा रही है पूजा। ये MBC रेडियो मॉरिशस का सीधा प्रसारण है। श्रोताओं, कहा जाता है आपके अच्छे संस्कार और अच्छा व्यवहार आपकी ही वह कमाई है जो जीवन भर आपके काम आते हैं। आइए इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम का आरंभ करते हैं सुधा वृष्टि से।
1: हिंदू महासभा द्वारा आइए सुनिए सुधा वृष्टि।
2: हरि ओम तत्सत्।

प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः श्रीरामदूताय नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः ओं नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरि नारायण। सभी श्रोताओं को सादर नमन। मैं बाबा जी गिरीश शर्मा हिंदू महासभा की ओर से आप सभी का आज फ्राइडे 21 अगस्त के सुधा वृष्टि कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ।

श्रोताओं, आगामी रविवार 23 अगस्त संडे 23 अगस्त को श्रावण पुत्रदा एकादशी का पावन व्रत है, जिसे पवित्र एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का पालन करने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में इसका विशेष महत्व संतान सुख की प्राप्ति तथा संतान की रक्षा के लिए बताया गया है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का विधि पूर्वक पूजन करें। पंचामृत से स्नान करा करके उन्हें पान, पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पण करें। सायंकाल में श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें अथवा उसका पाठ करें। अगले दिन द्वादशी तिथि में ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर विधि पूर्वक व्रत का पारण करें। ऐसी मान्यता है कि श्रावण पुत्रदा एकादशी का प्रभाव इतना महान है कि निसंतान दाम्पत्यों को भी संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। जिनके यहाँ पहले से संतान है उनके लिए भी यह व्रत अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। इसके पुण्य प्रभाव से संतान के जीवन में सुख, समृद्धि, आरोग्य और मंगल बना रहता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो कोई भी पुत्रदा एकादशी की कथा सुनता है अथवा सुनाता है उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मैं सभी श्रोताओं से विनम्र निवेदन करता हूँ कि श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पावन व्रत का पालन करें। भगवान श्री हरि नारायण सभी परिवारों को संतान सुख, उत्तम स्वास्थ्य और सुख समृद्धि प्रदान करें। इसी भावना के साथ भगवान श्री हरि के चरणों में मेरी प्रार्थना है। श्रोताओं, अब बात करें आगामी गुरुवार 27 अगस्त की, 27 अगस्त की। हिंदू महासभा की ओर से हम ऐसे मानते हैं कि इस दिन यानी थर्सडे 27 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा का पर्व मनाना चाहिए। श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर श्रावणी उपाकर्म, रक्षाबंधन, गायत्री जयंती तथा संस्कृत दिवस मनाए जाते हैं। ध्यान रहे कि इस वर्ष जो है श्रावण पूर्णिमा तिथि गुरुवार 27 अगस्त थर्सडे 27 अगस्त प्रातः 7:40 पर यानी 7:40 AM से आरंभ होकर के फ्राइडे 28 अगस्त प्रातःकाल लगभग सुबह के 8 बजे तक रहेगी। किंतु 28 अगस्त को यानी 28 अगस्त को सुबह के 5:22 को 5:22 इन द मॉर्निंग उस समय से आंशिक चंद्र ग्रहण भी लगेगा। मॉरिशस मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज के अनुसार यह आंशिक चंद्र ग्रहण मॉरिशस में दिखाई देगा यानी विजिबल होगा। इसलिए श्रावण पूर्णिमा से संबंधित सभी धार्मिक अनुष्ठान जैसे जनेऊ बदलना, रक्षा सूत्र बदलना, रक्षाबंधन मनाना, गायत्री यज्ञ करना तथा अन्य सभी संस्कार जो है वह थर्सडे 27 अगस्त को ही संपन्न कर लेनी चाहिए, क्योंकि फ्राइडे 28 अगस्त की सुबह चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहेगा और दोपहर 12 बजे के बाद भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष यानी भाद्रपद मास के अंधरिया आरंभ हो जाएगा। श्रावणी उपाकर्म गुरु और शिष्य के पवित्र संबंध का पर्व है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि इसी दिन वेद अध्ययन का शुभारंभ करते थे तथा उपनयन संस्कार प्राप्त द्विज अपने संकल्प का नवीनीकरण करते थे। जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका है वे इसी दिन यानी श्रावण पूर्णिमा विधिपूर्वक नया जनेऊ धारण करते हैं। यदि संभव हो तो अपने गुरुजी या अपने कुल पुरोहित के सानिध्य में, विशेषकर किसी पवित्र नदी या जलाशय के तट पर यह जनेऊ बदलने की संस्कार संपन्न करें तो अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन अपने गुरुजी अथवा अपने कुल

पुरोहित के यहाँ से हाथ में बंधा हुआ रक्षा सूत्र भी बदलवाना चाहिए। रक्षाबंधन केवल भाई बहन का ही पर्व नहीं, बल्कि गुरु और शिष्य के बीच भी रक्षा, विश्वास और आध्यात्मिक संरक्षण का प्रतीक है। गुरु अपने शिष्य के हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर उसके आध्यात्मिक एवं लौकिक कल्याण का संकल्प लेते हैं। इसलिए थर्सडे 27 अगस्त को अपने हाथ के रक्षा सूत्र अवश्य ही बदलवाएं। भारतीय संस्कृति में विश्वास का बंधन सर्वोपरि है और रक्षाबंधन उसी विश्वास, प्रेम, समर्पण, निष्ठा और आत्मनियता का उत्सव है। यह पर्व केवल रक्षा का वचन देना नहीं होता, बल्कि हृदय को जोड़ने का संदेश भी देता है। प्राचीन समय में रक्षा सूत्र केवल भाई बहन तक सीमित नहीं था। किसी की रक्षा करना, दीर्घायु अथवा आरोग्य की कामना से कोई भी प्रियजन जो मन में चाहे वो किसी के प्रति यह रक्षा सूत्र बांधते थे या फिर भेजते भी थे। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रम मणिगणा इव, अर्थात जैसे धागा मोतियों को फिलोकर एक सुंदर माला का रूप देता है, वैसे ही परमात्मा संपूर्ण सृष्टि को एक सूत्र में बांधे हुए है। उसी प्रकार रक्षा सूत्र भी समाज को प्रेम और विश्वास के सूत्र में जोड़ते हैं। मैं विशेष रूप से अपनी सभी बहनों से निवेदन करूंगा कि आप जो अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधने वाला है, वह रक्षा सूत्र के लिए यदि संभव हो तो आप कलावा एवं लाल पीले रंग से रंगा हुआ सूता धागा ही प्रयोग करें। आजकल बाजार में अनेक प्रकार की तैयार राखियां, जैसे कहते हैं रेडीमेड, उपलब्ध है, किंतु अपने हाथों से बनाई हुई राखी में जो पवित्रता, प्रेम, स्नेह और आत्मनियता होती है, उसका कोई विकल्प नहीं है। राखी तैयार करने के बाद उसे अपने इष्टदेव, अपने कुल देवता अथवा श्री हनुमान जी को अर्पित करें और फिर प्रसन्न मन तथा अटूट विश्वास के साथ अपने भाई की कलाई पर बांधें। यही रक्षा सूत्र भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है और भाई को यह संकल्प दिलाता है कि वह जीवन भर अपनी बहन की रक्षा करेगा। रक्षाबंधन से संबंधित अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें महाभारत में वर्णन आते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया, तब उनके सुदर्शन चक्र ने उनकी उंगली काट दी। यह देखकर द्रौपदी जी ने तत्काल अपनी साड़ी का आंचल फाड़कर उनकी उंगली पर बांधी थी। भगवान श्री कृष्ण ने उस प्रेम और सेवा का ऋण स्वीकार करते हुए द्रौपदी जी की रक्षा का वचन दिया। उसी वचन की पूर्ति उन्होंने दुशासन द्वारा चीरहरण के समय द्रौपदी जी की लाज बचाकर की। तभी से रक्षाबंधन को प्रेम, विश्वास और रक्षा का पावन पर्व के रूप में मनाया जाता है। थर्सडे 27 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के दिन गायत्री जयंती तथा पूर्णिमा व्रत का भी विशेष विधान है। यदि आपको गुरु दीक्षा प्राप्त हुआ है तो उस दिन आप अपने घर पर गायत्री यज्ञ अवश्य करें। जो भक्त पूर्णिमा व्रत रखते हैं वह प्रातःकाल से ही अपना व्रत आरंभ करें और रात्रि में चंद्रमा के दर्शन करके उन्हें अर्घ प्रदान करते हुए अपने व्रत का पारण करें। श्रावण पूर्णिमा ऋषियों के स्मरण, पूजन और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पर्व भी है। ऋषि हमारे संस्कृत साहित्य तथा वैदिक ज्ञान के मूल स्रोत है। इसलिए थर्सडे 27 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के दिन ऋषि पर्व और संस्कृत दिवस भी मनाया जाएगा। संस्कृत केवल एक प्राचीन भाषा नहीं है, बल्कि हमारी सनातन संस्कृति की आत्मा है। वेद, उपनिषद, पुराण, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, महाभारत, योग, आयुर्वेद, ज्योतिष, दर्शन और असंख्य दिव्य ग्रंथ है जो केवल संस्कृत भाषा में ही रचे गए।
यदि संस्कृत का ज्ञान ना हो तो हम अपने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को उसके वास्तविक स्वरूप में समझ नहीं

0: सके। श्रावण पूर्णिमा को संस्कृत दिवस मनाने का उद्देश्य महर्षियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना तथा नई पीढ़ी को संस्कृत के अध्ययन और संरक्षण के लिए प्रेरणा देना है। यह दिन हमें स्मरण कराता है कि हमारी सभ्यता का मूल आधार ज्ञान, संस्कृति, संस्कार है और संस्कृत इन तीनों का सेतु है। थर्सडे 27 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के दिन भगवान शिव को समर्पित श्रावण मास के विशेष पूजन की भी समापन होगा। अनेक स्थानों पर रुद्र यज्ञ की पूर्णाहुति दी जाएगी तथा पूरे श्रावण मास में चलने वाले श्री रामचरित मानस मास परायण भी विराम लेते हैं। चलिए आज की कार्यक्रम को हम विराम की ओर लेके चलते हैं, इस मंगल कामना के साथ कि आने वाले यह श्रावण मास की पूर्णिमा अथवा श्रावण मास के जो शेष दिन रह गया वह सबके लिए मंगलमय है और सबके जीवन में सुख समृद्धि और ईश्वर भक्ति ले आए। इसी प्रार्थना के साथ मैं आज के कार्यक्रम को विराम दूं। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति, ओम श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। साधुवाद, जय श्री हरि।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदू महासभा द्वारा सुधा वृष्टि।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: सभी वेद के श्रोताओं को सादर नमस्ते। मैं आचार्य मोहन आर्य सुरबंधु गुरुकुल नर्मदापुरम मध्य प्रदेश भारत से आज आप सभी के मध्य में मॉरिशस आर्य रवि वेद प्रचारिणी सभा के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम में एक वेद मंत्र को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। बंधुओं, इस सामान्य जगत में आप जाकर के देखेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को मनुष्य कहता है, परंतु वेद कहता है कि मनुष्य वही होगा जिसके अंदर अच्छे गुण होंगे, अच्छे कर्म करने की भावना होगी, और ये मनुष्य बनने का अधिकारी कौन होगा। तो इसी विषय को लेकर के आज हम ऋग्वेद के एक बड़े प्रसिद्ध मंत्र की व्याख्या की ओर बढ़ रहे हैं। वेद का ये मंत्र है, ओम तंतुम तन्वंजसो भानुमन्विहि ज्योतिस्मतः पथोरथ धियाकृतान अनुल्वणम वयत जोगवामपो मनुर्भव जनया देव्यम जनम। इस मंत्र के ऋषि देवा है और देवता अग्नि है, और निचित जगती छंद में ये मंत्र लिखा हुआ है। निषाद स्वर के साथ हमने इसका पाठ किया। आइए इसके सामान्य शब्दार्थ की ओर बढ़ते हुए फिर हम व्याख्या की ओर बढ़ें। मंत्र कह रहा है, संसार के क्रियाकलाप अथवा संबंधों को पूर्ण या विस्तृत करते हुए प्रकाश का अनुसरण करो। बुद्धि से बनाए हुए प्रकाशयुक्त मार्ग या साधनों की रक्षा करो। निरंतर ज्ञान एवं शुभ कर्मों का आचरण करने वाले मनुष्य मान्य पुरुषों के द्वारा प्रदर्शित उलझन रहित श्रेष्ठ कर्मों का विस्तार करो, आचरण करो, और तुम विचारशील प्राणी अर्थात मनुष्य बनो। दिव्य गुणों से परिपूर्ण देवहितकारी विशिष्ट मनुष्य को उत्पन्न करो। बंधुओं, किसी भी जानवर को ये नहीं कहा जाएगा कि तुम जानवर बनो, किसी भी पक्षी को ये नहीं कहा जाएगा कि तुम पक्षी बनो, परंतु मनुष्य को कहा जाता है। और ये वेद का मंत्र कह रहा है, मनुर्भव जनया देव्यम जनो, मनुर्भव हे मनुष्य, तुम मनुष्य बनो। अब ये बात किस लिए सिद्ध होती है? सर्वप्रथम हम यह जाने कि मनुर्भव मनुष्य बनो, जहाँ जानवर को या किसी पशु पक्षी को अपने आप को जानवर

या पशु पक्षी कहलाने के लिए किसी भी प्रमाण की देने की आवश्यकता नहीं है, परंतु मनुष्य को प्रतिपल प्रतिक्षण अपने आप को मनुष्य बताने के लिए प्रमाण देने की आवश्यकता है। उसे ऐसे कर्म करने की आवश्यकता है कि हाँ मैं मनुष्य हूँ। तो बंधुओं, इसलिए वेद का मंत्र कह रहा है मनुर्भव, तुम अच्छे लोगों के संग में रहकर अच्छे कर्मों को करते हुए मनुष्य बनो और एक उत्तम संतानों की उत्पत्ति आप करो। प्रस्तुत वेद मंत्र द्वारा परमेश्वर ने संसार के मनुष्यों को जो उपदेश दिया है वह संसार के किसी भी तथा कथित धर्म ग्रंथ में प्राप्त नहीं हो सकता। यहाँ मनुष्य को मनुष्य बनने का उपदेश दिया गया है। कोई भी राष्ट्र भौतिक ऐश्वर्य से कितना ही संपन्न हो जावे किंतु उसके नागरिक सच्चे मनुष्य न बन सके तो उसके भौतिक ऐश्वर्य का कोई विशेष महत्व नहीं रहता। हम कितना ही धन ऐश्वर्य कमा लें, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना लें, कितने बड़े रास्ते हम बना लें, सड़कें बना लें, परंतु यदि हमारे आसपास रहने वाले लोग मनुष्य नहीं हैं, मनुष्य बनने के अधिकारी नहीं हैं, तो उसका कोई महत्व नहीं होता। सच तो यह है कि मनुष्यता के बिना कोई भी राष्ट्र समाज या देश अपनी उन्नति को स्थिर रखने में सक्षम नहीं हो सकता। तो हमें यदि अपने राष्ट्र समाज और देश को स्थिर बना करके रखना है तो हमें मनुष्यता को धारण करना होगा। सुना जाता है कि एक दिन एक व्यक्ति दिन में जलता हुआ लैंप लेकर बाजार में चारों ओर घूम घूम कर मनुष्यों की शक्लों का निरीक्षण करता फिरता था। बुद्धिजीवी लोगों ने पूछा, मित्रवर ये क्या कर रहे हो, तुम दिन में लैंप लेकर के क्यों घूम रहे हो और इतस्ततः क्या तुम ढूंढ रहे हो, तुम्हारे घूमने का तात्पर्य क्या है? तो उसने उत्तर दिया, मैं मनुष्यों को ढूंढ रहा हूँ। विचार करो, मनुष्यों के बीच में रह करके मनुष्यों का भ्रमण करके मनुष्यों को यदि ढूंढा जा रहा है तो कहीं ना कहीं प्रश्न खड़ा होता है कि हम मनुष्य के इस मानव देह में रहकर भी मनुष्य नहीं रहे, हमारे वो कर्म हमारा वो आचरण मनुष्यता की ओर नहीं बढ़ा। बंधुओं, जात हुआ कि शक्ल के आधार पर तो मनुष्य नहीं है, किंतु मनुष्य जिन गुणों के आधार पर कहा जाता है वे गुण कुछ और ही होते हैं। मानवता का तात्पर्य यह है कि मनुष्य मनुष्य को नहीं अपितु प्राणी मात्र को स्वात्मा के समान प्रेम से देखते हुए उसके साथ आत्मीयता का व्यवहार करे। वेद के उल्लेखित उपदेश पर मानव का यदि आचरण हो जावे तो मानव समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार कहीं भी दिखाई न दे। वर्तमान में राष्ट्रों में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को बर्बाद करने में लगा हुआ है, आपस में लड़ाई झगड़े, आपस में युद्ध लगे हुए हैं। यदि ये केवल वेद की उस आज्ञा का पालन कर ले कि हमें मित्रता के समान मित्रस्य हम चक्षुः सर्वाणि भूतानि समक्षन्ताम्, प्रत्येक जीवों को प्रत्येक मानवों को अपनी मित्रता की दृष्टि से मुझे देखना है तो ये लड़ाई झगड़े, ये अत्याचार, ये अनाचार, भ्रष्टाचार कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। आवश्यक है कि हम वेद के अनुसार मनुष्य बनने का प्रयास करें, क्योंकि यदि आप देखेंगे तो आचार्य चाणक्य जी ने भी चाणक्य नीति में लिखा कि येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। वो मनुष्य भी मृगों के समान है, जानवरों के समान है, जिसके अंदर ये अच्छे गुण नहीं होते। क्योंकि ध्यान रखना, भोजन, निद्रा, भय और संतानों की उत्पत्ति की क्रिया में मनुष्य तथा पशु समान ही माने गए हैं। अर्थात मनुष्य भी भोजन करते हैं, पशु भी भोजन करते हैं। मनुष्य भय करते हैं, एक दूसरों से डरते हैं, जानवर भी एक दूसरों से डरते हैं। संतानों की उत्पत्ति भी पशु और मनुष्य समान ही करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यदि मनुष्य को अलग मनुष्यता दिखाई देती है तो वो होती है उसकी विद्या, उसका तप, उसका दान, उसका ज्ञान, उसका शील, उसके श्रेष्ठ गुण, उसके कर्म, स्वभाव, ये सब उसको अलग दिखाते हैं। तो यदि मनुष्य हम बने तो हमारे अंदर दान, ज्ञान, तप, विद्या, अविद्या, ये सब हर प्रकार से सच्चे रूप में होनी चाहिए। तो सब लोग वेद के इस मंत्र की व्याख्या को या इसके अर्थ को समझने का प्रयास

करें कि हम सब लोग मनुष्यता की ओर बढ़ें और उत्तम मनुष्यों को जन्म देते हुए अपने इस संसार को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इति ओम।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिलाते चलिए सुबह के ठीक 6:30 बजे। शुक्रवार 21 अगस्त 2026 के इस प्रातकालीन पहले समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। मॉरिशस ने पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार के साथ एक समझौता तय किया। पोर्ट लुइस में कल हस्ताक्षरित यह सरकारी समझौता देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक सहयोग का ढांचा भी तैयार करता है। मॉरिशस और भारत के बीच कल हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत पेट्रोलियम की कीमतों को लेकर भी बातचीत की गुंजाइश रखी गई। व्यापार मंत्री माइकल सिक्वेन के अनुसार भू राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव होने पर दोनों पक्ष फिर से बातचीत कर सकते हैं, जबकि हर साल समझौते की शर्तों पर पुनर्विचार का भी अवसर रहेगा। एबन में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक नए प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक और इलेक्ट्रॉनिक्स से लैस इस प्रयोगशाला का उद्देश्य मॉरिशस के युवाओं को अपने विचारों को व्यवहारिक रूप देने और नए प्रोजेक्ट विकसित करने का अवसर देना है। FCC की हाई प्रोफाइल जांच के सिलसिले में कारोबारी और सोशल मीडिया

0: हस्ती मुजफ्फर लाल महमूद उर्फ मूस की तलाश तेज कर दी गई है। कल उनके घर पर जांच अधिकारियों ने कार्रवाई की थी, लेकिन पूछताछ के लिए साथ चलने से इनकार करने के बाद आधिकारिक समन जारी किए जाने से पहले ही वह लापता हो गए। लाहौजा में जमीन विवाद को लेकर कथित गोलीबारी में एक व्यक्ति घायल, जबकि संदिग्ध हमलावर के भी घायल होने की खबर है। वहीं कल बोबासह में मेट्रो लाइन के पास एक व्यक्ति का शव मिला, जिसके गले पर चोट के निशान पाए गए। और उधर फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी जांच में बी एक्सचेंज के पूर्व मैनेजर नीतीश सिबारत को गिरफ्तार किया गया, जबकि गुन्नेट्स में स्थित उनके घर की तलाशी में करीब 2 लाख रुपए और विदेशी मुद्रा समेत कई दस्तावेज जब्त किए गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस के ताजा मिसाइल हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। सबसे पहले स्थानीय खबरें। मॉरिशस अब अपने पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। इस सिलसिले में भारत सरकार के साथ एक समझौता तय किया गया। इस समझौते पर हस्ताक्षर की आधिकारिक समारोह कल दोपहर पोर्ट लुइस में हुई, जिसमें प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम और भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी मौजूद थे। सरकार से सरकार के बीच हुए इस समझौता ज्ञापन में मॉरिशस की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार करने का भी प्रावधान है। प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम ने कहा कि ये पहल एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण का हिस्सा है और इसका उद्देश्य देश की ऊर्जा जरूरतों को अधिक सुरक्षित बनाना है। वहीं भारत के पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के बीच मौजूद विश्वास और मजबूत संबंधों को दर्शाता है। इस पर हम सुनते हैं ये रिपोर्ट सुमेरा अकबर अली के साथ।
1: सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम की औपचारिक भारत यात्रा के दौरान पेट्रोली पैदावारों की सप्लाई का मुद्दा चर्चा में रहा था। इस साल की शुरुआत में एआई इंपैक्ट समिट के दौरान श्री नरेंद्र मोदी के साथ फिर से ये मुद्दा उठाया गया था। कल पोर्टली में इन सभी बातचीत को सच्चाई का रूप दिया गया, जो मध्य पूर्व की जंग से पहले की जाती आ रही है। इस युद्ध की वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी आई है। पोर्टली में 2 दस्तावेजों का आदान प्रदान किया गया, पहली मर्शन और भारतीय सरकारों की प्रोटोकॉल संधि और दूसरी दस्तावेज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के बीच एक सेल्स एंड परचेस एग्रीमेंट की रही।
2: द साइनिंग ऑफ दिस मेमोरेंडम इज ऑफ स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस फॉर मॉरिशस, वन दैट विल अबव एवरीथिंग एल्स।
1: डॉक्टर नवीन राम गुलाम बताते हैं, ये प्रोटोकॉल संधि मॉरिशस के लिए रणनीतिक अहमियत रखती है। सबसे पहले हमारी ऊर्जा सुरक्षा, हमारी अर्थनीति और पक्के तरीके से दोनों देशों की सॉलिडारिटी और भरोसेमंद रिश्तों को मजबूत किया गया है। सरकार और मुस्लिम जनता की तरफ से भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बहुत आभारी हैं, जिन्होंने मॉरिशस और भारत की साझेदारी को मजबूत करने में खुद कटिबद्धता दिखाई। मॉरिशस के लिए ये प्रोटोकॉल समझौता एक संगीन वक्त पर तय हुआ है, जब ऊर्जा की वैश्विक मंडियां अभूतपूर्व बदलावों और अस्थिरताओं का सामना कर रही हैं।
2: When global energy markets are beset by unprecedented volatility.
1: ये G2G समझौता 5 सालों के लिए है। सितंबर के आखिर में इंडियन ऑयल रिफाइनरी से पहली खेप के पहुंचने का इंतजार है। भारतीय पेट्रोल और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ये तरक्की न सिर्फ एक सादा व्यापारिक ट्रांजैक्शन है, बल्कि दोनों देशों का भरोसा दर्शाती है। हरदीप सिंह पुरी बताते हैं,
3: मॉरिशस फ्यूल सिक्योरिटी नाउ विल नॉट रेस्ट ऑन द अनसर्टेनिटी ऑफ टेंडर्स।
1: अब मॉरिशस में ईंधन की सप्लाई की सुरक्षा टेंडर प्रक्रिया से जुड़ी अनिश्चितता पर निर्भर नहीं रहेगी, बल्कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से 5 सालों की गारंटीड सप्लाई कमिटमेंट पर आधारित होगी। ये कटिबद्धता मॉरिशस की पूरी आयात जरूरतों को पूरा करेगी। ये वास्तव में अपनी तरह का पहला समझौता है जो किसी भारतीय सरकारी तेल कंपनी ने दक्षिण एशिया के बाहर किसी देश के साथ किया है। भारत सिर्फ ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है, बल्कि दुनिया के बाकी हिस्सों को रिफाइंड पेट्रोली पैदावारों का निर्यातक भी है। हम इस क्षमता को सिर्फ अपना अधिकार नहीं समझते, हम इसे एक जिम्मेदारी के रूप में देखते हैं। दुनिया भर में अपने दोस्तों और साझेदारों के लिए एक भरोसेमंद, पारदर्शी और स्थिर ऊर्जा स्रोत बनना।
3: We see it as a responsibility a responsibility to stand as a dependable, transparent, and stable source of energy.

0: energy for our friends and partners across the world.
1: Dr. Naveen Ramgulam ke mutabik, desh ki urja suraksha ki hifazat karne mein ye rannitik samjhota badi ahmiyat rakhta hai. Ve batate hain,
2: manifesting its unwavering commitment to the prosperity and resilience of Mauritius.
1: भारत एक बार फिर मॉरिशस की समृद्धि और मजबूती के प्रति अपनी अटल प्रतिबद्धता का प्रदर्शन कर रहा है। दस्तखत किए गए ये समझौता राजनीतिक इच्छा शक्ति को ठोस और स्पष्ट परिणामों में बदलने के इरादे को दर्शाता है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री की हैसियत से मैं अपनी सरकार की इस प्रतिबद्धता को दोहराता हूँ कि मॉरिशस और भारत के बीच के विशेष और रणनीतिक साझेदारी को और गहरा किया जाएगा। ये साझेदारी हमारे साझा इतिहास, हमारे मूल्यों और आपसी भरोसे जैसे मजबूत स्तंभों पर आधारित है। भारतीय प्रधानमंत्री के मिशन के दौरान ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने, हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर बात करने तथा ग्रीन ऊर्जा की ओर परिवर्तन पर चर्चाएं हुई।
3: मॉरिशस और भारत की सरकारों के बीच कल हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के संबंध में व्यापार मंत्री माइकल सिक्वियन ने पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों के मुद्दे पर विशेष जोर दिया। उनके अनुसार समझौते में ये प्रावधान है कि भू राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव होने पर दोनों पक्ष भी से बातचीत की मेज पर लौट सकती है। इसके अलावा हर वर्ष समझौते की शर्तों पर दोबारा बातचीत करने के लिए भी एक अवसर रखा गया है। इस संबंध में माइकल सिक्वियन ने अपना विचार दिया और तलब है कि ये साझेदारी केवल पेट्रोलियम तक सीमित नहीं है, इसके तहत जैव ईंधन और नवीनीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी सहयोग का रास्ता खुलेगा, जिसमें करीब 20 मेगावाट क्षमता वाले फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की एक परियोजना भी शामिल है। अन्य खबरों में, सऊदी अरब की दमम जेल में ड्रग के एक मामले में बंद मॉरिशस के एक नागरिक गणेशन एलन से रविवार को सऊदी अरब में मॉरिशस के राजदूत गियाद हलमत ने मुलाकात की। ये मुलाकात सऊदी अरब में कानूनी या प्रशासनिक मुश्किलों का सामना कर रहे मॉरिशस के नागरिकों को मॉरिशस दूतावास की ओर से दी जाने वाली कौंसुलर सहायता के तहत हुई। इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि गणेशन एलन को हिरासत में रखने के दौरान उनके अधिकारों और आवश्यक परिस्थितियों का उचित रूप से पालन किया जा रहा है। वहीं गणेशन एलन का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील रामावालाइदेन ने महत्वपूर्ण सहायता के अभाव पर अफसोस जताया है और कहा है कि वह मामले में गिरफ्तार में लगातार विभिन्न स्तरों पर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर कहा कि उन्हें अपने मुवक्किल की बेगुनाही पर विश्वास है और उनका मानना है कि गणेशन एलन को इस मामले में फंसाया गया हो सकता है। ज्यादा जानकारी लुवीना सूफी की रिपोर्ट पर सुमेरा अकबरी के साथ।
1: मैंने एक रिपोर्ट तैयार की है जो कई जगहों पर जा चुकी है। यूरोपीय संघ और सऊदी अरब को भी ये रिपोर्ट मिल गई है। सऊदी अरब में हमने एक वकील की सेवा ली जो उससे मिलने जाएंगे। बदकिस्मती से आज तक मुसलसल तौर पर कोई मदद नहीं मिली। दूतावास को अपना किरदार निभाना चाहिए, एक मॉरिशस नागरिक का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, चाहे उसका जो भी जुर्म हो, एक मॉरिशस व्यक्ति की प्रतिरक्षा की जानी चाहिए। मैंने अपनी रिपोर्ट में मिस्टर एलन की बेगुनाही का उल्लेख किया है।
4: Donc nous devons faire bien des morts, nous devons continuer à faire bien des morts et mon faire un rapport que pour démontrer là dans un rapport là qui monsieur Yalan innocent. Et dans tout rapport qui mon faire, c'est pas le premier rapport qui mon faire, on prend depuis d'entier jusqu'à maintenant. Mon faire comme on fait un rapport, c'est surtout pour démontrer qu'il y a un innocent et qu'il peut risquer ban miscarriage of justice, c'est-à-dire erreur judiciaire. Vous connaissez une affaire de drogue, mais c'est moi qui ai oublié le rapport pour qu'il dans différents langues.
3: खबरों का आगे बढ़ाती हैं। कारोबारी और सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध मुजफ्फर लाल मामूद, जिन्हें मूज के नाम से भी जाना जाता है, फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की एक हाई प्रोफाइल जांच के सिलसिले में तलाशी जा रही हैं। कल उनके आवास पर जांच अधिकारियों ने कार्रवाई की थी, लेकिन पूछताछ के लिए उनके साथ चलने से इनकार करने के बाद जब तक उन्हें आधिकारिक समन भेजने की प्रक्रिया पूरी की जाती तब तक वह लापता हो चुकी थी। गौरतलब है कि मुजफ्फर लाल मामूद को इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। हाल ही में उन्हें कॉम्बे में 10 मिलियन मॉरिशस

0: रुपए के कथित एक्सटोर्शन के प्रयास के मामले में भी गिरफ्तार किया गया था। लाहौजा में कल एक स्थानीय निवासी को कथित तौर पर गोली लगने से चोटें आई। उसे इलाज के लिए रोजबेल अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि गोली चलाने वाला संदिग्ध व्यक्ति भी घायल हुआ है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जमीन को लेकर हुए विवाद के बाद दोनों व्यक्तियों के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा था। वहीं कल शाम बुबासे में मेट्रो की पटरियों के पास एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया। मृतक के गले पर चोट के निशान पाए गए हैं। शव मिलने के बाद कुछ समय के लिए मेट्रो सेवा भी प्रभावित हुई। मौत की सही परिस्थितियों का पता लगाने के लिए आज शुक्रवार को पोस्टमार्टम किया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग के एक अन्य मामले में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच के तहत ब्रिटिश अमेरिकन एक्सचेंज के पूर्व मैनेजर 42 वर्षीय नीतीश सिबारत को गिरफ्तार किया गया है। गुडलैंड्स के अटलस रोड में स्थित उनके आवास पर तलाशी ली गई, जहां से करीब 2,00,000 मॉरिशन रुपए और विदेशी मुद्रा साथ ही विदेशी मुद्रा की खरीद से संबंधित बी एक्सचेंज के दस्तावेज जब्त किए गए। जांच से मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार नीतीश सिबारत ने कथित तौर पर ऐसे धन से विदेशी मुद्रा खरीदने में मदद की जिसके अवैध गतिविधियों से प्राप्त होने का संदेह है। इस काम में कई अन्य लोगों के कथित तौर पर शामिल होने की भी बात सामने आई है। नीतीश सिबारत से उनके वकीलों की मौजूदगी में अंडर वार्निंग पूछताछ की गई, जिसके बाद उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के एक अस्थाई आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन्हें आज शुक्रवार 21 अगस्त को सुबह करीब 11:30 बजे पोर्टली साउथ कोर्ट में पेश किया जाएगा। जांच के दौरान कई अन्य लोगों की भी पहचान हुई है, जिनसे FCC द्वारा पूछताछ किए जाने की संभावना है। जांच जारी है और अधिकारियों का मुख्य उद्देश्य धन के स्रोत का पता लगाने के साथ साथ इस मामले में अन्य संभावित लोगों की भूमिका निर्धारित करना है। एबेन में तकनीकी नवाचार को समर्पित एक नए प्रयोगशाला ने आज अपने दरवाजे खोल दिए हैं। ये प्रयोगशाला खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी आधुनिक तकनीकों से लैस हैं। इसका मुख्य उद्देश्य मॉरिशस के युवाओं को संवैधानिक ज्ञान से आगे बढ़कर उन्हें उसे व्यवहार में लागू करने और अपने खुद के प्रोजेक्ट विकसित करने का अवसर प्रदान करना है। मॉरिशस में अपनी तरह की अनूठी बताई जा रही इस प्रयोगशाला की स्थापना मॉरिशस के अधिकारियों और गैर सरकारी संगठन स्टेम पावर के बीच सहयोग से हुई है। आज मॉरिशस में शुरू की गई ये प्रयोगशाला युवाओं के लिए प्रयोग, सृजन और नवाचार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने की दिशा में काम करेगी। ICT मंत्री अविनाश राम तोहल से बात की एनाबेल वुल्बे ने, विवरण गीता सरायन का।
1: इस सुसज्जित कमरे में कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की किट्स मौजूद हैं। ये प्रयोगशाला, जिसे मॉरिशस में अपनी तरह की अनोखी प्रयोगशाला बताया जा रहा है, मॉरिशस के अधिकारियों और स्टेम पावर नामक गैर सरकारी संगठन के सहयोग से स्थापित की गई है। ये संगठन विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में कौशल विकसित करने के लिए काम करता है। इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा युवाओं को स्टेम से जुड़े क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। आज मॉरिशस में शुरू की गई ये प्रयोगशाला युवाओं के लिए प्रयोग, सृजन और नए विचारों को विकसित करने की जगह के रूप में काम करेगी। ICT मंत्री अविनाश राम तोहल कहते हैं, इस लैब में करीब 24 कंप्यूटर हैं, जो एक सर्वर से नियंत्रित हैं, कई उपकरण हैं। ठेकेदार, टेक्नोप्रेन्योर, कॉलेज के छात्र और यूनिवर्सिटी के छात्र तथा खोजकर्ता अपनी पैदावारों की जाँच यहाँ करने आ सकते हैं। इसका उद्देश्य युवाओं को उन तकनीकों तक सीधी पहुंच देना है, जिनके बारे में वे अक्सर पहले किताबों या केवल सैद्धांतिक रूप से सीखते हैं। ये तरीका कुछ छात्रों को पहले से ही पसंद आ रहा है। इंपीरियल कॉलेज के लेक्शान जावन कहते हैं, इस लैब से छात्रों को लाभ होगा। जिनके पास विचार हैं, वे अपनी परियोजनाओं को साकार कर सकते हैं, लेकिन इन विचारों को आगे बढ़ाने के लिए उपलब्ध उपकरणों का सही इस्तेमाल करना भी जरूरी है। ICT मंत्रालय में AI यूनिट के अधिकारी रामा कृष्णा मुडालिया कहते हैं, एक ऑनलाइन सिस्टम है, लोग एक स्लॉट बुक कर सकते हैं, यहाँ आकर वे अपना काम कर सकते हैं, मार्गदर्शन मिलेगा, वे AI आर्टिफैक्ट्स रच सकते हैं और जीवन तथा समाज की समस्याओं से निपट सकते हैं। एबेन स्थित ये प्रयोगशाला छात्रों, टेक्नोप्रेन्योर और शोधकर्ताओं के लिए खुली रहेगी। फिलहाल ये सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक खुली है और आने वाले समय में इसके समय को बढ़ाने की योजना है।

अगर मॉरिशस की खोज करना उसके इतिहास, संस्कृतियों और विरासत को बेहतर ढंग से समझने का भी एक माध्यम बन जाए तो इसी उद्देश्य से मॉरिशस कल्चर ट्रिप .mu नामक एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कल रिजवी में मॉरिशस ने

0: विरासत से परिचित कराने का एक नया अनुभव प्रदान करता है। ये प्लेटफॉर्म पर्यटकों के साथ साथ विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए भी उपयोगी होगा, जिसका उद्देश्य संस्कृति और विरासत को सीखने के एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में विकसित करना है। इस परियोजना की शुरुआत वर्ष 2022 में मॉरिशस की एथिक्स एजुकेशन फेलोशिप में भागीदारी से हुई थी। ये एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में मूल्यों पर आधारित शिक्षा को शामिल करना है। इस पर ज्यादा जानकारी इस रिपोर्ट में गीता सुनारायण के साथ।
1: मॉरिशस, उसके इतिहास, उसकी संस्कृति और विरासत को जानना, साथ ही एक दूसरे के साथ बेहतर तरीके से रहना सीखना, यही उद्देश्य है मॉरिशस कल्चर ट्रिप का, जो मॉरिशस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन द्वारा विकसित एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म को तैयार करने में कई माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों और छात्रों को शामिल किया गया और उन्हें प्रशिक्षण भी दिया गया। ये परियोजना एथिक्स एजुकेशन फेलोशिप प्रोजेक्ट के तहत शुरू की गई है, जिसकी शुरुआत 2021 में हुई थी। इसका उद्देश्य नैतिक शिक्षा और वैश्विक नागरिकता से जुड़े मूल्यों को बढ़ावा देना है।
2: Il est important pour nous amener mes enfants, ça mène field trip là aussi, parce que comme ça, ce cas visualise, ce cas trouvé, ce cas expérimenté aussi, ça reste comme si gravé.
1: दूसरों का सम्मान करना, उनकी बात सुनना और अलग-अलग सोच और पहचान को स्वीकार करना, यही इस नई वेबसाइट के जरिए विकसित करने की कोशिश की जा रही है। ये प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से एक शैक्षणिक साधन के रूप में तैयार किया गया है, ताकि बच्चों को एक दूसरे के साथ बेहतर तरीके से बातचीत करने और दूसरों को बिना किसी पूर्व धारणा की समझने में मदद मिल सके। मॉरिशस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की निदेशिका मीला देवी सिरतन दुसिया कहती हैं,
2: Sa website là, ce n'est pas juste pour un guide touristique, c'est surtout pour qui ben les enfants et ben les autres aussi, ben grands, ben adultes, ben professeurs, tout le monde, sont capables d'aller dans 21 sites de pour lui qui n'y a manque.
1: इसका उद्देश्य इन सीखों के जरिए युवाओं को वैश्विक नागरिकता के लिए भी तैयार करना है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से MIE शिक्षा के केंद्र में नैतिक मूल्यों को फिर से स्थापित करना चाहता है और युवाओं को उनके रोजमर्रा के जीवन में इन मूल्यों के महत्व की याद दिलाना चाहता है। शिक्षा मंत्री महेन गंगा प्रसाद कहते हैं,
3: Nous montrer qui mène nous l'éducation nationale, l'y accès de développer bonne valeur que nos bons enfants apprennent. Ça respect mutuel qui importe là. Vous êtes bien un citoyen, pas seulement citoyen mauricien, mais un citoyen du monde. Et vous êtes capable de faire tout ça. Et vous êtes capable d'accepter.
1: मॉरिशस को जानने समझने से आगे बढ़कर मॉरिशस कल्चर ट्रिप संस्कृति को दूसरों को बेहतर समझने का एक माध्यम बनाना चाहता है। MIE के लिए ये युवाओं तक ऐसे जरूरी मूल्य पहुंचाने का एक तरीका है, जिनके आधार पर एक अधिक सम्मानपूर्ण और सभी को साथ लेकर चलने वाला समाज बनाया जा सके।
0: और उधर यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ताज़ा हमलों में कम से कम 15 लोगों की मौत हुई है। कीव के मेयर विटाली क्लिचको ने बताया कि यूक्रेन इस समय वायु रक्षा मिसाइलों की कमी का भी सामना कर रहा है। यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस के अनुसार रात भर हुए हमलों में राजधानी के विभिन्न इलाकों में कई अपार्टमेंट इमारतों और गोदामों को निशाना बनाया गया। एक बच्चों के अस्पताल और एक स्कूल को भी नुकसान पहुंचा है। कीव में क्षतिग्रस्त अपार्टमेंट इमारत के बाहर से बातचीत में मेयर विटाली क्लिचको ने कहा कि यूक्रेन को गोला बारूद और मिसाइल रोधी प्रणालियों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देश को अपने सहयोगी देशों से समर्थन चाहिए। बढ़ते मौसम संबंधी जानकारियों की ओर। आम हालत, पूर्व से आने वाले बादल हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है सुबह के समय विशेषकर पूर्वी इलाकों और सेंट्रल प्लेटो वाले इलाकों पर बादल घिराएंगे और थोड़ी देर के लिए वर्षा होगी। आंशिक तौर पर दोपहर बाद में विशेषकर पश्चिमी इलाकों में बादल घिराएंगे और रहकर वर्षा होगी। शाम के समय आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के पार समुद्र सामान्य रहेगा। दक्षिण पश्चिम की ओर से 2 मीटर के ज्वार उठेंगे। तापमान, अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा, सेंट्रल प्लेटो पर 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच और साहिली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय सुबह 6:28 पर और सूर्यास्त शाम 5:58 पर।

इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का और कंसोल पर हमारे सहयोगी कादर का साथ मिला, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। बढ़ते हैं अब हम शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। केवल नगर बेलरीव में 55 साल की 55 ईयर्स ओल्ड की कुमारी डेजी रानी सिबन जिन्हें आरती के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे की मृत्यु भारत में हुई है। उनकी अर्थी उनकी मां चिंता सिबालक के घर बेलरीव से बाद में उठाई जाएगी। क्रिमेशन आफ्टरवर्ड्स। सिमेट्री रोड इस्कालिये में 67 साल की 67 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती बिजवंती माला ओमो पैदाशनाम बलुआम और जिन्हें फिया के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके बेटे नाविसन ओमो के घर लिस्काली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बासेकांग लिस्काली के शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टूडे एट 1 PM। कॉन्फुक्रो ब्रांच रोड कास्टेल में 78 साल की 78 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती परबावती लोबिन पैदाशनाम चुनिया और जिन्हें सोनिया के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 2:30 बजे उनके बेटे राकेश लोबिन के घर कास्टेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अलीब्रियों की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टूडिया 2:30 PM। लॉन्ग्वा स्ट्रीट थ्रोंगबो में 83 साल की 83 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती विजय लक्ष्मी बाचू पैदाशनाम जीवलाल और जिन्हें रानी के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 12:30 बजे उनके पति ज्ञान बाचू के घर थोंगबो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टुडे एट नून। लाबोद स्ट्रीट बोआरूज पॉम्पलीमूसेज में 64 साल की 64 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती यशोदा तिलक जिन्हें अनुराधा के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके घर पॉम्पलीमूसेज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टुडे एट 1 PM। अपार्टमेंट A28 तीसरे माले पर एनएचडीसी कॉन्लुव्यू में 73 साल के 73 ईयर्स ओल्ड के श्री उदित नारायण बाबाजी जिन्हें कुमाऊं के नाम से भी ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 2 बजे उनके घर कॉन्लुव्यू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौदिगौद की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टूडिया 2 PM। वेस्टलेन पियर सिमोनेट फ्लोरियाल में 57 साल के 57 ईयर्स ओल्ड के श्री जवदेश सिंह रामजीत जिन्हें साइलेश जाफिया के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल रात 10:30 बजे उनके बेटे दीपेश सिंह रामजीत के घर फ्लोरियाल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगा की शमशान भूमि ले गई। फ्यूनरल लॉस्ट नाइट एट 10:30 PM। रॉयल रोड पोस्टिफ्लाक में 71 साल के 71 ईयर्स ओल्ड के श्री बालकारन सोनाराम जिन्हें महाज के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 2:30 बजे उनके बेटे तीरथ कुमार सोनाराम के घर पोस्टिफ्लाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लामोचा की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टूडिया 2:30 PM। डर्बी स्ट्रीट फॉर साइड क्यूबिप में 81 साल के 81 ईयर्स ओल्ड के श्री आरी गोपाल जिन्हें आरी के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 3:00 बजे उनके घर फोरेसाइड क्यूपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेगाहा की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टुडे 3 PM। मार्केट रोड लाग्रीमेंट सेंट पियर में 90 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती रूपवंती उबिलक पैदाशनाम भजन और जिन्हें दीदी मंजली के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 2:30 बजे उनके घर लाग्रीमेंट सेंट पियर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेकोंसा सेंट पियर की शमशान भूमि ले जाएगी। कमीशन टुडे 2 PM। एवेन्यू दी साबलों ग्रेनियर फ्रांस में 61 साल के 61 ईयर्स ओल्ड के श्री धर्मराज चितामन जिन्हें सुनील के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे। उनकी अर्थी अगले मंगलवार 25 अगस्त को सुबह 11 बजे फ्रांस में उनके घर

0: से उठाकर वहीं की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन ऑन ट्यूसडे 25 अगस्त एट 11 AM इन फ्रांस. कॉन्क्रेयोल एल्बियोमे, कॉन्क्रेयोल एल्बियोमे 81 साल के 81 ईयर्स ओल्ड के श्री रंजीत सिंह बायरू सिंह, श्री रंजीत सिंह बायरू सिंह जिन्हें शेखर के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी आज 2 बजे उनकी पत्नी श्रीमती बसंती बायरू सिंह के घर एल्बियो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिशलियो पिस्त्रिविया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. कमीशन टूडिया 2 PM बॉम्बू स्ट्रीट मेबर्ग में, बॉम्बू स्ट्रीट मेबर्ग में 76 साल के 76 ईयर्स ओल्ड के श्री वाल्मीकि देवी, श्री वाल्मीकि देवी जिन्हें आनंद के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे और जो पहले MPI में काम करती थी, की मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी आज सुबह 11 बजे उनके घर मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोम्बो लेन मेबर्ग की शमशान भूमि ली जा जाएगी. क्रिमेशन टूडे एट 11 AM शनफील्ड रोड रिविया जोंपा में, शनफील्ड रोड रिविया जोंपा में 78 साल की 78 ईयर्स ओल्ड की बीबी सुलमा रोजीद पैदाश नाम बोला जिन्हें सुलमा के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, इंतकाल कर गई है. इनका जनाजा कल रात 9 बजे इनके मकान रिविया जोंपा से उठाकर दफनाने के लिए पुएंटलास्को का कब्रिस्तान ले जाया गया. फ्यूनरल लॉस्ट नाइट एट 9 PM बिरला रोड कुतेज में, बिरला रोड कुतेज में 45 साल की 45 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती जीना टिकोई पैदाश नाम अलीगन और जिन्हें पूजा के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके पति राजेश टिकोई के घर कुतेज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कागुआ कास्या कुतेज के शमशान भूमि ले जाई जाएगी. कमीशन टूडे एट 1 PM मामजेलोर तेरोज में 37 साल के 37 ईयर्स ओल्ड के श्री विराज बागुबन जिन्हें दू के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है. उनके अर्थी आज सुबह 10 बजे उनकी माँ सीता बागुबन के घर त्यागोश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बामोशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. कमीशन टूडिया 10 AM कापोराल रोड गुडलैंड्स में 74 साल के 74 ईयर्स ओल्ड के श्री जगदेश दामरी जिन्हें जगदेश जाग के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी आज सुबह 11:30 बजे उनके घर गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बागोश गुडलैंड की शमशान भूमि ली जाएगी. कमीशन टुडे एट 11 AM SSR रोड कोचिमलितिया में 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड के श्री राजेंद्र तिलकधारी जिन्हें राजन के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी आज सुबह 11 बजे उनके घर कोचिमलितिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए विल्मे की शमशान भूमि ली जाएगी. कमीशन टुडे एट 11 AM शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है.
1: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं.
2: शुक्रवार 21 अगस्त को शाम 5 बजे से लावांचिया के जरनाथ शिवालय द्वारा काली पूजा का आयोजन किया गया है. श्रावण मास के संदर्भ में मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में बौलो आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा शुक्रवार 21 अगस्त को शाम 5 बजे रॉयल रोड बौलो के स्वामी दयानंद वैदिक भवन में यज और प्रवचन का आयोजन कर रहा है. प्रवचन आचार्य मोहन आर्य श्रुबंधु द्वारा होगा. शुक्रवार 21 अगस्त को शाम 3 बजे श्रावण मास के संदर्भ में मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में औषधेय रविवेद प्रचारिणी सभा शाखा नंबर 5 गांधी भवन महात्मा गांधी रोड गोष्ठिया में साप्ताहिक यज का आयोजन कर रहा है. शुक्रवार 21 अगस्त को श्रावण मास महोत्सव के संदर्भ में गहलोत राजपूत महासभा के तत्वावधान में कौतूहल राजपूत समाज शाखा नंबर 8 शाम 5 बजे कौतूहल राजपूत मंदिर रॉयल रोड कौतूहल में एक महायज का आयोजन कर रहा है.

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: दिल की बहार।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: स्पोर्ट्स न्यूज। सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भर नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। इंग्लैंड का प्रीमियर लीग सीजन 2026-2027 आज से शुरू। ओपनिंग आर्सेनल के एमिरेट्स स्टेडियम में, जहां दो चैंपियन आमने सामने होंगे, एक प्रीमियर लीग का डिफेंडिंग चैंपियन आर्टेटा का आर्सेनल, तो दूसरी ओर फ्रैंक लैम्पार्ड प्रीमियर लीग में वापस आ रहा है अपनी लीग चैंपियनशिप की चैंपियन टीम कोवेंट्री के साथ। कम्युनिटी शील्ड जीत कर आर्सेनल अब बाकी टीमों को थरथरी दे रही है। बीबीसी स्पोर्ट्स के 26 फुटबॉल पंडितों में से 23 प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आर्सेनल ही चैंपियन बनेगा। सो आज रात आर्सेनल वर्सेस कोवेंट्री, कल हल सिटी मैनचेस्टर यूनाइटेड, अर्ली की कॉफ होगा 3:30, फिर एवर्टन क्रिस्टल पैलेस, इप्सविच टाउन सन्डरलैंड, नॉटिंघम फॉरेस्ट लीड्स, ब्रेंटफोर्ड टोटनहम हॉटस्पर। लिवरपूल परसों खेलेगा न्यूकासल यूनाइटेड के मैदान में। यूईएफए यूरोपा लीग के प्लेऑफ के फर्स्ट लेग में कल काफी भारी स्कोर रहे। अंडरलेक्ट की जीत हुई 3-0 से कैरात के खिलाफ। याग्लियोना ने 4-0 से इबेरिया को हराया। रेडबुल साल्सबर्ग बेसिक्टास जीत पाए। लेच पोज़्नन ने 7-0 से टून को हराया। काबज़ोंस्पो की हार हुई। फेरेनवारोस ने उसे 1-0 से हराया। खायोवा 1 अरारात आर्मेनिया 1। फिर OFI 3 CSK मॉस्को 0, रेड स्टार बेलग्राद 3 विक्टोरिया प्लाजन 0, सिड फुडन 1 ओमोनिया निकोसिया 0, बेनफिका 3 AGF 1। कॉन्फ्रेंस लीग में ब्राइटन ने अपना मैच क्रोपिया क्रोमजो के खिलाफ। मोनाको की जीत हुई। काराबाग ने भी अपना मैच जीता। आयाक्स की जीत। अटलांटा ने अपना मैच क्रोपिया। फ्रीबर्ग ने मदरवेल को 3-1 से हराया। रेंजर्स ने याब्लुनेक को 1-0 से हराया। रिताफे की जीत। लॉ ने मिजिलान, नॉर्थ जर्लन, बोराक, लुगानो, स्पोर्टिंग ब्रागा भी जीत पाए। बाकी मैच ड्रॉ। इंग्लैंड के लीग वन में शेफील्ड वेडनेसडे 0, ब्रैडफोर्ड सिटी 1। स्पेन के लालीगा

में रायो वालेकानो एक अलावेज एक। आज के कुछ अन्य फिक्स्चर्स, ला लीगा में रियल बेटिस वर्सेस रियल सोसिएदाद, फ्रांस के लीग 1 में मार्सेई वर्सेस स्ट्रासबूर। फ्रांस न्यूज, लिवरपूल ने ब्राइटन के विंगर यांकुबा मिंटे के लिए 50 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का ऑफर भेजा, पर ब्राइटन ने तुरंत इनकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, दाम कम है नहीं तो नॉट फॉर सेल। द रेड्स अभी तक बाकोला का इंतजार कर रहे हैं। क्रिकेट में इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच पहले टेस्ट मैच में दूसरे दिन इंग्लैंड की टीम 366 रन बनाकर खेल रही है, पाकिस्तान से 195 रन आगे। सो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही, आपके ध्यान के लिए शुक्रिया। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, आप सभी लोगों को अर्जुन की ओर से शुभ दिन।

0: नमस्कार श्रोतागण, घड़ी मिलाते चलिए। इस समय सुबह के 7:09 हो चुके हैं। इस शुक्रवार को साथ निभा रही है पूजा। सुबह का नजराना कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत करती है। जिंदगी को एक नए नजरिए से देखिए, जहां उम्मीद है वहां सुबह है। बदले हवा का रुख, बदले आपका नजरिया। सुबह की प्याली में आपका रेडियो एक एक्स्ट्रा चुस्की। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम का आरंभ करते हैं चिंतन से। आइए इसे सुनते हैं श्रीमती डॉक्टर शांति महाबियर जी की प्रस्तुति में।
1: मूल्य, सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: छोटे छोटे प्रयास कभी छोटे नहीं होते हैं, वे धीरे धीरे बड़ा परिवर्तन लाते हैं। प्रतिदिन थोड़ा आगे बढ़ने से रास्ता आसान लगने लगता है। जो लगातार चलता रहता है वही लक्ष्य तक पहुंचता है। स्मरण रहे, निरंतरता सबसे बड़ी शक्ति है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: श्रोताओं, आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा एक विज्ञप्ति सुनिए। जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से कई कौचे मिलितिया के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है। खासतौर पर इन गलियों में फिलिंग स्टेशन इजन और रॉयल रोड कौचे मिलितिया के कुछ हिस्सों में रेजिडेंस सगावातों बन वैन रोड, सैन लियोन रोड और बेटुएल रोड के कुछ हिस्सों में के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि रविवार 23 अगस्त 2024 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों से क्षमा प्रार्थी हैं। बिना पूर्व सूचना दिए बिजली के सप्लाई को सामान्य रूप पर लाई जाएगी। श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा एक विज्ञप्ति सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है।
0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
2: सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर।

भाई सुबह सुबह जब भी हम गोल्डन एरा के गीत सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हम उस दौर में चले जाते हैं जहाँ पर किसी का बचपन, किसी की यादें, तो किसी का बिछड़ा हुआ कल याद आता है ना। इसीलिए तो हम कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। और सुबह सुबह जब भी हम ऐसे से गीत सुनते हैं तो मूड बन ही जाता है। चाहे आप गुस्से में हो, टेंशन में हो या हड़बड़ी में है और काम के लिए निकले हैं, तो ये गीत अवश्य आपके मूड को बना ही देता है। तो चलिए, आप सभी के नाम किशोर कुमार जी की आवाज में साथ दे रही हैं आशा जी, पिंग एस फिल्म से लिया हुआ ये प्यारा सा गीत। अगर आप किसी से रूठे हुए हो, इसमें तो प्यार में मनाना रूठना तो होता ही रहता है, पर जरूरी है कि आप रिश्ते को

निभाए। ये तो रूठना मनाना तो होता ही रहता है, पर जरूरी है प्यार को निभाना। प्यार से ही तो चलता है ये संसार। जो भी लोग अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रेडियो मॉर्शस के साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का दिल से स्वागत करती हैं पूजा। चलिए आप सभी के नाम ये प्यारा सा गीत छोड़ दो। आंचल जमाना क्या कहेगा, जमाने की फिक्र क्यों, बस उस प्यार को आप जिंदा रखें।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: रेडियो मॉरिशस के साथ अगर आप चलेंगे तो आपका मूड के साथ साथ मन भी बहल ही जाता है। ऐसे से गीत जो हम लाते हैं आप

सभी के नाम अभी साथ दे रही हैं शिवरानी जी ग्रांबोआ से और नुवेल फ्रांस से, गायत्री जी हैं, शोभा जी हैं वाक्वा से। और लक्ष्मी जी हैं बॉम्बू से, आपका स्वागत है। अनीता जी हैं मौदालबेया से। और इंदिरा लौटन जी हैं, आपका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। गीता जी हैं पोफे से।

अनीता कामदोस जी हैं, मोटाई ब्लॉन्ड से आपका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और जो भी लोग अभी काम के लिए निकले हैं कहेंगे मुखार्जा। कहते हैं ये जो जीवन है एक सफर है, इस सफर में अकेले चलना, अकेले चलने से आप डरिए मत। डर तो तब लगता है जब साथी अच्छा ना हो, क्योंकि जब भी साथी अच्छा हो आपका सफर भी आसान हो ही जाता है ना। इसलिए इस सफर में चलते रहें, मुस्कुराते रहें और सकारात्मक सोच के साथ, अगर आपका जो दिन है आप इसी सकारात्मक सोच के साथ शुरू करते हैं तो आपका दिन के साथ साथ आपके काम भी बनते जाते हैं। चलिए मोहम्मद रफी जी के आवाज़ में सुनते हैं पुकारता चलना हूँ मैं।

आपने पुकारा और हम चले आए। ऐसे ही साथ निभाते रहिए। वैसे कहा जाता है कि कदर करना सीख लीजिए, ना जिंदगी वापस आती है ना जिंदगी में आए हुए लोग। कई बार तबीयत दवा लेने से नहीं, हाल पूछने से भी ठीक हो जाती है। तो आप लोग इतने प्यार से इतने सुंदर सुंदर मैसेजेस भेजते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यूं ही हमारे साथ देते रहिए, गुनगुनाते रहिए। चलिए ये प्यारा सा गीत फिल्म है हकीकत, और इस गीत को लता जी की आवाज़ में आइए सुनते हैं।

श्रोताओं कहते हैं कि जिंदगी को जिए, उसे समझने की कोशिश ना करें, चलते वक्त के साथ तू भी चल, वक्त को बदलने की कोशिश ना करें, दिल खोल कर सांस लीजिए, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश ना कीजिए, कुछ बातें भगवान पर छोड़ दें, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश ना करें। जिंदगी अपने आप में एक ऐसा सफर है जहां पर कुछ लोग मिलते हैं और कुछ लोग बिछड़ भी जाते हैं, फिर भी जीना पड़ता है, आगे चलना पड़ता है। वीना रामफुल जी हैं साथ निभा रही हैं, श्यामा रघुनंदन जी हैं, शैला जी हैं ग्रैंड रिव्यू सुदेश से, लीला जी हैं बोआ शेरी से, सुगोबिन पर

0: भाई श्रोतागण कहते हैं कि एक अच्छी पुस्तक जैसा भी होता है, कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, फिर भी शब्द नहीं बदलते, है ना? और बात पुस्तक की नहीं। चलिए साथ दे रहे हैं अभी मिसेज महंती स्योतन जी सुदना कदबोन से, और उषा जी हैं हाईलैंड से, नीता खेदनी जी हैं, शांता सुकारी जी हैं,
1: एक मैं और एक
0: माला सुमारू जी हैं,
1: दोनों मिले इस तरह, एक मैं और
0: कमला जी हैं मोताबा से,

0: झलकियां
1: झलकियां
2: ये तो होना ही था क्योंकि आप जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस की लहरों पर है। तो चलिए आप नजर डालते हैं आज के रेडियो कार्यक्रमों पर। 8 बजे आप भोजपुरी में समाचार सुन पाएंगे। समाचारों के उस पार गर्मा गर्म नाश्ता और 8:50 पर हमारी धरोहर कार्यक्रम आप सुन पाएंगे किरण जानकी जी द्वारा। फिर आप सभी के नाम एक भोजपुरी गीत चलाएंगे। 9 बजे फिर से समाचार आप सुन पाएंगे। समाचारों के उस पार 9:03 पर आज की चर्चा कार्यक्रम। वेदिता की ओर से और 10 बजे फिर से समाचार पढ़े जाएंगे। 10:03 पर भक्ति धारा कार्यक्रम रोशनी द्वारा 10:15 आप ज्ञान चक्र कार्यक्रम सुन पाएंगे और भक्ति धारा कार्यक्रम जारी रहेगा। 11 बजे फिर से समाचार होंगे। 11:03 पर शम्मे फरोजा साइदा की तरफ से। 12 बजे आप तेलुगु भाषा में कृतिका द्वारा कार्यक्रम सुन पाएंगे। दिन के 1 बजे तमिल कार्यक्रम। 1:45 पर रंगारंग कार्यक्रम लेकर आएगी रत्ना गुजराती भाषा में। 2 बजे आप चाइनीज कार्यक्रम सुन पाएंगे होंग होंग के साथ। आपकी पसंद कार्यक्रम लेकर आएगी सुमिता 2:30 बजे। सुपहर के 3 बजे फिर से समाचार होंगे। समाचारों के उस पार आपकी पसंद कार्यक्रम जारी रहेगा और सुपहर के 3:45 से लेकर 4:40 तक अनवर की ओर से आप कार्यक्रम उर्दू कार्यक्रम सुन पाएंगे। शाम के 5 बजे गीत और गजल कार्यक्रम परवेजा की तरफ से। शाम के 6 बजे पूरा समाचार बुलेटिन आप सुन पाएंगे रेडियो मॉरिशस की लहरों पर। 6:20 पर आप चंद फिल्मी गीत सुन पाएंगे। 6:30 आप चाइनीज कार्यक्रम सुन पाएंगे जिन के तरफ से। रात के 7 बजे तमिल भाषा में आप कार्यक्रम सुनेंगे। 7:30 बजे तेलुगु भाषा में विश्वा जी द्वारा आप कार्यक्रम सुनेंगे। 7:50 पर गीत गंगा कार्यक्रम मराठी भाषा में बापू द्वारा। भजले प्रभु का नाम भक्ति कार्यक्रम रोशनी द्वारा। रात के 8:10 पर महफिल शब कार्यक्रम परवेजा के तरफ से। 8:40 पर रात के 9 बजे भोजपुरी तड़का कार्यक्रम सुरेखा जी द्वारा। और रात के 11 बजे सुनहरे पल कुछ पुराने दौर के गीत पुराने दौर की ओर ले चलेंगी आपको गिनशा। और रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक कचन प्यारे फिल्मी गीत आप सभी के नाम रेडियो मॉरिशस की लहरों पर।
0: रेडियो मॉरिशस
1: रेडियो मॉरिशस
0: झलकियां
1: झलकियां
3: रेडियो मॉरिशस।
2: भाई जिंदगी के सफर में कोई ना कोई तो चाहिए है ना। तो चलिए आप सभी के नाम विनोद राठौर जी की आवाज में इस फिल्म में नजर आए थे शाहरुख खान। जी हाँ बॉलीवुड का बादशाह।

ये गीत खास तौर पर हरीश जी के नाम और साथ में है महेंद्र जी, आशा जानू जी, चित्रा जी हैं, त्रिवेणी जी हैं गुडलैंड से,

0: सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर।
1: चलिए श्रोताओं, इसी के साथ हम सुबह का नजराना कार्यक्रम के अंत तक आ पहुंचे हैं। साथ रहिए, 8 बजे आप भोजपुरी में समाचार सुन पाएंगे। समाचारों के उस पार हम फिर से मिलेंगे गर्म गर्म नाश्ता कार्यक्रम में। तब तक पूजा की ओर से आप सभी को शुभ दिन, और ये तो मैं अवश्य कहूंगी कि मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर मिलता अवश्य है। चलिए आप सभी को शुभ दिन।
2: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी, वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घरे मिला लजा फजीर के 8 बजे तक। आठ बजे की भोजपुरी समाचार में सब कोई के स्वागत कर रहे जाता है, सब कोई के नमस्ते या प्रणाम। सबसे आगे हमने आज सुख के भोजपुरी समाचार के शुरू करब जा हमने के देश के समाचार संगे। जैसे जाना था मॉरिशस पेट्रोल उत्पाद के मंगवाए खातिर यानी कि आपूर्ति सुरक्षित करे खातिर भारत सरकार संगे एगो समझौता कर ली बाटे। पोर्टवे समय काल हस्ताक्षर करगल ई सरकारी समझौता देश के ऊर्जा सुरक्षा के मजबूत करे खातिर दीर्घकालिक सहयोग के ढांचा भी तैयार करता। मॉरिशस भारत के बीच काल हस्ताक्षर करगल ई समझौता ज्ञापन के चलत पेट्रोल के दाम के लेके भी बतियाए के गुंजाइश रखल गल। व्यापार मंत्री माइकल सिक्वियन बोलन कि भू राजनीतिक परिस्थिति में बदलाव होई पर दोनों पक्ष फिनों से बतिया सकियन जा, जबकि हर बड़ी समझौता के शर्त पर फिनों से विचार करे के भी अवसर रही। दूसरा समाचार में सऊदी अरब के दमम जेल में बंद मॉरिशस के एगो नागरिक गानेशन एलन से मॉरिशस के राजदूत भेंट करलन। ड्रग के एगो मामला में हिरासत में लेवल गल एलन के कानूनी स्थिति और जेल में ओकर परिस्थिति के जानकारी लेवल गल, जबकि ओकर वकील गमा वाला देन उनकर बेगुनाही पर भरोसा रखत हवन। एबेन में तकनीकी नवाचार के बढ़ावा दे खातिर एगो नवा प्रयोगशाला के उद्घाटन करगल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक और इलेक्ट्रॉनिक से लेस ई प्रयोगशाला के उद्देश्य मॉरिशस के युवा के अपन विचार के व्यवहारिक रूप दे के या नवा प्रोजेक्ट विकसित करे खातिर ई एगो अवसर दे के है। आर जो खबर अभी चर्चा में बाटे फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की एगो हाई प्रोफाइल जांच के सिलसिला में कारोबारी या सोशल मीडिया पर जानल मानल मुजफ्फर लाल मामूद जिनकरा मूज के नाम से भी आदमी जानी लंजा ओकरा खोजल जाता। काल ओका घर पर जांच अधिकारी लोग कार्रवाई खातिर गल रंजा पर पूछताछ खातिर ओके संगे चले के बोलल गल तब उ इनकार कर देलक। एकर बाद आधिकारिक समन जारी करे से आगे उ काजनी कहां पर लापता हो गल उ भाग गल। लागोजा में माटी के एगो अनबन के लेके कथित गोलाबारी के एगो मामला होल बाटे। ई में एक जना के घाव लगल जबकि एगो संदिग्ध हमलावर के भी घाव लगे के समाचार मिलल बाटे। हुए परी बोबासय में मेट्रो लाइन के भीरी एक जना के शव मिलल बा जेकर पर घाव के निशान लगल रहल, ओकर गला पर निशान लगल रहल। अरे ओकर मौत होल बा, ई मौत के वजह जाने खातिर आज एगो पोस्टमार्टम करल जाए। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में यानी कि

0: एगो मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में आर एगो बयान सामने आल बाटे। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी एगो जांच में बीए एक्सचेंज यानी के ब्रिटिश अमेरिकन एक्सचेंज के एगो पूर्व मैनेजर जोन 42 बरिस के नीतीश सिवारथ ओके पकड़ल गल बाटे। ओकर पर आरोप लगावल गल बाटे जबकि ओकर घर में जहां ऊ रहेला गुडलैंड्स में हुआ पर तलाशी करगल जेका दौरान लगभग 2 लाख रुपया आ विदेशी मुद्रा संगे कई गो दस्तावेज भी जब्त करगल। जांच के मुताबिक ओकर पर कथित तौर पर अवैध गतिविधि से मिलल धन से विदेशी मुद्रा किने में मदद करे के आरोप बा आर मामला में कई गो आर दूसर जना से पूछताछ भी करल जाए। दूसरे देश के समाचार में रूस के ताज़ा मिसाइल हमला में यूक्रेन के राजधानी कीव में कमती से कमती 15 जना के मौत होगल बाटे जबकि कई गो इमारत आर ठिकाना के नुकसान होल बा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की बोले हवन कि जब ले देश लगे पर्याप्त एंटीबैलिस्टिक रक्षा प्रणाली नहीं हुई तब ले रूस गंभीरता से शांति के बारे में नहीं सोची। तही के संगे ई भोजपुरी में समाचार समाप्त भइल। ध्यान से सुनला ओकर खातिर धन्यवाद। अभी 8:04 हुआ था।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: पानी के समाचार सुना। कॉम्बोबाई वाकुआ में कॉम्बोबाई 77 बरिस की तीनकुड़ी 17 बरिस की श्री सुरेश गोकुल जिनका सुरेश के नाम से बेदमी जैसे जानते हैं जाकर मृत्यु हो गल बाटे। इनकर अर्थी आज सांझ के 3 बजे इनकर बेटा दानी गोकुल के घरे वाकुआ से उठा के अंतिम संस्कार खातिर थामामेल की शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM प्लेनवेयर सीतिलावाल में 70 बरिस के तीन कोड़ी 10 बरिस के रुकाया बीबी दाऊद जामुनाली पैदाशाम सिलो जिनकरा कलाफी के नाम से बेदमी जिस जनाथन जा इंतकाल करगल हवन। इनका जनाजा आज 12 बजे इनकर घर से प्लेनवेयर सीतिलावाल से उठा के दफनाए खातिर रिश्ते के कब्रिस्तान ले जावल जाए। फिर टुडे एट नून SSR रोड कौचिमलितिया में 77 बरिस के तीन कोड़ी 17 बरिस के श्री राजेंद्र तिलकधारी जिनकरा राजन के नाम से बेद में जैसे जानते हैं जाकर मृत्यु होगल बाटी। इनकर अर्थी आज फजित के 11 बजे इनका घर एक कौचिमलितिया से उठा के अंतिम संस्कार खातिर रिल में के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM केवल नगर बेलगीव में 55 बरिस के 2 कोड़ी 15 बरिस के कुमारी देजी रानी सिबन जिनकर आरती के नाम से वेद में जिसे जाते हैं जाकर मृत्यु होकर बाटे। इनकर मृत्यु भारत में होल बाटे। इनकर मां चिंता सिबालक के घरे बेलगीव से बाद में उठावल जाए। क्रिमेशन आफ्टरवर्ड्स कापोगाल रोड गुडलैंड्स में 74 बरिस के 3 कोड़ी 14 बरिस के श्री जगदेश दामरी जिनका जगदेश जग के नाम से भी आदमी जैसे जानते हैं जाके मृत्यु होकर बाटे। इनकर अर्थी आज 11 बजे आधा इनकर घरी गुडलैंड से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बागुश की गुडलैंड के शमशान भूमि ले जावल जाकर मिशन टूडे एट 11 AM मामजेलो तेरूज में 37 बरिस के 1 कोड़ी 17 बरिस के श्री विराज बागुबान जिनकरा दू के नाम से बेद में जैसे जहाँ था जाकर मृत्यु होकर बाटे। इनकर अर्थी फजित के 10 बजे इनकर माँ सीता बागुबान के घरे तेरूज से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बामोशो के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टूडे एट 10 AM बिरला रोड कोतेज में 45 बरिस के 2 कोड़ी 5 बरिस के श्रीमती जीना तिकोई जिनकरा पूजा के नाम से बेदमी जैसे जाते हैं जा आज जेकर पैदाश नाम अलीगन रहल के मृत्यु होकर बाटी। इनकर अर्थी आज दिन के 1 बजे इनकर पति श्री राजेश तिकोई के घरे कुतिज से उठा के अंतिम संस्कार खातिर कागो आकाशा कुतिज के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमिशन टूडे एट 1 PM बॉम्बू स्ट्रीट मेबग में 76 बरिस के 3 कोड़ी 16 बरिस के श्री वाल्मीकि देवी जिनकरा आनंद के नाम से बेदमी जैसे जाते जा आज उन आगे MPI में काम करत हलन। उनकर अर्थी आज 11 बजे फजीर के इनका घरे मेबक से उठा के अंतिम संस्कार का तीर तोंबो लेन मेबक के शमशान भूमि ले जावल जाए। मिशन टुडे एट 11 AM कॉन्क्रियोल आल्बियो में 81 बरिस के 4 कोड़ी 1 बरिस के श्री रंजीत सिंह बायो सिंह जिनकरा शेखर के नाम से भी अदबी जैसे जाते जा के मृत्यु होगल बैटिंग कर अर्थी आज दिन के 2 बजे इनकर पत्नी

0: बसंती बाया हुसैन के घर ही आलबियों से उठा के अंतिम संस्कार का तीर रिश्लो पचित्रिविया के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टूडे एट 2 PM Avenue des Sablons, Grigny, France में Avenue des Sablons, Grigny, France में 61 बरिस के 3 x 1 बरिस के श्री धर्मराज चितामन जिनकरा सुनील के नाम से बेहद में जिस जहाँ जाके मृत्यु होगल बानिन का अर्थी आवत मंगर के फजर के 11 बजे फ्रांस में ही उठावल जाए क्रिमिशन नेक्स्ट ट्यूसडे एट 11 AM इन फ्रांस मार्केट रोड आले लाग्रेमेंट सैंपियामे मार्केट रोड लाग्रेमेंट सैंपियामे 90 बरिस के 4 x 10 बरिस के श्रीमती रूपवंती ओबिलक पैदाशाम भजन और जिनकरा दीदी मंजली के नाम से वेद में जिसे जाके मृत होकर बाटेन कर थी आज दिन के 2:00 था इनकर घरे लाग्रेमेंट सैंपिया से उठा के अंतिम संस्कार का थी सैकों सर सैपिया के शमशान भूमि ले चावल जाए क्रिमेशन टूडे 2:30 PM डर्बी स्ट्रीट फॉरेस्ट क्यूपिप में क्यासी बरिस के 4 x 1 बरिस के श्री आरी गोपल जिनकरा हरी के नाम से वेद में जिसे जाके मृत होकर बाटे इनकर अर्थी आज सांझ के 3 इनका घर ही फोरेसात क्यूपिप से उठा के अंतिम सत्कार खातिर बिगाह के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमिशन टूडे 3 PM राय रोड पसुदी फ्लाक में 71 बरिस के 3 x 11 बरिस के श्री बालकारान सोनाराम जिनकरा महाज के नाम से बेनवे जिससे जातन जाकर मृत होगल बाटी इनकर अर्थी आज 2:00 इनका बेटा तीरथ कुमार सोनाराम के घर पसुदी फ्लाक से उठा के अंतिम संस्कार खातिर लावौचक के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमिशन टूडे 2:00 PM Appartement en 28, NHDC, quand le vieux met, appartement en 28, NHDC, quand le vieux met, Tertar Bariske, Tinkori, Tera Bariske, Shri Udit Narayan Babaji, Jinkara Kumar, Kinam Sibir, Jesse Jantan, Jackie Mritogal, but Inkar Arti, Ajiduba Jain Kaghari, quand le vieux se utaka, and Timsanskar Katir, Kodigot, Kishamshan, Bumili, Javajak, Mission Tidia, 2 PM La Baude Street, Bois Rouge, Pamplemousses-Main. La Baude Street, Bois Rouge, Pamplemousses-Main. 67 baris ke, 3 x 4 baris ke. Shrimati Yasuda Tilak, jinkara Anuradha ke naam se bhi admi, jasti janathan ja, ke mriti hoga bati, inkar arthi, aaj din ke 1 inkar ghare Pamplemousses se utha ke, antim saskar khatir, pitong ke shamshan bhoomi le jawa jaya, cremation today at 1 PM Langlois Street, Thongbo mein, 83 baris ke, 4 x 3 के श्रीमती विजय लक्ष्मी बाचू पैदाशाम जीवलाल आज इनकरा रानी के नाम से भी अनबे जैसी जाता है जाकर मृत्यु होगल बाटी इनकर अर्थी आज 12:30 इनकर पति श्री ज्ञान बाचू के घरे थोंगबो से उठा के अंतिम संस्कार खातिर हुए के शमशान भूमि ले जावल जाए कि मिशन टूडे एट 12:30 कॉन्फुक्रो ब्रांच रोड कास्टेल में 78 बरिस के 3 x 18 बरिस के श्रीमती परबौती लुबिन पैदाशाम चुनी आज इनकरा सोना के नाम से बेनमी जैसे जाता जाके के मृत्यु होगा बैठे इनकर अर्थी आज 2:00 इनकर बेटा राकेश लुबिन के घर ब्रांच रोड कास्टेल कॉन्फुक्रो से उठा के अंतिम संस्कार खातिर आलिब्रियों के शमशान भूमि ले जावल जाकर मिशन टूडे 2:30 PM सिमेट्री रोड डिस्काली में 67 बरिस के 67 ईयर्स ओल्ड के 3 x 7 बरिस के श्रीमती बिजवंती माला ओमो पैदाशाम बलुराम और जिनकरा फिया के नाम से वेद में जिसी जाते हैं जाके मृत्यु होकर बाटिन कर अर्थी आज दिन के 1 इनका बेटा नाविसन ओमो के घरे लिस्काली से उठा के अंतिम संस्कार का तीर बासें कहाँग लिस्काली के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टूडे एट 1 PM शोक में डूबल इस सब परिवार के संगे अपनी के दिली हमदर्दी बाटी
1: 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस।

सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में एक बार फिर से। गुड मॉर्निंग। चलिए शुरुआत करते हैं गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आप

0: को डायल करना है 4028085 पर 402-80-85 पर, नहीं तो आप 5251-7005 पर मैसेज भी भेज सकते हैं। आज का नाश्ता कैसा होगा, चलिए चखते हैं, देखते हैं ये कैसा बना है। पहला सवाल कुछ इस प्रकार है, ऐसी क्या चीज है जो बिना मुंह के बोलती है और बिना कान के सुनती है? ऐसी क्या चीज है जो बिना मुंह के बोलती है और बिना कान के सुनती भी है? चलिए बताइए 4028085 पर रहा।
1: हेलो 9821026212 BPL। अरे 9820026235 मैक्स टच। यार जिस लड़की को पटाना,
0: नहीं लड़की को पटाना ही नहीं है, गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में भाग लेना है। 4028085 पर 402-80-85 पर आप सभी का इंतजार है। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, ऐसी क्या चीज है जो बिना मुंह के बोलती है और बिना कान के सुनती भी है?

0: What is your gully number? What is your road number? What is your ghar ka number? What is your...
1: चलिए लाइन पर एक श्रोता है, आइए उनसे हम मिलते हैं। हेलो, नमस्कार।
2: नमस्कार पूजा जी।
1: नमस्कार बसंती जी, कैसी हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ पूजा जी।
1: और आप ले रही हैं भाग गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में
2: जी।
1: और आपके पास क्या जवाब?
2: पता नहीं, फोन या मोबाइल?
1: फोन या फिर मोबाइल। भाई आपने सही जवाब दिया है।
2: सही जवाब सोचती थी।
1: क्या हुआ, फिर से बोलिए।
2: मैं भाग लेने नहीं चाहती थी, मैंने नहीं सोचती थी कि मुझे आंसर वो मिल जाएगा।
1: क्यों भाग नहीं लेना चाहती थी आप? पर ये तो सही जवाब है, आपको तो खुश रहना चाहिए, है ना? अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद बसंती
2: जी। आपको भी पूजा जी।
1: और यूं ही मुस्कुराते रहिए, और हमें भी मुस्कुराने पर मजबूर करती हैं अपनी मुस्कुराहट से, है ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ दिन आपको। आपको भी। चलिए बढ़ते हैं आप दूसरे सवाल की ओर।

0: किस आदमी का बाल बाका नहीं किया जा सकता? किस आदमी का बाल बाका नहीं किया जा सकता? बड़ा ही फनी क्वेश्चन है, उसके आंसर भी बहुत ही फनी है। चलिए दिमाग लगाइए और बताइए किस आदमी का बाल बाका नहीं किया जा सकता। 402-808-5 पर झुमका 102-80-85 पर।
1: व्हाट इज योर झुमका नंबर?
2: सॉरी मोबाइल नहीं, ले ले तू पेजर नंबर।
1: व्हाट इज मोबाइल?
0: शोभा जी आपका हार्दिक स्वागत है। लाइन कट गई, कोई बात नहीं, एक और श्रोता को हम लेते हैं। हेलो
3: हेलो, नमस्ते है।
0: नमस्ते जी, आपका शुभ नाम?
3: मैं बाद में बोलूंगी।
0: अच्छा, बाद में बोलिए जी, बताइए आपके पास
3: क्या प्रश्न है, दोहराइए तो।
0: किस आदमी का बाल बाका नहीं किया जा सकता?
3: जाको राखे सैया, ताको करे न कोई। हाँ। न, कोई ना जाको राखो सैया, ताको वहाँ पर
0: नहीं,
3: कोई बाल बाका नहीं कर सकता है।
0: नहीं
3: ना?
0: नहीं, ये गलत जवाब है जी, आपने नाम भी नहीं बताया। कोई बात नहीं, आपको कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद भाग लेने के लिए और शुभ दिन आपको।
3: बराबर से।
0: किस आदमी का बाल बाका नहीं किया जा सकता? 402-808-5 पर। नंबर तो वही है 402-808-5 पर, आपको मुझे बताना है किस आदमी का बाल बाका नहीं किया जा सकता। बताइए। असलम भाई नहीं, यहाँ पर पूजा शामिल है गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में। बताइए मुझे किस आदमी का बाल बाका नहीं किया जा सकता। प्रश्न में ही जवाब है।

0: हेलो नमस्ते बीना जी, हेलो हेलो जी नमस्ते। मैं ठीक हूँ, आप कैसी? आपकी आवाज़ बहुत दूर से आ रही है। अच्छा कोई बात नहीं, बताइए आपके पास क्या जवाब है। जो गंजा हो, जी हाँ आपने सही जवाब दिया है। आपको बधाई हो। और भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन आपको भी। जी कोई उसका बाल बांका नहीं कर सकता क्योंकि उसके उसके सर पर बाल ही नहीं है, गंजा है वो।
1: माधुरी पछताएगी, ऐश्वर्य करेगी। असलम भाई।
0: चलिए बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। इस संसार में बिना तनख्वाह के काम करने वाला व्यक्ति का नाम बताइए। इस संसार में बिना तनख्वाह के काम करने वाला व्यक्ति का नाम बताइए। 4028085 पर

0: भाई मैंने पूछा उस व्यक्ति का नाम बताइए जो बिना तंखा का काम करती है। और लाइन पर एक श्रोता है, आइए उनको सुनते हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, आपका शुभ नाम?
1: अजय।
0: अजय जी कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: वाकवा से बोल रहा हूँ।
0: वाकवा से बोल रहे हैं, और वाकवा में मौसम कैसा है?
1: जैसा रहता है, सुहाना है।
0: चलिए, सुहाने मौसम के तौर पर अभी आप ले रहे हैं गर्मा गर्म अभी नाश्ता कार्यक्रम। और इस सवाल का जो अभी मैंने हाल में पूछा है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिस जो बिना तंखा का काम करता है, और वो उसका नाम बताइए, तो आपके पास क्या जवाब है?
1: माँ या पत्नी।
0: माँ या फिर पत्नी। हाँ जी, बिना तंखा का काम ही करती है, और आपने सही जवाब दिया है। अजय जी, आपको कहेंगे बधाई हो और शुभ दिन। बाय बाय,
1: आपका भी शुभ दिन।
0: भैया पुन बोला, क्या बोला, बढ़ते हैं चौथा सवाल की ओर।

0: बताया रे।
1: क्या बताया रे?
2: इस संसार में मनुष्य से अधिक शक्तिशाली कौन है? इस संसार में मनुष्य से अधिक शक्तिशाली कौन है? 4028085 पर आपको मुझे जवाब देना है।
3: ये उसका स्टाइल होएगा, टोटो पे ना दिल में हाँ होएगा।
4: आज नहीं तो कल बोलेगी।
2: इस संसार में मनुष्य से अधिक शक्तिशाली कौन है?
0: साला अपुन जब भी सच्ची बोलता है ए उसको झूठी लगता है यार।

0: हेलो,
1: हेलो पूजा जी, नमस्कार
0: नमस्कार जी। कैसी हैं आप राधा जी?
1: जी। मैं अच्छी हूँ।
0: और राधा जी, आप भाग ले रही हैं अभी गर्मा गर्म नाश्ता
1: हाँ
0: कार्यक्रम में। और रईस, गरम
1: जी
0: गरम नाश्ता कैसे लग रही है आपको?
1: जी अच्छी है, बहुत मजेदार है, तीखा भी है, मीठा भी है, खट्टा भी है, सारे
0: चलिए, सब स्वाद
1: रस
0: भर
1: भरे
0: कर
1: हैं
0: भरे
1: उसमें
0: हुए हैं इस नाश्ते में। चलिए,
1: ना
0: आपके पास क्या जवाब?
1: जी मैं कोशिश कर रही हूँ पूजा
0: हाँ
1: जी।
0: जी,
1: समय बड़ा बलवान।
0: समय
1: धन्यवाद
0: बलवान। और इस जवाब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राधा जी।
1: धन्यवाद आपको पूजा जी। शुभ दिन
0: शुभ दिन आपको भी।
1: आपको
0: बाय
1: भी।
0: बाय। बोलेगी ए टूटे, कल नहीं बोलना है, अभी
1: वो
0: बोलना है। समय सबसे बड़ा बलवान है।
1: बोल
0: सुनिए आप लोगों ने, बढ़ते हैं एक और प्रश्न की ओर।
2: सच्ची बोलता है ये, उसको हमेशा ही झूठ लगता है।

0: बताइए वह क्या है जो नीम और करेले से भी कड़वा होता है? बताइए वह क्या है जो नीम के पत्तों से और करेले से भी कड़वा होता है? क्या है वह?
1: पतली चकलो चकली चकलो वड़ा पाव।
0: चकलो गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम इन सभी प्रश्नों का। बताइए मुझे नीम और करेले से भी कड़वी चीज का नाम बताइए।

या ना जलेबी है ना वड़ा पाव, यहाँ है प्रश्नों का गर्मा गर्म नाश्ता। बताइए क्या है जो नीम और करेले से भी कड़वी। नीम और करेले से भी कड़वा क्या है? 4028085 पर चलिए एक टिप्स दे देती हूँ मैं, कोई हजम नहीं कर सकता है इसको। हाँ, इतनी कड़वी है।

0: नमस्कार, हेलो
1: दिल से प्यार भरा नमस्कार मेरी लेवली लेवली प्यार इसी पूजा जी, कैसे हो जी?
0: मैं बढ़िया हूँ गीता जी, आप कैसी हैं? आप सुनाइए।
1: आपकी आवाज, आपके गाने सुन सुन के और मस्त हो गई है।
0: चलिए, मस्त मस्त हवा में मस्त मस्त सवाल आपके नाम गीता जी, बताइए गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम का ये सवाल जो अभी
1: मैं कोशिश कर रही हूँ, शायद करवी बातें
0: बातों से जुड़ी एक और चीज।
1: हेलो,
0: हाँ हाँ बताइए, बातों से जुड़ी एक और
1: करवी बातें।
0: नहीं,
1: करवा बोलते हैं तो
0: नहीं, एक और
1: पता नहीं।
0: कोई बात नहीं गीता जी, शुभ दिन आपको। जब आप ऐसी ऐसी बातें करते हो तो कोई आपको पसंद नहीं करता और किसी को हजम नहीं होती, ये सब मैंने बताया ना अभी आपको। मुझे बताना है नीम और करेले से भी कड़वा क्या है।

0: हेलो हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्ते जी।
1: नमस्ते नमस्ते। करुआ बोली बोलती है।
0: करवा बोली? हाँ, और उस बोली में क्या है जो किसी को हजम नहीं होती?
1: कटु वचन भी बोलते हैं कोई, तो दिल को दिखाने वाले।
0: नहीं नहीं जी, आपने गलत जवाब दे दी। कोई बात नहीं, आपको कहेंगे शुभ दिन ना।
2: देख टिंगू देख छोटू क्या लग रही है।
0: मैंने कहा कि किसी को हजम नहीं होते, और आज उसका बोलबाला नहीं।
2: हाय देख टिंगू देख छोटू क्या लग रही है, ये कॉलेज की लड़कियां
3: यस बॉस
4: फट फट करके खुलने लगी हैं।
0: जो भी इस बोली को बोलता है, मान लीजिए उसका उसको कोई पसंद ही नहीं करता, क्या है वह नीम और करेले से भी ज्यादा कड़वा।
3: और सेक्स

संभालना चाहिए, दिमाग को संभालिए, बताइए आपने आपको, दिमाग की कसरत कराइए। क्या है वह जो नीम और करेले से भी कड़वा, क्या बात है।

0: और साथ में है साधना जी और वो है सच। जी हाँ, सच को मच नहीं, सच जो भी बोलता है उसे हर कोई करवी ही लगता है ना, करवा लगता है। और ये नीम और करेले से भी करवा होता है। तो चलिए इसी के साथ हम गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम के अंत तक आ पहुँचे हैं।
1: गर्मा गर्म नाश्ता,
0: और इस नाश्ते को तैयार किया है नवीन लक्ष्मण जी, उनका हम तहे दिल से धन्यवाद कहेंगे। क्या बढ़िया बढ़िया सा जो प्रश्न वो भेजते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम बढ़ेंगे हमारी धरोहर कार्यक्रम की ओर। किरण जानकी जी द्वारा फिर आप सभी के नाम एक भोजपुरी गीत चलाएंगे। 9 बजे समाचार होंगे, समाचारों के उस पार आज की चर्चा कार्यक्रम। तब तक पूजा की ओर से आप सभी को नमस्ते, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और शुभ दिन आप सभी को।
2: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
3: नमस्ते, हमारी धरोहर में आप सबको के स्वागत बा। 19 अगस्त के दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण धरोहर पर आज हमने चर्चा करब जा, और वह वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, मानवतावाद दिवस, जो 19 अगस्त के मनावल जाला। और ये दिवस यूनाइटेड नेशंस के घोषणा पर मनावे के शुरू करल गल बा, और एक उद्देश्य है दुनिया के बेहतर बनावे के। मानवतावाद सबसे बड़ा हमनी के पूंजी है, जेकर माध्यम से सकब जा ये दुनिया के एगो बेहतर जगह बनावे सब कोई खातिर। और ये दिन उस सब लोग के याद करे के और उन लोग के सम्मान देवे के भी मौका है जे लोग मानवतावाद कार्य कर ले हवन जा। मानवता कर्मी हमनी के ये दुनिया में बहुत हवन जा, जे लोग अपन सहयोग दे ले आल हवन जा। सकेला तू नहीं जानत हुई बा कि ये मानवतावाद भी एगो धरोहर है, सबसे कीमती धरोहर। धरोहर के मतलब है पुरखन द्वारा छोड़ल गल मूल्य। यूनाइटेड नेशंस मानवतावाद खातिर 4 गो शर्त रखले बा, और ये शर्त में सबसे आगे तो ये बोलल गल बा कि मानवतावाद दिवस एक दिन नहीं बल्कि चाहिए हर दिन मनावे के। और 4 गो शर्त ई है, ह्यूमैनिटी मतलब कि मानवतावाद इंसानियत, दूसरा है न्यूट्रलिटी मतलब कि हर स्थिति में चाहिए आपके बराबर रह के, पक्षपात नहीं करे के, इम्पार्शलिटी कोई के गिरावे के नहीं, कोई के पार नहीं लेवे के, और चौथा है इंडिपेंडेंस मतलब कि स्वतंत्र रहे के। मानवतावाद के मतलब जहाँ कहूँ कोनो व्यक्ति के आप देखबा मुश्किल में उर्जे होई, तो आपके चाहिए अपन ओर से कोनो न कोनो रूप में उकर सहायता करेगे। मानवतावाद के अर्थ है जान बचावे के, स्वास्थ्य के सुरक्षा करे के, और हर एक व्यक्ति के आदर इज्जत करे के। और जो दूसरा शर्त है न्यूट्रलिटी मतलब कि मानवतावादी इंसान के हिंसात्मक गतिविधि में भाग नहीं लेवे के, कोनो ऐसन विवाद में नहीं पड़े के जो चाहे वो राजनीतिक रही, जातीय रही, धार्मिक रही या आदर्शवाद प्रकृति के रही। आपके चाहिए हमेशा ऐसन गतिविधि में शामिल होवे के जहाँ पर अहिंसा बा। अब तीसरा है इम्पार्शलिटी मतलब कि इंसानियत कर्म चाहिए ज़रूरत के हिसाब से करे के, जो सबसे अर्जेंट केस बा, आपात स्थिति बा, ऊपर ध्यान देवे के और समय देवे के। और जाति, धर्म, देश, जेंडर और

पॉलिटिकल विचार के आधार पर कोनो काम नहीं करे के, कोनो मतलब कि नज़रअंदाज नहीं करे के, दूजा भाव नहीं रखे के। चौथा है स्वतंत्रता, यानी कि मानवतावादी कार्य चाहे एकदम स्वतंत्र होके करे के, आज़ाद, जहाँ ह्यूमैनिटेरियन कार्य होवेला, हुआं राजनीति, इकोनॉमी, मिलिट्री पर कोनो ध्यान नहीं चाहे देवे के, और मानवतावादी लोग के चाहे एकदम कटिबद्ध रहे के, संवेदनशील रहे के, आशावादी, दृढ़ और सहनशील रहे के, और यही लोग दुनिया के असली हीरो और हीरोइन हवन जा। यूनेस्को ई बात पर जोर देली बा कि औरत और नौजवान लोग के चाहे ह्यूमैनिटेरियन गतिविधि में जस्ती से जस्ती भाग लेवे के। कार्यक्रम के ध्यान से सुनला, बहुत धन्यवाद, नमस्ते।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: स्टूडियो की घड़ी में 9 बजे हैं। देश विदेश के समाचारों के साथ स्टूडियो में आ गई हैं अशिता रघु। चलिए उनसे मिलते हैं, सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। नमस्कार अशिता।
2: नमस्कार, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले हम स्थानीय खबरों के बारे में बात करेंगे। मॉरिशस ने पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार के साथ एक समझौता किया है। पोर्ट लुइस में कल हस्ताक्षरित ये सरकारी समझौता देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक सहयोग का ढांचा भी तय करता है। मॉरिशस और भारत के बीच कल हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत पेट्रोलियम की कीमतों को लेकर भी बातचीत की गुंजाइश रखी गई है। व्यापार मंत्री माइकल सिक्वेन के अनुसार भू राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव होने पर दोनों पक्ष फिर से बातचीत कर सकते हैं, जबकि हर साल समझौते की शर्तों पर पुनर्विचार का भी अवसर रहेगा। सऊदी अरब की दमन जेल में बंद मॉरिशस के नागरिक गणेशन एलन से मॉरिशस के राजदूत ने मुलाकात की। ड्रग मामले में हिरासत में लिए गए एलन की कानूनी स्थिति और जेल में उनकी परिस्थितियों की जानकारी ली गई, जबकि उनके वकील गमावालाइदन ने उनकी बेगुनाही पर भरोसा जताया है। और ऐसे ही अन्य खबरों में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की हाई प्रोफाइल जाँच के सिलसिले में कारोबारी और सोशल मीडिया हस्ती मुजफ्फर लाल महमूद उर्फ मूज की तलाश तेज कर दी है। कल उनके घर पर जांच अधिकारियों ने कार्रवाई की थी, लेकिन पूछताछ के लिए साथ चलने से इनकार करने के बाद आधिकारिक समन जारी किए जाने से पहले ही वह लापता हो गए। और लाहौजा में जमीन विवाद को लेकर कथित गोलीबारी में एक व्यक्ति घायल हुआ, जबकि संदिग्ध हमलावर के भी घायल होने की खबर है। वहीं कल शाम बुबासा में मेट्रो लाइन के पास एक व्यक्ति का शव मिला, जिसके गले पर चोट के निशान पाए गए हैं, और मौत की सही वजह जानने के लिए आज पोस्टमार्टम किया जाएगा। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी जांच में बीए एक्सचेंज यानी कि ब्रिटिश अमेरिकन एक्सचेंज के पूर्व मैनेजर 42 वर्षीय नीतीश सिबारत को गिरफ्तार किया गया है, जबकि गुडलैंड स्थित उनके घर की तलाशी में करीब 2 लाख रुपए और विदेशी मुद्रा समेत कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं। जांच के मुताबिक उन पर कथित तौर पर अवैध गतिविधियों से प्राप्त धन से विदेशी मुद्रा खरीद में मदद करने का आरोप है, और मामले में कई अन्य लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। मॉरिशस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ने रिजवी में मॉरिशस कल्चर ट्रिप .mu नामक एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य पर्यटकों के साथ साथ विद्यार्थियों और शिक्षकों को मॉरिशस के इतिहास, संस्कृति और विरासत को बेहतर ढंग से समझने का अवसर देना है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस के ताज़ा मिसाइल हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई इमारत और अन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि जब तक देश के पास पर्याप्त एंटी बैलिस्टिक रक्षा प्रणाली नहीं होगी, तब तक रूस गंभीरता से शांति के बारे में बात नहीं करेगा और ना ही सोचेगा। और चलते चलते हम आपको याद दिला देते हैं कि बुलेटिन के बाद, यानी कि हमारे बुलेटिन के बाद आज की चर्चा कार्यक्रम में आप के लिए बात चर्चा है सेल बाय लेवी पर, और आज के लिए मुख्य मेहमान हैं वकील कपिल देव रघुनंदन, और कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी वेदिता राम खिलावन। तो इसी के साथ ये संक्षिप्त समाचार समाप्त।

0: सभी श्रोताओं को एक बार फिर विनीता की ओर से प्यार भरा नमस्ते। कार्यक्रम आज की चर्चा में आपका स्वागत करते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, आज शुक्रवार है और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम कानूनी मामलों से जुड़े हुए बातों को लेकर आए हैं और आज हमारे बीच हमारे साथ हमारे आज के मेहमान उपस्थित हैं। आप हैं कपिल देव रघुनंदन जी, जिनका हम स्टूडियो में स्वागत करते हैं। कपिल देव जी नमस्कार।
1: नमस्ते जी,
0: एक बार फिर कार्यक्रम में स्वागत करते हैं।
1: शुक्रिया।
0: और जैसे कि हर सुख के हमने के एगो टॉपिक रह लाए गो सब्जेक्ट पे हमने बात करी ला जाता है। आज के हम जो विषय बा वो है सेल बाय लेवी। और हम जब तोहर से बतिया तली तो हम तो समझ गए, लेकिन हमने के जो श्रोता लोग हमन जा दर्शक लोग हमन जा वो लोग समझे खोजत हमन जा कि हई जो सेल बाय लेवी है कौन ची है, एक में कौन ची होवेला।
1: अली पहला चीज जैसे बोला सेल बाय लेवी, ये अंग्रेज में बोली रहा सा में हमने वांट आला बॉ या वांट आ अंशेर, ये एक नाम है सेल बाय लेवी। हमने के बहुत

0: कुछ सब भाई बहन लोग जाने लाई का है हर जेजी के बितारे लाभ से दिख एक बच के आधा से लाख सिपाही में जोन जोन चीज सेजी होवेला घर हुई माटी हुई हुआ बेचाला अब जेज के पैसा बा हुआ से किनेला एक रे नाम जहाँ से सेजी होवेला एगो चीज तो वही जाके बेचाला हुआ तो उकर नाम वत आला ब वत तो एगो बेचा छोला आला ब पब्लिक के उवे है मेम के एगो लसाम नियर में बा मौसे कोर्ट में तो वो देख ब हुआ जाके कोनो आदमी खरीदे खोजता एगो घर या कुछ या जमीन ओके हुआ से ओके बेचे के चाहे तो यही हम नहीं बोलन सन पूछे करे लन सन हई में देखे ल इंडियन फिल्म में एक बान बा जब एगो बीच में
1: बोली लगावे लन जा
0: हई का बोल दिला तो हुआ से देख ब वो आदमिया के मजे को चीज बेचता जे के सबसे बड़ा पैसा बा किने के ऊ चीज हुआ सबसे जो मोते होल बा किने तो ऊ कुमजे फूफीतिर बनेला एगो रेज्यूमे है देरी से अच्छा पहला चीज हमने से सेल बाय लेवी वांट आला बा ये एगो प्रोसीजर है एटाब्लिया करल बा सेल ऑफ इमोवेबल एक्ट हमने के वो कानून बा जो कानून वा गुवेने करेला सेल बाय इमोवेबल प्रॉपर्टी एक्ट ये का बोलेला जब एगो लाबंक एगो क्रियांसी है एगो आदमी के देवेला एगो डेबिटर के देवेला एगो पैसा या लाशियंस भी कभी को काल मांग कर बा दिख रही से गो प्रोग्राम जहाँ एगो आदमी के ओके मन बा पैसा मजे ले के तो कहाँ जाए कि कर
1: लाबंग
0: जाए या लोन ले के और अभी तो लाशियंस भी देवेला पैसा अरे हमने शुरू करब से लाबंग से अब वो आदमिया ओके मन बा पैसा हईक मजे ले के तो ऊ जाए लाबंक अब हुआ लाबंक वा आक्षेपते हो देवितेवा के देवितेवा जो आदमिया मांग करता ऊ पैसवा कि ओके हम तो के दे ला एगो जो पैसा मांग को जाता कितना पैसा मांगता तो ओके देख दे हुआ तो ओके मिले ला एगो पैसा अब हमने देखे ला सर ओके पोजे है पोजे वा करे के जब जेब पैसा मांगे तो लाबंक तो तोरा इसने बोना भी नहीं तो पैसा तो नहीं दे ना तो लाबंक देखी कि वो आदमिया जो मांग करता है पैसा वो एसकी काहे मांगता पैसा जैसे गो बोली के गैले लाबंक यहाँ तो लाबंक के बोलो ना अरे माई बाप आल हई तोरा हम देखे बोले का हाँ कौन खातिन तो बोले हम के तनी पैसा की जरूरत बा आल हई हम लाबंक से एगो पैते मांगे तो बोली कौन चीज अब वो बैठ के तुहरा लाता में से भीरी से भीरी अब तुहर से पूछी कौन सी काहे तू अले वो हमके देखे तो बोली ना हम आल हई देखे एगो भोजे के हमर बा करे के हम खुशी रहती वो पैसवा दे के तो बोले कौन सी तो एक बहन आदमी तो देखब कब जाला लाबंक से पैसा मांगेला पैते तो ओकर कुमाजे गो भो घो पोसे बा सकियों के मन हुई कंस्ट्रक्ट करे के उ जमीन में जो नोकर देजा बा उ जमीनवा में एगो घर बनाई के या एगो लिजिन बनाई
1: यानी कि जहां तक हम समझत हैं अभी जैसे बोल रहा हमने के कि जब एगो आदमी के लोन के पैसा के जरूरत पड़ेला लाबांग जाला तब ढेर कुछ जाला पैसा मांगेला तब ओकर घर बनाए के रही या तो फिर जमीन खरीदे के रही तो उ एगो लाबांग से जाके पैसा लेवेला लोन लेवेला अब समस्या आवेला जब
0: अरे अब गर्ल हुआ तो पहला चीज ओके बोली ना काल हो पैसा मांगे कौन सी करे खोजता तो ओके एगो बोली कि शुरू कर लिया से वो घर हुए बनाई खोजता एगो जमीन में बोले हमार के मन बा एगो घर बनाई के या एगो जमीन खरीदे के तो हमके चाहेला पैसा यही से तुहर से आल हई हम एगो अफैत मांगे एगो पैसा लोन दे के हमके लोन के तो प्रोग्राम देख ले रही सब हाँ। नहीं जाते हैं शायद सेल बाय लेवी तो हिया अब लाबंक हुआ बोली कोरिक बा सेल में देबब से हमने लाबंक तो हमनियों के कुमा जा हाथ बंधल है नहीं सकी कुमा जा कैसे मंगला पैसा ऐसने दे दिली सर
1: हाँ, कोई भी जब एगो लाबंक में जाला तो गाँव ची खोजे लन जा जैसे पिछला बहुत कुछ बोल रहे हैं जा हमनी कार्यक्रम में ढेर कुछ हमनी झलले हैं जा तो गाँव ची खोजे ला ढेर कोई गाँव ची नहीं खोजे ला ढेर कोई जन जमीनवा खरीदा ओके गाँव ची में दाल देवे लन सर या जो घरवा किने लन सर ओके गाँव ची में दाल देवे लन
0: सर एकरो प्रोसीजर सेल बाय लेविया ऐसने अभी हमने शुरू से एक्सप्लेन करते हैं सर तभी आप सब पहुंच में जितने ओकर सेल बाय लेविया कौन ची है तो यहाँ देख बा institution créancier wa jaisi la banque wa ta la banque boli ok toke hame go emprunt dei la mais ek banque

0: बातों के कुमा जी हई करे के भरे के एगो बोली के कुमा जो जैसे फुलफिल करे के अभी तारे लोग एगो पापिए दी वही अपन कोथाओ बनाई तो हियाँ देख बल्लाबक वो के कुमा जे एगो हई इंस्टीट्यूशन है जोन पैसा देवेला जोन एगो आदमी मांगे करेला पैसा और वो इंस्टीट्यूशन लाबक गुवेने होवेला कानून बगल से जैसे मुझसे बोले सर लालुआ लालुआ उके गुवेन कुमा जी हई करेला
1: जन जन कोंथावा बनी अभी लाबोंग बगल से वो गुवेनमोवा की तरफ से हाँ यानी कि
0: नहीं गवर्नमेंट से नहीं वो इंस्टीट्यूशन तो प्राइवेट है कमर्शियल बैंक अपने के है इनसे ना तो वो उकर एगो कृत्य है चाहे ना फुलफिल करे के किसी तरह मन हुई एगो मजा भाई वो एप्लीकेशन करे के एगो काम के तो उकर फॉर्म दिए ना पहला तो फॉर्म ही उकर कृत्य है कौन कौन चीज उमें अप्लाई करे के चाहे तो ही वो लोग ऐसने मे लाबक वो एगो इंस्टीट्यूशन फिनेंशियर है जो पैसा देवे एगो आदमी के मे एगो फॉर्म तोरा दे और ये सब गुवेने होला कानून बगल से कानून बगल से अब उला लाबंकवा कब पैसा मंगब तो उसके फिनेंस करे जोन पोजे करत हो 100% यू बोले लंसन पाप अली तो अरे गो देजा वाले बा लिपोते उक में अभी देखबा रखबा जो मिलियों के बा यहां दू तीन सिन पैसा मांगत हो तो बोली को एक बा पछि जानत है कि ऊ पैसा जोन मांगत हो कब एक दिन काल नहीं देल तो कुवे होई तब आप से सिलबाई लेवी में तो यहां देख का होल यहां ओके 100% सकी ओके दे दे अरे गो पे यो दे 30 ans 30 बरिस के देवेला एगो लेता एगो आदमी के ओकर पैसा भरे के ओकर लेते गए सब सब बाहू में कैपिटल लेते गए सब में तोरा 30 बरिस के सकेला दे एगो मोतन जो तोरा प्रीति कर ले बा भरे के वो अपनते के आले इत जुली बा कौन ओकर खुते है काही एनु स्पीकर से सेल लेवी के आगे न तो नहीं समझे सेल लेवी है का करे लंसन हुआ तो हियाँ ला बंकवा का करी एगो क्रिटेरिया देखी कौन कौन चीज चाहे ला भरे के जैसे हो वाला दिखले रही सा एगो जो उकर बोरो है के बोला से जो ने दिया पैसवा मंगले बा ओके चाला रीजन पहला बोले के काहे मांगत है ना पैसवा ला बंकवा बिना एगो रीजन वाली से
1: हम के घर खरीदेगे बा
0: हाले
1: हम घर की ना था हमार घर बा 5 मिलियन के हम लाबाओं गए नहीं बोले हमके 5 मिलियन चाहना घर खरीदे के अब आप लाबाओं में हवा हमके कौन चीज बोलबा कौन चीज चाहना
0: हम बोला जोली घर चीज रहिला सोच के हमके अहिला तू देखे मिसल मत तोहर खरीदे फिया फुलफिल नहीं होएला
1: अच्छा।
0: जब तोहर जमीन बा जोन बा 5 मिलियन के बा अब तू 5 मिलियन मांगत हो तो कल हमके कोई प्रॉब्लम नहीं दिला तब नहीं से कब वे करे ना बस की कुमा जे उही मेम कांचीते के जोन तोर वाले बा ऊ वाले रुआ देबा मैं सेलमा ला बा कौसे नहीं करी ला ये आगे दे कर बोले कोरे एक बात सकेला बोले हम एक्सेप्टे हैं मैं 5 मिलियन के 5 मिलियन के नहीं दे हुए ओके बोली अच्छा गारंटी दिए तब उसे कैसे हाउ दिख ले रहे आज हो तभी ले बात कर हाँ तो यहाँ देख ला मांग करिए रीजन काहे तू हई मांगत हुआ ऊ पैसा ऊ देखी कि जोन पोसे हुआ तोहर मन में बाकी गरुआ बना हुआ तो या मठिया खरीदे तो ऐसकी कुमा जे आला लोंगे एगो चीज बोला पेन बा कि नहीं बा तो ऊ देखेला और पहला चीज बोली अच्छा काम करेला देखे गाड़ी कैसे हम उसे करब तो बोली हम काम करेला तो बोली तोहर पे स्लिप वो कब काम हर महीना के तर जे जे काम करेला कुमा जे तो के मिलेला गो पे स्लिप ना कितना के मिलेला तो ऊ बगल से वो कैलकुलेट कर दे कि इतना मिलेला एक इतना महीना में सकी पे ये करे सब वो कर डिडक्शन वो सब करके तो जाना था हाँ ये आदमिया के गोर लापे फिक्स बा और 6 महीना के ऊ लपे हुआ बाकी स्टेडी बा ऊ जोबुआ में नहीं कि आज गई ला 1 मिलियन के गो कमुआ में मिलल बस जाके काल मिला गई ला तो कैसे भरब तो हियाँ देखा था कि उकर पे स्लिप 6 महीना के जोन रहल आगे अब ऊ देखा था ऊ में हाँ कोचिनियल में ये काम कर ले बा तो सब जब ही काम करते भाऊ तो ये खाते ने गो को आज के कोफिया में नहीं बा 12 महीना में हो जाए सी 8 महीना में तब न कोफिया हो तो हियाँ तो देखा था बो अच्छा एगो स्टेडी एगो जॉब बा अब हुआ देख लें तो वो काल क्लिक करी ओकर लाज कौन सी है एगो लाज हुई तो सिर्फ एगो थान थान साइन तो बोली हाँ ये के तभी जिए के हई ढेर दिन बा मैं कोई नहीं जाने ला जिए के विषय में सके एगो आदमी के जो 50 बरिस के ओके देखे मैं ओकर लाज में देखे ओके काल क्लिक करी ओकर रेवेन्यू बा एगो खीते बा सब दे सीधे करे के कितना पैसा दे आले इत लासिरंस के काम है कब लासिरंस फिनी हो गल तो हमने के बा एगो हई लासिरंस लासिरंस पैसा भी देवेला एक मान आदमी खाली लासिरंस नहीं आसिरे करब अपन है
1: मेडिकल
0: आसिरंस दे वी आदमी बोले ना नहीं कि कम का एगो है तबलीग जिबे एगो लासिरंस के है ले काल मर गई ले तक मजे

0: कुछ कर्जा उधर बे तो सकल जाए थोड़ा सिंहसवा भर दे तो यही से दिखब बहुत सा आदमी जोन बा एगो ला सिंहस भी लेवेला और लाबा कब देवेला पैसा बोले ला तोरा चाहे लगो आ सिंहस देवी ले के वो कुवे करी वो पैसवा देख ला पैसवा यहाँ दे ले बा एगो के पे ये करते हुआ एगो दूसरा के बोले ये मैं छाना तुरा एगो आशीर्वाद दे भी दे के अभी गाँव के देखब सब पाँच मिनट में तो यहाँ तो मांग ले लक ना एगो दूसरा पैसा भी दे के छाना आशीर्वाद हुआ के ता कुवे हुआ काल वो आदमिया जो गुजर जाए जमीन दे छोड़ के चल जला और इ लोग के बाल है जमीन में वो जमीन वा नहीं सके सन बेचे तब लेक जे बीचे हुआ नहीं पे कर लकला बौक हुआ के बड़ी कुमा जे फासिल नहीं है पैसा मांगे के अभी के हो गल बा एगो कुमा जे एगो लामोद एगो ओब्लिगेशन ऐसा प्रेस के हरे आदमी के कोनो पोजे करी जो रेजोनाब बा या गो
1: जमीन खरीदी घर खरीदी लुत्तो खरीदी या तो फिर ओके कहूँ पढ़ाई करे स्टडी करे जाए के बाद सबको आज लोन ले वेला
0: अले तो देख ला एगो लोन ले के लिए आज एगो खीते ओब्लिगेटरी हो गल बा अभी देखो कितना नहीं दिखले हो वाला दिखले से ना कितना माँ बाप अपने लैखा खातिर जियेला मरेला सब चीज वही में का लैखा के मन भाई निवेश जाए के या कुछ करे के तो कर या कुछ शादी करे के भी है तो बोलिए अरे नहीं हमारे यहाँ तो नहीं बा चल एगो लोन ले सर बस मछाई भरल जाए ये एगो चीज फासिल नहीं है तो ये देख ला एगो इम्पोर्टेंट चीज कब एगो गई ला एगो लाबंक से एगो लाशीगंज से एगो पैसा मंगला तो लाशीगंज बोल चाहे एगो कुवे करे के एगो पॉलिसी लाशीगंज की ताकि कुल गजर जाए तो सकी वो आदमिया के मिले आले ई तक अब हो गल अब हम नहीं देखी ला सर ये एगो लावी है लाबंकवा का पैसवा देवता एगो कुमा जे लाशीगंज देवी सिबोजो कब मंगलक दूसरा बोली कोरे के बा जितना पैसा तू मांगत हुआ हमके चाहेला एगो जीबिया और गारंटी दे के जीबिया और गारंटी का है ये क्रेंसी वाला बंकवा मांग करता जो नदमिया है फैते करे खोजता पैसा ओके मांग करता कि वो एगो गारंटी एगो जमीन दे फैतवा करे के मतलब कि ओकर जमीन जो हो यहाँ घर बनाई के मंगले बा तो उस जमीनवा के जोन है बा ओके एगो लिपोटेक डाले के ऊ में देखला कभी एगो लिपोटेक डाल दिल एगो जमीन में तो ऊ नहीं सकब कुमा जे है जमीन वहाँ बेचे तब लेकला बंकुआ नहीं दे एगो पापिए कि नुतेर के जाए के आगे वो राइट ऑफ करे के ऊ लिपोटेकुआ तो ऊ लिपोटेकुआ जो अनरजिस्ट्रे बा बी अनरजिस्ट्रेमा में सब कोई बोली हम थोड़ा कुछ नहीं सकब करे न सकब बेचे न सकब जीविजे करे न अपने बन जीविचे सकी कुमा जे अपने अपने में पार करे तब ले ऊ लिपोटेकुआ के नहीं पे ये कर दिले होगा यही देख रहे नहीं वो चीज़ फासिल नहीं है मैं यही खातिन बोलल जला लिपोटेक भैया जहाँ तक नहीं रख अपन जमीन के बस अभी आप यही ना अभी आप सिलवाई ले भी आप सब पाँच मिनट में का होएला कभी सब कर ला ये सब एक्सप्लिके करते हैं सर ताकि कुमार जी एक आदमी समझो कर शुरुआत से जो नमी के भाई नहीं सुन ले हो या बोला तो जानी ये बकतवा का बोला था इसे ना तो हियाँ जन एगो चीज मांगी ला बकवा तो एगो इमेब एगो जमीन एगो घर या गो लिजिन या एगो बिजनेस मांग करी गारंटी लिपोटेक में रखे के काते नहीं सकल पे ये करे तो सेजी करी जब नहीं सकल पे ये करे तो पैसा अब कैसे करी जो जमीन दले रहा बेच में तही सेल बाई लेवी में बेचाई अभी पांच मिनट में मैं अभी देख ला सकू दूसरा चीज वो देखले रही हो हरस अभी बा एगो गारंटी एगो आदमी से की मांग करे तोरा एगो है लाशीहस मांगता दूसरा पैसा खेपते बा पे ये करे कि तीसरा मांगता तोहर एगो जमीन लिपोटेक में डाले के दूसरा बोलिए हम के चाहे एगो गारंटी भी एगो या दूगो है इन दीपो कितना मांगत हुआ तो बोलिए एगो गारंटी कौन चीज एगो आदमी तोहर खड़ा रही कि वो नहीं सकी पे करे जो आदमी मांग करता और पहुँचते हुआ जिसे मैंने बोल सा वो पे करी आ एगो चीज देखा है बहुत साला बंक का करेला देखेला कि हो आदमी जो मंगले बा पैसवा वो नहीं सकी पे ये करे तो के बोली के वो चीज करब सामने हो जो आदमिया खड़ा खुलबा गांचिया ओकर जमीन में बिज दई अगाड़ी हो जमीन में रही गांची सब चीज खड़ी खड़ा हुई है जो

0: तुम्हारे पोष नहीं हुई बाप रिस नहीं लिया।
1: हाँ हम की पिछली बार भी बोले रहला कि हाँ। जहाँ तक सकबा कोई की गाँवची नहीं खड़ा हुई, अब क्या है गाँवची खड़ा हुई बा तो चला जाने के कि हो जो नदमिया लोन लेवा था उस सकी अपन लोन पिए करे ओकर पास इतना अथी बा सुविधा बा हाँ। नहीं तो आज ओके कुछ हो गल जान लिया कि लाश हाउस आवी बा ओकर पत्नी बा जो काम करता जैसे कि कोई तो चाहला कि आज कुछ हो गल तो सकियन जा पिए करे नहीं सकियन जा तब तक मान लो हम तो हर काम हुई नहीं था ता तू पे कर बा हम नहीं पे कर ली था तू पे कर बा हमके कुछ होगा
0: जाने ला बोले लन सन जो तुहर पोष बा अपन बा तो ओकरे सक बा एगो बोले के एगो गाँची खड़ा विके दूसरा के कभी जन ले नहीं हुआ है नहीं बात थोड़ा ठग दे होता अकेली मन से बोला था बस कि कब चाहिए के पैसवा अरे बाप ऐसा एगो कुमार जे है बतिया आई कि ओकर से ली मन दूसरा कोई नहीं बा अब चो के कब वो नहीं सकता पे करे दे तो के जाके बोलबा ना दिख हम के तलाशियों से पापिए भेज ले बा कि आज तक कभी नहीं पे कर ले न लेते न कैपिटल न कुछ नहीं बस कि लाभंग भेजेला कब नहीं आवेलन सन पैसा हर छ महीना में लाभंग के चाहे एगो पापिए भेजे के वो फेंते हुआ कि जोन पैसवा मंगले बा ले ले बा पैसा और ओकर गाँवची आके
1: अच्छा गाँवचिवो के मिले ला
0: हाँ दोनों के मिले
1: ला गाँवचिवा के जब देख ले ला कि तब छ महीना से पे नहीं कर ले बता कुछ होई
0: ओके जाई देखे ना जो कि ओकर फलीवार वाके जोन के खड़ा हो रहा गाँवचिवा बोली ना अरे देख का करत हुए तू हम के लाभ भेज दे भाई को पापिए वो पपेवा में भेज ले बाकी नहीं आज तक ना कैपिटल ना लेते ना कुछ होते हम तो देखते हैं बाप कुमार जी हम सबसे बड़ा गलत चीज कर ले हैं अब हम देखते हैं डूबा था यूं में बोले डूबे वो तो सोचा डूब जे ली मन से
1: माना कि एक जना लोन ले लेवा लामाओं से पे ये नहीं करता तो अगर जो गाँव छिवा बा जैसे कि हर महीना चाहेला मान ला हर 25 तारीख के चाहेला 20,000 पे करे के
0: हाँ जी
1: ना तो एक महीना चल गल दो महीना चल गल तीन महीना चल गल वो नहीं पे कर ले बा
0: हाँ।
1: छ महीना चलाल नहीं पे कर ले बा
0: हाँ।
1: लाभ पापिए विदा करी हाँ। हो जे अदमिया लोन ले लेवा
0: हाँ हाँ।
1: और जे गाँव खड़ा होल बा उकरो विदा करी तो जे गाँव ची खड़ा होल बा तो ये हाँ। नहीं पे करता उका पैसा नहीं कटाई
0: हाँ नहीं अभी थोड़ा बोला हर छ महीना में लाभंग भेजेला एगो पापिए कानून बगल के हो बोरोज लेंडिंग आख जो बा वो सब तारे देखब सर कितना प्रॉब्लम आल बा बिला कुआ में सिलबाई लेविया में बस हुआ का करे ओके बोली कुमार जब पैसवा हर छ महीना में तो है जो जो खड़ा होल बा ओकर गाँव छिया गाँव जैसे हम नहीं बोले सर तो तो जाना था ना छ महीना हो गल नहीं दिलक पैसा तो सब मरता नहीं
1: तो इसका मतलब ई बा कि हमार हमार हमार जमीन जायदाद खतरा में बा
0: है का अब तोहरा तो तराका लगे लगी बस
1: हाँ।
0: तो पैसा ओकर जमीन में खड़ा लो अरे तोहरो लैका फैका हो घर उर में सब होई अब जेब यहाँ से कहाँ काल से जी तोहर जमीन वहाँ होई तो ही ना लगे तराका कब तरूरा बोली एगो आदमी खड़ा हुई के ओकर गाँवची बहुत बहुत चीज सोच के चाहेला ऐसा एगो आदमी के सगबा खड़ा हुई कुमा जाए हमार लिए बोलब हमार एक्सपीरियंस में जितना चीज हम देख लें कैसे हुले होलबा लाखों में कैसे से हम तो कोई के नहीं खा आओ भैया हमारे यहाँ तुरा एक ग्लास मनबा खाई के हाँ खा ली मन से आराम से पैसा नहीं मांग ही सर बस सबसे बड़ा जय कुमार जे दुश्मनी के काम करब कब कोई से पैसा प्रेते करत हो काल ओकर से मांगब कोई थोड़ा नहीं खुशी रही ले के मांगे के बड़ी जोड़ी चीज है मैं कब हाँ बूसे करे के अब देखब तू अब तू जाइ वाला कुरुआ तो वो कहाँ वो आदमी वो जाता
1: हाँ, बोले ना सर ना जब कोई के पैसा मांगे के रहला तो सर झुक जाला जब पैसा देवे के रहला तब पीठ मुड़ जाला
0: हाई का हाई जोली बन बोल तो देखला हिया ये खातिन ये सब एगो फाई चीज हक मजा कभी एगो आदमी के नहीं जाने लो कि अब ओकर खातिन गाँव छो हाँ एक बान आदमी नहीं खराब ला जनो तोहर पोष हुई भाई बहन हुई तई तब एगो आदमी दूसरा बोले अरे
1: मर भाई बहन लोग भी जब बात करी ला जाए तो वो लोग सब भाई है खड़ा हो जाएला फिर भाई नहीं पे तो प्रॉब्लम हो जाला
0: हाँ बहनुआ पे करा मैं भाइयो हो बहनिया में हम नहीं बोलते हैं भाई बहन में राखिया हुआ था अभी लिया तो याद करावेला एगो भाई बहन लोग के कैसे हमने के हई रहे के
1: चाहे हर कोई के रिश्ता पारी नहीं रहला
0: एक यही बोले खोजत हैं मैं मेम की देख भाई बहन हो सबके सोच विचार अपन भाई बहन संगे बराबर नहीं है कितना मॉरिशस में बा भाई बहन अभी तो गैलाशों में नहीं हो सन लीमन बात बोली नहीं करे लन सन ये कर से सकी वो कर से अरे हम तो
1: जमीन जायदाद के लेके ढेर कोई झगड़ा करेला
0: यही बोला था हम कि देखा हम तो यही में हई दिन रात के बा कब हमरे बिरोवा में कब देख बा एगो भाई बहन आल बा बिरोवा में अब हुआ पता के विषय हुआ था हई बोला था नहीं हम हियाँ चाहब वो बोले नहीं हम गरुआ चाहब

0: अब हियाँ झगड़ा ले बाप देख मजे मार पिटाई बीरोवा में तोरा रहे तो डगर लग जाए अभी आदमी के बोलबा ना ऐसे नहीं कर सर बस कि मजे ये काम करे ओकर मांगता उ लगे के गाड़ी दे उ लगे जोर से बतियाई पूता अपने अपन हवन सन भाई बहन बस कि उमे आर जे बोनो ढूक गल का हो गल बहनिया के चाहे ला सबे सुने के तो ही आदमी बोले ला दे गए कभी अच्छा हो गया सुन के तो चाहे भी करेला एगो दूसर एंगल से देखत सही सर एगो दूसर मान्य
1: हस्ता को यही सलाह देब कि गाँची खड़ा हो से आगे दस बार सोचिए
0: हाँ बस जब
1: दो बार नहीं दस बार
0: आपके हौ आदमिया नहीं पे करी तो जो अधिक खड़ा होल बा गाँची वा ऊ पे करी और गाँचिया के कुमा जे दिन हो गल नहीं सकता कुछ ये करे तो का करी लबोकुआ अब रिक्यूपिया करी ना पैसवा ओकर से हौ से तो नहीं बा कुछ बोले
1: अच्छा हम बोले रही जा कि मान लो छः महीना हौ जो जो आदमिया बोले रही जा लोनवा ले बा नहीं पे कर छः महीना हो गल पापिये विदा कर लन सर दोनों जरा के पापिये मिलल गाँवा के भी पापिये मिलल और जे जे गाँव चिवा खड़ा बा ओके पापी मिलल और जे पैसा ले बा ओके मिलल अब छः महीना हो गल तलाबा कुछ करी उ गाँव चिवा जो खड़ा बा ओकर पैसा काटी
0: उ नहीं काटी नहीं है अभी अब देखा था कुमा जब पहला चीज नहीं था ओकर काटी नहीं कहाँ से ओके पैसा मिलत है पैसा तो नहीं कला मजे हई एगो गाँची दे बा कुछ गाँची दे बा जमीन दे बार घर तो ओकर कैसे नहीं सकी न है कुछ करी अभी
1: अच्छा
0: बस हुआ तो है कब एगो गाँव एगो आदमी खड़ा हुएला बोलेला है इन द इवेंट ऑफ एगो बोली के जे उ नहीं सकी ई चीजवा करे तो तोरा चाइना पिए करे के
1: हवे बोला था
0: जब हाँ, तो पिए करे के अब तो नहीं पिए करता ना ओकरो तो गाँव छिवा के जोन खड़ा रखल कुछ तो नहीं बा पैसा तो नहीं बा बैंक में या मजे कहूँ बाकी घर में हाँ जमीन दल वाली पोते
1: हम सोचने की मान ला 10,000 हर महीना पे करे के बा एक जना नहीं सकता पे करे 10,000 बा तो हो जो गाँव चुवा खड़ा बा उकर, उकर खातिर तो उकर, उकर लाभांक में से 10,000 कटाई
0: नहीं एगो लारेंजमेंट हुई अपने तेवा में और जो गाँचिया खड़ा होल बा कैसे हमार तू वहीं से हमने पैसा ले रही हम गाँची खड़ा ही तोरा हमारा तोहर में से कब से को लाजमा करे तू सकबम करे भैया देखा हमारे यहाँ पैसा नहीं बा आज कुमा जे एगो प्रॉब्लम बा तोहर यहाँ तो बात हुई तो जानी ला मॉरिशस के सबसे बड़ा है हई मिले दे हुआ भर दे भैया हमार संगे पेय कर फिक्र नहीं करिए तू कोतवा रख ले जाइए मैं हम काल तो के पे करब हाँ ऐसन कौवा में गाँबू से करब सदा जी
1: अच्छा।
0: हाँ ऐसन कौवा में उ सकेला कुमा जे जाके बोला बंकवा के बोले हईका उ कोतवा में हाँ सिपा ओकरे दे दे के अपवा के बोले हईका पैसा तो के देव तई जो पे कर दिए और हुआ कुमा जे तोरे गई में अब तक कटले जाई ना हुआ लंकवा सब जे अब तू देख पे करते जाता हूँ मैं से यहाँ कब देखत है सर
1: जमीन
0: ते वो गाँव जो खड़ा हुआ बेचारा वो पे ये करता
1: अच्छा
0: समझला ना वो पे ये करता अरे ये नहीं पसके ना तेल मुआये नहीं
1: यही पैसा के बाद भाई यहाँ पर जब जमीन की बात करत है जा हुँ? तो जो नदमिया माटी किनरे बा घर किना था हुँ? और लाभोंक ले बा लाभोंक से लोन ले बा तो वो जो गाँव जी बा वो दूसर कोई के माटी पर बा अच्छा तो यानी कि पैसा प्रॉब्लम नहीं बा यानी कि पैसा नहीं भरता इतना ओके बोलियन से इतना तो के समय देवता भर दे नहीं तो जो गाँव चिवा बा तो के मुश्किल होई
0: हाँ।
1: तो जब नहीं भरला तो जो पैसावा गाँव चिवा खड़ा बा अब ओकर जमीन जाए सेल बाई लेवी पर
0: हाँ ओकर जमीनवा सेजी करी मजे सेल बाई लेवी अरे छोड़ा सन बुतवा बोला सर
1: तो गलत हो गल
0: हाँ तो ये फसी नहीं ये कानून हो
1: हाँ तो गलत
0: लॉ रिलेटिंग टू बैंकिंग बैंकिंग आक में लिखल भाई सब सब बोरोएस आक में सब बा
1: और हाँ जन जन जन जन अदमिया अपन माटी किनले बा ओकर ओकर माटी के कुछ हुई
0: नहीं जुन किन्ने पास बुझो मटिया मटिया तो ही बा ना
1: हाँ।
0: तभी तो उमे तो मजे मजे हई नहीं पे कर ले बा एगो ढेर पैसा जैसे तरुलाम के बोला एन मिलियों के ले ले बा पैसा एन मिलियों के हई बा जमीनवा बा
1: तो हुआ तो जमीन नहीं बेची
0: ना अभी के लिए नहीं एगो लेता देवेला
1: हाँ, हाँ,
0: एगो लेता देवेला ओके कौन सी करे खोजता यहाँ देखा था कि कुमका पैसा नहीं सकता कहाँ मुझसे करे या नहीं देता तो कुछ बोल भी नहीं करी लाभांक तान कर ले नहीं पे ये करी तो सेजी करी ना कैसे रिक्यूपेयर करी ओकर पैसा जो हुआ आवासे कर ले बगवा के किने के तो जमीन हुए हैं कि ओकर मजे है बागाँच हुआ करे के आलो तो का यहाँ कर लग देखभाल कहाँ से वाद कॉन्टैक्ट करी अब जब देखता न अफाते हुआ पे करता न जो नदमिया गाँची बा खड़ा बा ऊ पैते करता पैसुआ तब बोली कैसे करब हम आरसी बोझो एगो बोली के हो गए दो तीन चार पाँच बरिस के तो हिया देखो कोतरा कर ले रहा।

0: नसीब बोझू पाँच बरिस के बोली के अब यहाँ चार बरिस सिवा पाँच बरिस हो गल अरे पाँच बरिस हो गल कुछ आज तक पे नहीं कर ले बा अब का करी लबकुआ वो कर मन जो जो आसोस बा वो सब लोन उनके विषय से पैते करके पैसा अब उ लोग को ताकते करी उ लोग लाभों के आवे
1: La banque a voulu contacter quelqu'un de ça.
0: Ah, ah bien, c'est le bail de vie à 7 minutes.
1: Ah,
0: ah kakari, ou avoué, ou a bégi, ego papier, mise en demeure. Mise en demeure, ego legal canon, bagalse, ego papier, ego notice, legal notice.
1: Quelle est déjà?
0: Ah, ou bégi, ok, ou emprunté, ou a rien, qui boli, déca. तो हर दिन नहीं उन्होंने कर ले हुआ हमने देवा था ऐसा तो आरासी बोझों 15 दिन की कुमाज़े लाभों की कुमाज़े जा के रंबुसे कर दा नहीं रंबुसे कर ला तो ही हमने सेजी करे अब सा तो हर ज़मीन अब आवोया भेजिला उल्लेतुआ उक मज़े मेमोर हक मज़े आये गो एगो है पापिये उ में के मिज़ान दे मेर एगो लीगल नोटिस कौनसी नोटिस बोलिया सो के कि ओके चाना भरे के ओकर है पैसा अब देखी सा का करी हूँ कबो के मिल गल इसे जाके सेर्वी कर देलक पापिये तो नहीं से कि बोले काल हाँ नहीं हमके तो कभी पापिये नहीं मिल रहा इसे कभी एगो आदमी के सेर्वी करेला वो पापिये जाके एगो कानून के समन कुमाज बगल से तो वो जाके आदमी के जोन के देवेला बोले अरे हियाँ मिलल तो के ना हाँ बोले हाँ तोरे नाम हाँ ऐतेल बोले हाँ तो बोले हियाँ सीए कर कि कैसे वो करते हुए हमार से एगो नोटिस हुआ काल नहीं से कि बोले हमके मिलल नहीं बा एक बान आदमी बा कभी तो एक बान आदमी बोले नहीं हम नहीं रली फेंक के चल गल तस्मा है इसे वाह नोते करेला ई सब कि छोड़ दे ले बा हुआ बुगवा नहीं बा मैं पपीवा छोड़ ले बा हुआ पहले तक जमाना रहा घर के बा भी तक हमने के है के मजे पोसे जिया में पापी एक मजे वो समन उन रही तो द्वार तो हर है बा नहीं कंवड़ी है द्वार के कंवड़ी वो में है एक मजे कोले कर दे ये भी आज तक वाह नहीं छाला तानुए करे कि तोरा मिसलमा एक और दूसर दूसर कालती पोसे जिया बा मैं हियाँ का कर लग इसे वा छोड़ दिलक पपी हुआ ऊ पपी हुआ में लल दे बा ओकर आवे हुआ कि कौन कौन दिन ओके चाहेला ऊ आदमिया के आए के जो नहीं पेय करे के पास की का करेला वो एगो पोसे जिया कर ले बा एगो लावंत करे के एक नाम है अलाबा सेल बाय लेवी अब वो मांग करता एगो सेल बाय लेवी करे के अले सेल बाय लेवी करे के आदमिया के पैसा मिल गल ओके चल गल कुमा जा अब ओके चाहेला लाखू राय के अई का अब उतना बढ़ती आईली सर अब हमने आपसे सेल बाय लेवी कैसे शुरू हो गया तो पहला चीज ये एगो पोसेजर है देख बा हर जेजी के एक बज के आधा है के आगे मस्त कोर्ट के आगे शहर है ओकर लाखू शिपम में वहाँ हुएला सेल बाय लेवी मस्त ऊ आसाज है इस सेल बाय लेविया के विषय में हियाँ पहला ओकर पोसेजिया देखब सर कि ओकर कैसे हुएला ये इस सेल बाय लेवी
1: हमने सुन ले है जा सेल बाय लेवी सेल बाय लेवी कौन ची हाँ हाँ जब कुछ चीज सेजी हो जाला तो वहाँ पर वहाँ ताला बा होवेला यानी कि सब कुछ इतना बोली लगावेला जेकर सब तेजस्ती बोली रहेला ओके हो जो चीज हुआ बाओ के मिल जा रहा यानी घर रही जमीन रही घर जमीन के अलावा और कौन चीज रहेला
0: नहीं एक बात चीज अभी बोला सा खूब बिसेल मा घोसो मोटे तू बोल देला पोसे जे हुआ मैं ही यहाँ एक एक चीज है आप वो वहाँ भेज दे ले बा हाँ एगो पापी वदमिया के वदमिया के अब ओके आई के चाहेला ऐते लाकू में मिसेल मा आप वो वहाँ आ गाड़ी मजे सेल बाई लिविया करे क्या गाड़ी मस्त के आगे देवेला एगो रजिस्टर सुप्रीम कोर्ट के मस्त रजिस्टर हुई है फाइले करेला एगो मेमोरेंडम ऑफ चार्जेस मेमोरेंडम ऑफ चार्जेस है एक हमने मैसे काये दे शॉज यही में सब लिख ले बा कि कौन ची कर ले हुआ कब पैसा ले ले हुआ लाभांक से कितना दिन हो गल भरीसन ओला सम ले लम ओकर मजा किसी को प्लान था ओकर में सब दे ले बाकर पोजिशन कर ले रखल सब चीज
1: अच्छा हाँ जो जो घरवा बेचाता माना जो प्रॉपर्टी बेचाता
0: हाँ
1: काहे बेचाता वो सब देता ही रहला
0: है का तो उस है किसी को केस हुए ला लाकू में कोनो केस में अभी एगो बोली कि तू हमके गाड़ी दे ला हम तोरा मन बाम के पूछवीव करे कि तोरा जिफा माशों के तो प्लेटवा में सब बोलब न कौन गाड़ी दे ला हुआ और मुरिशन तो फो गाड़ी दे में तो गरिया

0: देखा लिख के कौन कौन चीज बोले बा प्लें तो वो में इसने कहा वहाँ तला बा वहाँ सब चीज बोल दे कितना लाभांक से ले ले रहा सब कर देता है तब कुआं हुआ डाल दे लब उकर मेमोरेंडम ऑफ चार्जेस काये दिसोस उमे सब उकर क्लोज सब उकर कंडीशन
1: दिमाग में एक उस सवाल आवा था
0: बोला जी, बोला।
1: हम सोचा था मान ला कोई के घर बेचाता 2 मिलियन के भरे के बाद लाभांक में घर बाद 3 मिलियन के बाद 2 मिलियन भरे के बाद लाभांक में लेकिन वो लोग पैसा नहीं बने सकते जा पे करे तब सेल बाय लेवी जाए से आगे सकी कोई आके हो पैसा भर के घर वापस नाम पर कर ले
0: नहीं ई कब वो लोग घर पहुंचते हुआ कुमा जे डिस्पोजे होई कुमा जे वो मैं नहीं सकी जाए लाभांक के बोले हे हम ही पे कर दे
1: मान ला हम एगो घर किन ले है 2 मिलियन बा पे करे के लाभांक के मन लागे पैसा नहीं बा अब हम तोहरा बोला थे कि हमने हम तोहरा 2 मिलियन वा जुन बा हमके द हम भर देला घर वाम तोहर नाम कर देवा
0: ये लागंसमा हुएला दोनों में भी सबसे जोड़ी चीज है लाभों के बी का जब पैसा फैते करेला
1: पैसा
0: कब पैसों के रिकवर करी
1: हाँ लाभों के बार काम ओकर पैसा दे रहे बात ओकर पैसा दे दा
0: आले तो कोनो आदमी अब ओके मन होई एकर से लागंसमा करे के बस बोली हाँ दुआ हो ओकर से लागंसमा करके बोली फिकिर नहीं करिए चल हम दे ला तुके पैसा जो हुआ सिर्फ को चेकवे दे देला कि हुआ बताओ उतना धारे ले जाके हुआ पे कर दे तब हुआ का पेय कर दे लग तब सब जला बों को एक जाना था हो तीसरा आदमी आज जोन पे दुनिया पैसा दे ले बा वो कितने नहीं जानता ना
1: खतरा बा पैसा मिल गल घर घर घर ओकर होगा अब बोली पैसा नहीं बातों के देखे तब कसा कासा की करे
0: तो ये एगो चीज हम कब वो देवता पैसा ते गोला हंस मन करी अंधानियर नहीं ना पगला नियर जैसे बोली रहा सर जाके ओके पैसा दे दे बोल हेर 2 मिलियन अब कोरे जो हुआ भर दे
1: हयो खातिर चेहरा जाके वकील से मिलके बात करके पापिये बनाए के तब सीएओ करे के सब हाँ
0: ये भी होवेला और हम भी कौनसे ही करता जैसे बोला खूब बोला बस ये नहीं जाना होगा मियाँ कब ले लिया पैसा दे कि नहीं ते को पापिये बोले तू ले जिक्री रेस पारोल सं बोल तो सारे जैसे पपी हुआ मैं तो लिख दे ला ना कि धारत आए तेल तो कि पिए करेगे चेहरा मैं हियाँ कभी होवेला हूँ एक बार आदमी हम देखले हई भी ओकर मजे बड़ी क्लोज हुई ओके सखी बोले देख हम तुके देवत नहीं फिक्र नहीं करिए तू हम कि भगवान दे ले बा अरे कुछ हमारे लिए तो 2 मिलियन कुछ नहीं है तभी के लिए तो सच है कि 2 मिलियन तक मजा एगो हर आदमी के 2 मिलियन बा कुछ में भी है अरे तो जाके हुआ लबोकुआ के कुमा जे बोले ऊ जाके भर देलक तो बोले नहीं पापिये वो सब नहीं चाहेला हम बात कॉन्फियंस तुर में हम के देबे तू जन्मदिन होई अरे गो बोलियो के नहीं हो सकले
1: नहीं दे दिले तो कोई बात नहीं
0: बात
1: यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं बा
0: कोई नहीं प्रॉब्लम
1: प्रॉब्लम तब बा जब कि तुहार पास नहीं बा लेकिन फिर भी कोई की मदद करत हुआ लेकिन जब लाभों के नहीं सकता पे करे तो चाहना सोचे कि लाभों के नहीं सकता पे करे अगर घर सेजी हो जाए हम से कब दे तो लाभों के नहीं दे तो हम के सकी दे
0: तो ये नहीं आदमी सोचे ला वो देखी का करी मैं सेल में बहुत काली थी रीजन आवेला कोनो आदमी सब नहीं सब सोचे ला वो दे के हो के मन हुई तो के दे दे आले तो का होल अब हुआ ओकर दे मेमोरेंडम ओ काये दे सौ सब देलक पोजिशन क्लोज सब देलक अब उमे मजे है कि सर्वी तक कर दे ले बा पपी वक मजे इसे जाके सर्वी कर दे बा वो अधिया में केस अब आई पो से दे हुई मस्त कोर्ट के आगे सेल बाय लेवी जो जमीनवा से बोझो दे ले रखल है एगो गारंटी है कि पैसा मांगे के वो जमीनवा अब शुरू हो बेचे के लबार में
1: हाँ ये बजला सेल बाय लेवी
0: हेलो सेल बाय लेवी आई मस्त देखब हुआ बैठल बा ओकर सेज में ओकर इशे जोन बा हियाँ या ओकर असिस्टेंट जोन बा हियाँ खड़ा बा हॉल में तो देखब आदमी भर गल बा
1: जन जन जन अदमिया लोन ले ले बा नहीं भरले बा ऊ भी हुआ बैठला
0: हां ओके तो चाहे है आई के बस ऊपर तो जमीन हुआ बेचाई
1: बहुत मुश्किल पड़त
0: हुई देख सब कैसे रोयन सन अभी तभी नहीं बोलाई सन कौन ची हुवेला हुआ तो थोड़ा चाहेला आसिस्ते करे के तब देखब अली अभी के आई तो कर पूछे जो हुआ तब हुआ गइलन सन तो हियाँ देसीदे होल अब एगो हुआ रही एगो इशे हला करी नमुआ से ऐतेल के नमुआ के ओकर जमीन हुआ हियाँ बेचाई मैं
1: अच्छा
0: मैं एगो चीज बा एक बान आदमी का करेला जब अब वो हुआ ओकर कायदे सौज दल ले बा सब चीज मांग कर ले बा लाखों सिपाही के सेजी करे के सकेला एगो करे जैसे हमने बोला सर इंसिडेंशियल एप्लीकेशन टू डिक्लेयर द सीजर ऑफ सेल नल एंड वॉइड क्या ही देखा।

0: જબ ઓકે ત્યાં થાત બચાઈ હોવ હતા કુમાર જે કેસવા તો સકેલન સન અગડીએ ઓકર આવે દેખલારે કરે કે યા કોનો એગો આદમી કે દેખલારે કરી જે ઈ સેઝી જુન આવત આજ લાકુ મે એકે દેખલારે કરે કે મસ્ત કે નેલન વોઇસ ઓફ યા કોનો વાલેર નહીં બા તો કોન કોનો રીઝન સે કે દે ઓ વાલેર નહીં બા Simple. Mm. Et vous l'exemple, si vous avez choisi d'aider les papes, rembourser car de les balles de toi, que tu n'as pas la cour, mais tu as beaucoup pour suivre car de ça n'a dit que pour n'a rien.
1: Ah!
0: Tu as payé car de les bas, tu as ou levé la ego à vous, avocat, tu as ou déjà que déclaré que j'ai ici loi John Carata, et John Bechata, là-bas, roi, mais il y a aussi tic n'aïe, et qui déclaré carré que null and void. Nul et non avenu ici. Qui n'est pas là, qui n'est pas là, qui n'est pas là, qui n'est pas là. Ta maste soune là. Maste soune là, y ego chij, kouma je, joun bola ta, ba kar prib, qui n'est pas, ou décide karela, ou de ego ruling de la, qui ici joua, such a null and void ba, such a que, pour n'a rien que, ou la banque, ou que poursuivre kar la ka. तब सकेला एगो रूलिंग दे तो ये जो हो तो आम प्लस कैंसिल हो जाए ओकर जमीन हुआ नहीं बेचाए ये एक मैं कभी होवेला जब हुआ कब कुमा जदमी पूछे करेला एगो पूछे करी कुमा जग पैसा से बोझ दे रूपी थ्रा रूपी का इसे मोहते हुए ले जला अरे तब हमेशा मिलेला हाईएस्ट बीडर के जो सबसे ज्यादा कुमा जे है बीट कर ले बा तो ओके मिलेला और सब आदमी बोले रंसन अब जे ओ जे हाईएस्ट बीडर वक मा जे कर ले बा एगो चीज आलबा तो सकेला सी बोसो ओके बोला एगो जमीन कुमा जे 10 मिलियन तक आल मिसेलमा एगो जमीन वो बा 20 मिलियन के तो सकी एगो दूसरा आदमी अब का करे वो कुमा जब बोले एगो इंसिडेंटल एप्लीकेशन करी बोले के कि नहीं वो सकल जाएला एगो आउटबिडिंग हमने जिसे बोली ला सर है किरियोल में ओके आउटबिडिंग करे के ओके कुमा जब आज के लिए नहीं हुई वो बस उन लोग के मन बा मोटे हुई के एक बार आदमी सोचे रहा इतने में गल बाबू माँ से हाँ होला मैं कभी देख बा एगो आउटबिडिंग सकी करे जोन आदमियों के मन रहल किने के नहीं सकल किने तो बोले कैसे अब एगो सीमा करब तो इससे लुआ हुआ रहे ना तो चलो हम मांगब कर हम पूछे करब ओकर से ज्यादा तो यहाँ एगो आउटबीडिंग करे सकी तो उ बहुएला आस्ते हुआ जो ओके मनबा किने के जो खरीजे खोजता उ जमीनवा के उ एगो प्री उत ऑफ दे एगो आउटबीडिंग ही एगो ऑफ
1: मान लो अगर प्री बात जिस मिलियन के ताजे वो 11 मिलियन बोल लग 12 मिलियन सके बोले
0: अरे ई भी है अब यहाँ से वो कोई छोड़ दे ला सा हाँ वो मोते करे को जाता है कब लाभ हरी मैं भी देखो जब कर पोषे जो बात किसी चले ला अभी यहाँ वो कर रही में तो यहाँ वो सके बोले कि नहीं हम एगो कुमार जी है आउटबीडिंग कर एकर पुईवा में गलबासी बुझू 2 मिलियन में नहीं हम एक्सेप्ट हैं 3 मिलियन से बा कितना दे के ऊपर आज मोते करे के तो नॉर्मलमा का होला सी बोझो ये सब नहीं बा आउटबीडिंग कुछ नहीं बा इंसिडेंटल एप्लीकेशन कुछ नहीं बा ओ जिने ऐसने जाता तब हुआ रहेला एगो इसी इसी वा एगो कोर्ट ऑफिसर है लाकुर के अब वो कर हाइप मजे बोलेला एन मिलियन तैसे करी कर कपार होने देखी तसे की आदमी बोले एन मिलियन दे तब यहाँ एक और ना हो बिडिंग हुए भाड़ा उनसे तो हम मोटे कर ले हवी दे दे एक मज़े तो तीन हला में जब एगो देखा था कुमार जस बोल दे आज से बोलो बोल दो मिलियन अब कोई हिन्ने देखा था होने देखा था दो मिलियन दो मिलियन दे सुपर दो मिलियन तो कोई नहीं कुछ बोला था तो सावे जा का कुमार जा एन कुछ देखो थोड़ा कुछ कर लग एक रे नमक खिए मजे हला करी कि ऐतल कब देखता कोई है नहीं बोला तो एगो आदमिया जो बोले रहल कि दे मिलियो हाँ तो बोले ओके ई जमीन हुआ तोर है नाम में अब तो के मजे मिली तोर नाम में मजे ई है बा बीजिंग वा मिल बा तो के मजे पोपितेर बन बे ई में तब ओके बोली आओ यहाँ आगे सब आदमी बैठल बा आई यहाँ आगे ओके बोली हे देखिए एगो दुखी माँ बा हमारे आगे हाँ सीए कर मतलब सीए करी कि वो आदमिया कि ई कहीं नहीं ऊ जमीन हुआ अभी तो यहाँ तो लाकुर में बा पोसे जो तो नहीं बोलवा ना ओके पोपितेर बने के तसिल में वो ही बोले ला ऊ डॉक्यूमेंट सीए करेला ऑन प्रेजेंस ओ कोर्ट ऑफिसे हुआ के ऑफिसे दे लाकू जैसे हमने बोला सा ऊ सीए करता कि ई जमीन हुआ ओकर नाम में ई गलबा अब जब ये हो गल बा तो का करी वो है, है सब ओके फिनी हो गल बा मजो करना में हो गल बा मौसे बा ओके एडजुटिकेट करे तो नाम में दे दिला

0: हुए ला प्रोपियते वा आदमी हां सिग्ने कर लेबा ओके अतान करे के चाहेला एगो डेले दे 21 जूर इकाया पास्के ओके अतान पंगारे को ला पेलबा नहीं देखला तीन कार केस मजिस्ट्रा में आवेला मजिस्ट्रा बोले हां कूपाब हम तो के पांच बरिस के बन कर थई
1: हां
0: तो सकेला हाथ उठा के बोले नहीं हम लापेल करब तब लापेल कैसे करी तो बन नहीं हुई ना
1: हां
0: बन नहीं हुई तो के बोली वो enfin condition बोली फूने करे के क्वेश्चन सब नहीं देखते हमने तो मिसलमा ही या उजिजमा हुआ इफेक्टिव नहीं होवेला en place हुए और जे ए वो ला पुलिस के उठा के जाके बन कर दी हां जे कुछ नहीं बोलत मैं ओके एक बार एगो डेले दे 21 जूर ओके विद इन 21 जूर ओके चाहे वो एडवोकेट देख के और ग्राउंड ऑफ अपील फाइल करे के लकुरुआ हिया अन मन हिया इसने अब वो एगो डेले मांगता कि देख हम के कुमा जे इस जमीन वा के हम नहीं एक्सेप्ट है 21 जूर द आली एगो बोली के लापेल नहीं कर लग जब लापेल नहीं कर लग ओकर कुमा जे रिजल्टा ई है जब ओके मिलल और जोन दिन से जुजमवा मिलल लाबों को आके सिपोजों आद मिलल जुजम आज से शुरू होई सब पैसा जुनबा ओके कुमा जे धारी केला ओकर कुमा जे डिडक्शन करी ओकर आवे आबोका के ओकर फीस पे ये करी कितना ओकर लेंतिरे बा ये सब सब निकाला देखो पापिये में डिडक्शन करे के सब कब ओकर कैपिटल ओकर लेंतिरे ओकर आवे आबोका के और सब जो ओकर कोसु सब ले लल बा कितना लगल बा ओकर ओकर कमीशन सब सब बाऊ में डाल के कब ओके कुमा जे गनी सिबोजों को सोम डाली अब इस सिबोजों मिशवा के मेरल एन मिलियन यहाँ ओकर 700,000 सब डिपॉन्स में होल बा ई में तो 300,000 हुआ रहेला तब उ 300,000 हुआ ओके मिली है प्रॉफिट हुआ के तो देखला एन मिलियन में से ला बैंकवा सब जन जनों के धारत रहल है एम्प्रंटे हुआ ओके कुमा जे ओके देख चला ना उही में काटी ला बैंकवा एन वर्चु उजिजमा हुआ ओकर लेंतिरे ओकर फ्रे ओकर कैपिटल आ वो आवोका के कोस जिसे हमने बोल सा अब प्लीज जोन लकुरुओं में गर हल ओकर कोस सब गन के तब डिडेक्ट करी जोन पैसवा उधार तल उ दिन से तब ओके जोन लाज डिफरेंस वा रही रिमेनिंग बैलेंस पे ये करी जोन अदमिया पैसवा मांग ले रहल तो देखला हियां से जमीन तक चल गल
1: हां जमीन तक चल गल
0: से घर उड़ होई तो वो भी लागल तो देखला हियां एगो चीज बहुत इंपोर्टेंट चीज है एकरे नाम है सेल बाय लेवी आले जुली चीज है सब तक सुन ली सेल बाय लेवी कैसे मस्त के आगे होएला अब एकर सेन मतलब हुआ गईल लकुरुआ में
1: कौन चीज होएला की के रहेला
0: अब देखो का होएला ये एको इंपोर्टेंट यही सबसे बड़ा कब एगो आदमी को मजे को प्रॉब्लम हो जाला तो देखला कवंत एगो जमीन कब हुएला बहुत सा आदमी एगो डिस्ट्रेस में बा
1: तो हर घर जाता बिचाता तो हर लगे बेघर हो गईला और तो हर आँख के सामने ही सब हुआ था
0: अरे ये तो कुरेक बा कब तो सामने अब रोई बा तू तो नहीं रोब आंसू आ नहीं बोले अंसन आंखों बगल से नहीं गिरा दिल से ब कहाँ से वो आंसू गिरा था उमे रोवा था बस कि हर आदमी ओकर मिजेर उही जाने ला कैसे वो घर हुआ या मटिया बनैले बा या कैसे कर ले बा शायद काम कर ले हो दिन रात न सीखलो न कुमा जब बोल लेता में वो काम करके रमा से कर ले बा कैसे हमने कि भाई बहन लोग बा माँ बाप लोग रहन सन कान काट के घई कंधा में हो लाद कामियों में ले जाके मूल्य में दिन रात को ही में अपन जाके अपन जिंदगी बितैलन सन अब सोचो पाँच मिनट के उ जमीनवा के पैसवा जोन से किनले रहन सन उ लोग अब तू कुमा जे उ जमीनवा के है देखत हुआ उ जमीनवा अब जाता कुमा जे है लाभ में जहाँ सब कोई कुमा जे है सोचता कि है देख अजी एक इज्जत के दीन मुरी से भी ऐसा तोरा बोली ये नहीं जाने फलना के काम है काहुल जमीनवा बोले नहीं बोले ना बार में चल गल बोले आजी को शर्म की बात को मजब ऊ के बोला हंसा था बस ओकर वासे हुआ के देखा था ऐसा सिचुएशन में बा अब देख बा जोन आदमिया हुआ बा रोवा था चियार के जोर से हल्ला करके लकुरुआ में
1: सब हुए ना हुआ पर
0: ये तो बोला था ही ना आ तोरा सिलबाई ले बिया कि ने बोली दही मिनी तो अब ये कुछ सेन देख क्या करते हैं सा अब हुआ देख बा तो कुमा जी अब रोवा था कुनो तो लिस्टोमा मारा था हल्ला करके हे भैया कोनो के तो शायद ओके हे मारे जिक्षो देवत हुई

0: रुवत है यहाँ हल्ला करता आर मांग भी करत हुई साई कभी तक बांध देखी रहा सर जीज के आगे जालन सन वी मजिस का वाक्य जीज सीप्लिए करे लन सन अरे माय बाप नहीं बेच हमर जमीन हम क्या थोड़ा सन लेता दे तो जीज हुआ तो मजिस का वाक बोली इतना तो लेता तो के दिले रहनी लोग नहीं पे कर ले अब हम के बोलते जाके पे कर बे कहाँ से अनबे तू अब भी नहीं सकले पे करे तो कब सकबे आने ये इससे चलता है ओ ही जीज हुआ मजिस का हुआ कब किसवा हुआ था एगो वकील है ओकर आ वो का जो नदमिया के कुमा जे अब चीजवा बेचाता सकी बोले मिसे जीज या मैडम जीज हम एगो बात बा बोले के बोले है आदमिया के हम ओकर वकील हैं हम मांगत हैं एगो लेता देख ला नम दिलवा ऊ बखत वाला कुरवा में आल बहुत बड़ी से हम देख लें किसी से हमू देख लें किसी हमू तो पची रही में ना तो देखब हुआ कैसे वो अवकवा कभी एगो मांग कर लग हाँ मैं स्वभाव के दे दिलक एगो पुष्पन मैट हम जैसे बोला सर उस सिलवा नहीं होल किस पुष्पन हो गल मैं हिया तो कर देखा था कोई नहीं बा आवो का वो कुछ नहीं बा अपने तब अपने तक कहाँ से कि जो उनके सुहा बा ओकर दिल में हाल स्प्रीके करके कोवें करे के मजिशवा के कि देखा ये ऐसे हिजा फेर है तो वो था ऐसे सुनी तो एगो था बस कि का है हर जेजी के तांत केस लेक आवेला जो केस बाल ला कुरुआ में हर जेजी के सोचो दांत केस और बीस गो केस बा पोफोमा आले विनी के दूसर हला कर अब सकेला गो दस गो या गो पंद्रह गो वो बेचायू दिन हुआ ये देख रहा है गो कुकुमा जे एगो इंसाफे कॉम्प्लिके नहीं है कितना यहाँ कुमा जे अभी चीज चलेला उला कुरुआ में तब यहाँ दिखब अब वो चीज हुआ हुआ बेचाई कितना हल्ला करी कितना सिपली करी बोले भगवान देख हमके कुमार से प्रभु में से निकाल द अब ओकर कुमार जो है जो है हुआ प्रेदे करता कि यही घरवा बा यही ओकर जमीन बा और कुछ नहीं बा तो हिया देख ल जितना जितना चीज होल बा लकुरवा में बहुत सा कुमार जी एगो देत है इसमें एगो कुमार जी साग में चलता दूसरा दूसरा बगल हिया तो बेचारी रोआ था या बेचारा रोआ था ओकर घर के मजा बार में एक मजा सीजल बा वहाँ बड़का मिशी बला हमारे नहीं रहे कुछ सिम पेन ले लेबा कुछ सिम पेन ले लेबा खबात ले ले लेबा बड़का फिल्म हाथ में ले ले बारे को कहीं पापिए वो तो नोते करता कितना फुआ जाता जब फुआ हुआ मोते हुआ था वो नोते करता तो वो एक दिन अगाड़ी या दो दिन अगाड़ी एक बान बाई से जाने लन सन घर वापस एगो लालिस मिलेला हई मस्त खोज से हई समय वहाँ कौन कौन घर बेचा था अच्छा। या कौन कौन जमीन से जीवेला तो कोनो तो यही में ओकर जिंदगी हई जाला एगो आदमी के बहुत हम जानी ला उबकतवा हम मस्त कोठवा में हई हर्जे जिए के जाते नहीं तो दिखिला एगो मिशिये रहल उ जहाँ माटी सेजी होए बापा तो उमे लबरुआ के दिन हुआ वो हुआ पैसा बा मोरिशस में एगो ऊ आर मन एगो मनी लैंडर रहल मनी लैंडर ऊ पैसा देवे मकवा नहीं ऊ बकत रहल एगो एगो तोरा गवर्नमेंट देवे एगो ओतो विजासियो एगो पापिए देवे एगो सर्टिफिका नियर मनी लैंडिंग ऑर्डिनेंस बगल से कि सगबत हु कुमा जे पैसा देवे तो ऊ करे तो सिलमा जाने की आदमिया पे ये नहीं कर लेबा ओकर पूछे जे तो सब हो गलबा ई जमीनवा जाने ला तो ऊ जमीनवा अब आई बेचाय तो ऊ का कर ले रहल तो जाके हुआ देखे तो ऊ के नहीं देखत नहीं तो मर गल अभी देखे अच्छा जो जीता बा वो खूब ले ले दुए गो आदमी बा खूब कुछ मुँह पेन ले ले बा ओके नहीं ऊ घरवा किने खोजी पसी ऊ पूछे करी ऊ जाने ला कर वाले मटिया के पसी चल गए एक दिन से बा दो दिन अगड़िए ऊ घरवा के देखे कौन लेता में बा ऐसे एगो बो लेता में बा कि ओकर पैसवा जो डिपोसे कर ले बा वो बा कि नहीं वो बा तो ई देखत हुआ बड़ी बड़ी एपोत हाँ तो कोनो आदमी दूसर के माले में अपने है यही सोएला अपने को मजे है धनवान हो जाला एक बान आदमी से
1: अगर पाक पैसा बा उ सकता किने किन के सकता बेचे हाँ। या तो ओकर एगो बिजनेस हो जाला
0: हां तो बस तो ई एगो कहानी कैसे सेल हुएला कोनो आदमी हुआ बेचारा या बेचारी गरीब हो जाला सब चीज बिला जाला और कोनो तो देखबो हुआ से किनेला बस पैसा वेला
1: चला एक साथ हमने के आज के कार्यक्रम जुन बा आज की चर्चा यहाँ समाप्त हुआ था कपिल रघुनंदन जी तोहरा बहुत बहुत धन्यवाद हमने के श्रोता लोग के काफ़ी जानकारी मिलल तो एक और कार्यक्रम के संगे अगले शुक्रवार के फिर मिलब जा भूलिया नहीं आप देखते हो इस समय कार्यक्रम आज की चर्चा आ गया था नमस्ते
2: आज की चर्चा

0: नमस्कार
1: नमस्कार नीलमणि, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। मॉरिशस सब अपने पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। इस सिलसिले में भारत सरकार के साथ एक समझौता तय किया गया। इस समझौते पर हस्ताक्षर किया आधिकारिक समारोह कल दोपहर पोर्ट लुइस में हुई, जिसमें प्रधानमंत्री डॉ रवि राम गुलाम और भारत की पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी मौजूद थे। सरकार से सरकार के बीच हुए इस समझौता ज्ञापन में मॉरिशस की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार करने का भी प्रावधान है। प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम ने कहा कि ये पहल एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण का हिस्सा है और इसका उद्देश्य देश की ऊर्जा जरूरतों को अधिक सुरक्षित बनाना है। वहीं भारत की पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के बीच मौजूद विश्वास और मजबूत संबंधों को दर्शाता है। मॉरिशस और भारत की सरकारों के बीच कल हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के संबंध में व्यापार मंत्री माइकल सिक्योन ने पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों के मुद्दे पर विशेष जोर दिया है। उनके अनुसार समझौते में ये प्रावधान है कि भू राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव होने पर दोनों पक्ष फिर से बातचीत की मेज पर लौट सकती हैं। इसके अलावा हर वर्ष समझौते की शर्तों पर दोबारा बातचीत करने के लिए भी एक अवसर रखा गया है। गौरतलब है कि ये साझेदारी केवल पेट्रोलियम तक सीमित नहीं है। इसके तहत जैव ईंधन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी सहयोग का रास्ता खुलेगा, जिसमें करीब 20 मेगावाट क्षमता वाले फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की एक परियोजना भी शामिल है। एबन में तकनीकी नवाचार को समर्पित करने प्रयोगशाला ने आज अपने दरवाजे खोल दिए हैं। ये प्रयोगशाला खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी आधुनिक तकनीकों से लैस है। इसका मुख्य उद्देश्य मॉरिशस के युवाओं को संवैधानिक ज्ञान से आगे बढ़कर उसे व्यवहार में लागू करने और अपने खुद के प्रोजेक्ट विकसित करने का अवसर प्रदान करना है। मॉरिशस में अपनी तरह की अनूठी बताई जा रही इस प्रयोगशाला की स्थापना मॉरिशस के अधिकार और गैर सरकारी संगठन स्टैम्प पावर के बीच सहयोग से हुई है। आज मॉरिशस में शुरू की गई ये प्रयोगशाला युवाओं के लिए प्रयोग, सृजन और नवाचार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने की दिशा में काम करेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के साथ व्यापार समझौता करीब आने के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कोनी ने प्रांतों से अमरीकी शराब को फिर से सुपरमार्केट की अलमारियों पर उपलब्ध कराने को कहा है। दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ताकारों की लगातार तीसरे दिन बैठक हुई, जबकि प्रस्तावित समझौते में कनाडा के स्टील, एल्युमिनियम और कारों के साथ साथ अमरीकी शराब को लेकर उठे विवादों को भी शामिल किए जाने की संभावना है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, हम सुन पाएंगे शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। बैटका रोड यूनियन पार्क में 88 साल के 88 ईयर्स ओल्ड के श्री मोहरलाल सिंह रामकेलावन, जिन्हें महेश के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 11 बजे उनके बेटे कैलाश रामकेलावन के घर यूनियन पार्क से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मागजानी रोजबेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। मोफे अचिल न्यू ग्रोव में 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड के श्री त्रिभुवन तांगो, जिन्हें सुखराज के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 11 बजे उनकी पत्नी श्रीमती लीलावती किरण तांगो के घर न्यू ग्रोव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मौदालबिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। रूट दे पॉम्पलेमूस ला क्वाजे वाली दे प्रेट पोर्ट लुइस में 60 साल के 60

years old, श्री दुर्गा लक्ष्मण, श्री दुर्गा लक्ष्मण जिन्हें पाको के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 2 बजे उनके भाई विक्रम लक्ष्मण के घर रूद दे पॉम्पलेमूस ला क्वाजे वाले दिप्रैत पोर्टली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही ब्रुले वाले दिप्रैत की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टुमोरो एट 2 PM। शोक में डूबे इन तीनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

चलिए श्रोताओ, 10:05 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में। ये रेडियो मॉरिशस मीडियम वेव 19 किलोहर्ट्ज पे हमारा प्रसारण हो रहा है। तो चलिए, शुक्रवार का दिन है आज और आज है 21 अगस्त 2026। तो चलिए, भक्ति की धारा बहने जा रही है इस एक घंटे के सफ़र में। वैसे जब हम भक्ति की बात करते हैं तो हमें अपने कर्म पर विश्वास रखना है, सही मार्ग पर चलना है और परिणाम जो है हमें इसकी चिंता नहीं करना है, ईश्वर पर छोड़ देना है। तो चलिए श्रोताओं, इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे भगवान गणेश जी का नाम लेकर।

0: तो चलिए श्रोताओं, 10:11 हुए हैं श्रावण मास के शुभ अवसर पर। आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम जो है आप सुन सकेंगे आचार्य सुपाल जी की प्रस्तुति में, और कार्यक्रम है ज्ञान चक्र।
1: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

नमस्कार, श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस ज्ञान चक्र कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। पानीय रूपम परमेश जगत पवित्रम चित्रम विचित्र सुचित्रम करो अस्मी नूनम।

एतद्दतो नतोऽस्मि। हे जल रूप, हे परमेश्वर, हे जगत पवित्र, आप निश्चय ही विचित्र उत्तम चरित्र करने वाले हैं। हे विश्वनाथ, आपका यह अमल पानीय रूप अवगाह नाम मात्र से विश्व को पवित्र करने वाला है, अतः आपको नमस्कार करता हूँ। आकाश रूपी पिवतिम तरो तावन काश दाना द्विज कस्य रमेश्वर विश्वे मितम तत्त्वं सदा यदा संस्मसि स्वभावान् शंको मेति भक्तो अस्मिम् नास्तस्त्वतात्मना। हे आकाश रूप, हे ईश्वर, यह संसार बाहर एवं भीतर से

0: प्रकाश देने के ही कारण विकसित है। हे दयामयी, आपसे ही यह संसार स्वभावत सदा श्वास लेता है और आपसे ही यह संकोच को प्राप्त होता है, अतः आपको प्रणाम करता हूं। विश्वंभारात्मनाम त्रिभेषे विश्वभयो विश्वं को विश्वनाथं भवतो यन्ति स्तमस्तमो रिह सत्वं विश्वासय तमो मम चाहे भूषं स्थितं वरा परमं प्रणास्वतां। हे विश्वंभरात्म पृथ्वी रूप, हे विभो, आप ही इस जगत का भरण पोषण करते हैं। हे विश्वनाथ, आपके अतिरिक्त दूसरा कौन अंधकार का विनाश शक है। हे अहिभूषण, मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को आप दूर करें। आप स्थितनीय पुरुषों के सबसे श्रेष्ठ है, अतः आप परमात्मा को मैं प्रणाम और नमस्कार करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखवा भवेत्। ओम शांति शांति इति शुभम।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।
2: चलिए श्रोताओं, 10:16 हुए हैं, भक्ति धारा कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और आपके लाए हैं शास्त्र नवनीतम कार्यक्रम। ये कार्यक्रम डॉक्टर आचार्य सुनील जी की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे।
3: वेद दर्शन पर आधारित कार्यक्रम शास्त्र नवनीत।

ओम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सभी श्रोताओं को सादर नमन। आज का विषय है अहंकार, एक बड़ा बाधक तत्व। महाभारत के उद्योग पर्व में महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है, अहंकारो महाशत्रुः स्वाभिमानो दुरात्मनाम तम जित्वा मुच्यते युवसौ नरो बंधनात् सुतारणवत्। अर्थात अहंकार और स्वयं पर अभिमान दुष्टों के बड़े शत्रु होते हैं। जो मनुष्य इसे जीत लेता है वह सागर को पार कर बंधन से मुक्त हो जाता है। आचार्य चाणक्य का कथन है कि अहंकारो न भर्तव्यः सर्वेषामपि देहिनाम्, अहंकारो हतः पुष्टः समूलं च विनश्यति। अर्थात किसी भी व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार में फंसा हुआ व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो अंततः नष्ट हो जाता है। मनुस्मृति में यह उल्लेख है, अहंकार वशात कश्चित कर्मणाम इह वर्तते अहंकारस्तु दुष्टात्मा यह स वै नरकं व्रजेत। जो व्यक्ति अहंकार के वश में होकर कर्म करता है वह दुष्ट आत्मा होता है और उसे नरक में जाना पड़ता है। स्वाभिमान और अभिमान में अंतर क्या? स्वाभिमान वह भावना है जो हमारे अंदर अपनी इच्छाओं और योग्यताओं के प्रति एक स्वस्थ और संतुलित दृष्टि उत्पन्न करती है। जब हम अपने आप को मर्यादा में रखते हैं, अपनी मेहनत की कद्र करते हैं, सम्मान करते हैं और खुद को उस तरह से स्वीकार करते हैं, यह हमारी खुद की पहचान हो जाती है और अपनी आत्मा को समझने में देर नहीं लगती। आत्ममूल्यता को समझने

तरीका है कि हमारे आत्मविश्वास को बढ़ावा देना है और अपने निर्णयों और कार्यों में निडर रहना है। अभिमान या अहंकार एक विकार है। अभिमान एक ऐसा अवगुण है जो नकारात्मक सोच और अहंकार से जुड़ा रहता है। यह हमारी भावना को इस तरह से प्रभावित करता है कि हम दूसरों से खुद को श्रेष्ठ मानने लगते हैं। जब हमें लगता है कि हम सभी से बेहतर हैं या हमारे पास कुछ ऐसा है जो दूसरों के पास नहीं, तो यही अभिमान है। अभिमान हमें दूसरों को नीचा दिखाने, उनकी असफलताओं का मजाक उड़ाने और अपनी श्रेष्ठता को साबित करने की प्रवृत्ति की ओर बढ़ाता है। किसी भी विषय तथा क्षेत्र में अभिमान हो जाने पर मनुष्य की प्रगति रुक जाती है और विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। जैसे कि विद्या का अभिमान हो जाने पर विद्या नहीं बढ़ती, वरन वह घट जाती है या घटती चली जाती है। झूठी प्रशंसा से भी अभिमान को बल मिलता है, तभी मनुष्य विकास का पथ भूल जाता है। एक बार किसी ने न्यूटन से कहा, आपने तो पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। इस पर बिना अभिमान प्रकट किए न्यूटन ने कहा, मेरे सामने ज्ञान का अथाह समुद्र फैला पड़ा है जिसके किनारे के कुछ ही कण मैं उठा पाया हूँ। जब मनुष्य अपने आप को सामान्य स्तर पर न समझकर बड़ा और विशेष समझने लगता है, तभी अभिमान का अंकुर फूट निकलता है जो दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ विशाल रूप धारण कर लेता है। झूठी प्रशंसा उद्दंडता और चापलूसी से भी अभिमान बढ़ता है। अविवेकी, अज्ञानी और मोटी बुद्धि के लोग ही अभिमान से ग्रस्त होते देखे जाते हैं। कुछ भी हो, अभिमान वह विष है जो जीवन की हरियाली को रोककर उसे सुखा देती है। अभिमान एक ऐसा विषधारी वाहन है जो अपने तथा दूसरों के जीवन को नरक में ले जाता है। अभिमान की वृद्धि के साथ ही मनुष्य का पतन प्रारंभ हो जाता है और अभिमान की पराकाष्ठा सर्वनाश करके ही छोड़ता है। रावण जब अभिमान से बुरी तरह ग्रस्त हो गया और उसने अमानवीय अमर्यादित कृत्य शुरू कर दिए, तो वह अपने परिवार के साथ विनाश को प्राप्त हुआ। अभिमानी दक्ष प्रजापति ने महादेव, जो कि उनके दामाद भी थे, उनके साथ विरोध ठान लिया। उन्हें अपमानित करने के लिए विशाल यज्ञ रचा और उन्हें तुच्छ समझकर निमंत्रण नहीं भेजा। सती के पिता अपने घर पर थे। सती के पिता के घर में बिना बुलाए चले जाने पर उनका भी घोर अपमान हुआ। सती क्रोध में आकर यज्ञ अग्नि में अपने आप को भस्म कर दिया। अंततः महादेव ने यज्ञ सहित प्रजापति दक्ष को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तब के अभिमानी ऋषि दुर्वासा ने निर्दोष अम्बरीश को शाप दिया, किंतु उसका मूल्य उन्हें ही चुकाना पड़ा, जिसकी उन्हें स्वप्न में भी संभावना नहीं थी। सिकंदर, हिटलर, मुसोलिनी, नेपोलियन आदि को भी अपने बढ़ते हुए सामर्थ्य के अभिमान में पराभव और पतन का सामना करना पड़ा। अपने संग रूप, सामर्थ्य, शक्ति और कितने भी विशेषताओं का अभिमान मनुष्य के पतन का कारण बन जाता है। अभिमानी व्यक्ति को सदैव अपनी प्रशंसा प्रिय लगती है, उसे अपनी प्रशंसा करने वाले भी प्रिय लगते हैं। ऐसे अभिमानी व्यक्तियों के वातावरण में चापलूस लोगों का गिरोह इकट्ठा हो जाता है। अभिमानी व्यक्ति को अपने सामने दूसरे प्रगतिशील, उन्नति करने वाले, बढ़ने वाले व्यक्ति तनिक भी अच्छे नहीं लगते। ऐसा व्यक्ति नहीं चाहता कि कोई और भी दुनिया में ऊंचा उठे। अपनी ही उन्नति और संतुष्टि में ही उसे आनंद आता है और अकारण ही वह

0: गतिशील तत्वों से ईर्ष्या द्वेष रखकर उन्हें हानि पहुंचाने का षड्यंत्र रचता है तथा दूसरों को दुख पहुंचाता रहता है। अहंकार एक ऐसा अवगुण है जिससे अपना आत्मिक स्तर गिरता है, परंतु स्वाभिमान अहंकार से बिल्कुल उल्टी है। स्वाभिमान एक गुण है। आत्मा की शक्ति और मन की पवित्रता पर विश्वास करना तथा कोई ऐसा काम न करना जिससे अपनी या किसी अन्य की दृष्टि में यह मूल्य घटता हो, ऐसा करना स्वाभिमान कहलाता है। बिना भय तथा प्रलोभन के कष्ट सहते हुए भी अपने श्रेष्ठ कर्म में संतोष एवं गौरव अनुभव करना स्वाभिमान कहलाता है। स्वाभिमान की रक्षा की जाती है। अहंकार के वश में होना एक दोष है। विनम्रता से अहंकार का नाश होता है। अपने दोष दुर्गुणों को दूर करना और श्रेष्ठ व्यवहार करना मानवीय कर्तव्य है। आत्मसुधार की पहली आवश्यकता है अपने दोषों एवं भूलों को स्वीकार करना। यह तभी संभव है जब मनुष्य के अंदर विनम्रता हो। अभिमानी व्यक्ति अपने दोषों को कभी स्वीकार नहीं करता। नम्रता मनुष्य को उसकी सही स्थिति का बोध कराती है। अपनी स्थिति का बोध, अपने दोषों की स्वीकृति मनुष्य को आत्मसुधार के लिए पर्याप्त सामर्थ्य प्रदान करती है। बुरे विचारों की कीचड़ में फंसा हुआ व्यक्ति अपना प्रभाव खो देता है। कुविचार और कुकर्म मनुष्य को सदैव अधोगामी बनाते हैं। मानव जीवन की सार्थकता के लिए पवित्र मन, निर्मल विचार और पवित्र कर्म अनिवार्य है। सत्वगुणी विचारों से प्रेरित मनुष्य का खान पान, रहन सहन, वेशभूषा और बोलने की शैली भी पवित्र होती है। अतएव जब कोई व्यक्ति अहंकारी हो जाता है तो वह सीखना बंद कर देता है, जिससे उसकी प्रगति रुक जाती है। झूठी प्रशंसा अक्सर व्यक्ति के अहंकार को बढ़ावा देती है। महान वैज्ञानिक न्यूटन का उदाहरण प्रशंसनीय है। जब न्यूटन को पूर्ण ज्ञानी कहा गया तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा कि वे अभी भी ज्ञान के विशाल समुद्र के किनारे केवल कंकड़ बटोर रहे हैं। यह दृष्टांत हमें सिखाता है कि विनम्रता ही निरंतर विकास की कुंजी है। न्यूटन ने ज्ञान को एक विशाल समुद्र के रूप में वर्णित किया जिसमें वे स्वयं को केवल किनारे पर कुछ कण खोजने वाले व्यक्ति के रूप में देखते थे। सत्यार प्रकाश के दूसरे समुलास में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि अभिमानम श्रियम हन्ति, अर्थात अभिमान श्री का नाश करता है। अभिमानी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और शोभा नष्ट हो जाती है। श्री का नाश करने वाला अभिमान रूपी शत्रु मनुष्य को दुखी और दरिद्र बना देता है। अभिमान मनुष्य की बुद्धि और विवेक को हर लेता है। आज के लिए इतना ही। अब हमें अनुमति दीजिए। ओम शांति शांति शांति।
1: अभी आप सुन रहे थे वेद दर्शन पर आधारित कार्यक्रम शास्त्र नवनीतम, प्रस्तुत करता डॉक्टर आचार्य सुनील।

चलिए श्रोताओ, स्टूडियो की घड़ी में 10:30 बज रहे हैं। भक्ति धारा कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और आज है शुक्रवार। हम माँ दुर्गा को पूजते हैं आज का दिन। बहुत सारे भक्तगण जो है उनकी जो है व्रत धारण करते हैं। और श्रोताओ, आज जो है जब हम बात करेंगे दिव्य शक्ति की,

0: से हम माँ दुर्गा आदि शक्ति और जगदम्बा के रूप में पूजते हैं। शक्ति की देवी हमें याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति केवल सामर्थ्य में नहीं बल्कि धैर्य, करुणा, साहस और सत्य के साथ खड़े रहने में होती है। तो चलिए चंद भक्ति गीत आपकी सेवा में माँ दुर्गा पर आधारित।
1: जय करा श्री रामाली।

श्रोताओं, माँ दुर्गा का स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में कठिनाई आए तो डर कर पीछे नहीं हटना चाहिए, विश्वास और अच्छे कर्मों के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो चलिए, कार्यक्रम को हम बहुत ही श्रद्धापूर्वक चला रहे हैं इस समय रेडियो मॉरिशस पे। कहते हैं जहाँ श्रद्धा है वहाँ शक्ति है, जहाँ शक्ति है वहाँ जो है आशा रहती है। तो चलिए, बहुत ही प्यारा सा भक्ति गान जो है आप सुन पाएंगे, और ये प्यारा सा भक्ति गान जो है आप सुन सकेंगे अनुराधा पौडवाल के स्वर में।

चलिए श्रोताओं, माँ की शक्ति हमारे भीतर आत्मविश्वास जगाए, मन को शांति दे और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। तो चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये रेडियो मॉरिशस है, हम प्रसारित कर रहे हैं भक्ति धारा कार्यक्रम।

इन प्यारे प्यारे भक्ति गाना आपके नाम है इस कार्यक्रम के अंतर्गत। श्रोताओं, आपको पता है कि माँ दुर्गा का एक स्वरूप है माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी को हम बहुत ही श्रद्धापूर्वक पूजते हैं हमारे घर में सुख शांति समृद्धि पाने के लिए। और आपको पता है कि माँ लक्ष्मी जो है वो चंचला है, और माँ लक्ष्मी को स्थिरता से हमारे घर में वास करने के लिए हम मंत्रों का सहारा लेते हैं। तो मंत्रों के ज़रिए जो है मंत्रों का उच्चारण करके हम स्थिरता से माँ लक्ष्मी को हमारे घर में वास करवा सकते हैं। तो चलिए अगली भेंट में ये प्यारा सा भक्ति गान आप सभी सुनने वालों के लिए।

चलिए श्रोताओं, आज है शुक्रवार और शुक्रवार का दिन हम बहुत ही श्रद्धापूर्वक पूछते हैं और माँ लक्ष्मी को, साथ में माँ दुर्गा को। तो चलिए कार्यक्रम का समापन हम कर रहे हैं। साथ निभाने के लिए धन्यवाद। कुछ ही घड़ी में 11 बजने हैं और आप समाचार सुन सकेंगे। समाचारों के उस पार हम उर्दू कार्यक्रम पेश करेंगे सायदा की पेशकश में। तो चलिए, हमारी तरफ से आप सभी को शुभ दिन।

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। एक बार फिर आपसे अर्शिता नमस्कार।
1: नमस्कार, संक्षिप्त समाचार में आप सब लोगों का स्वागत किया जाता है। कारोबारी और सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध मुजफ्फर लाल मामूद, जिन्हें मूज के नाम से भी जाना जाता है, FCC की एक हाई प्रोफाइल जांच के सिलसिले में तलाशी जा रही है। कल उनके आवास पर जांच अधिकारियों ने कार्रवाई की थी, लेकिन पूछताछ के लिए उनके साथ चलने से इनकार करने के बाद जब तक उन्हें आधिकारिक समन भेजने की प्रक्रिया पूरी की जाती तब तक वह लापता हो चुके थे। गौरतलब है कि मुजफ्फर लाल मामूद को इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। हाल ही में उन्हें गांबे में 10 मिलियन मॉरिशन रुपए की कथित एक्सट्रोशन के प्रयास के मामले में भी गिरफ्तार किया गया था। लाहौजा में कल एक स्थानीय निवासी को कथित तौर पर गोली लगने से चोटें आईं, उसे इलाज के लिए रोजबेल अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि गोली चलाने वाला संदिग्ध व्यक्ति भी घायल हुआ है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जमीन को लेकर हुए विवाद के बाद दोनों व्यक्तियों के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा था। वहीं कल शाम बुबा समय मेट्रो की पटरियों के पास एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया। मृतक के गले पर चोट के निशान पाए गए हैं। शव मिलने के बाद कुछ समय के लिए मेट्रो सेवा भी प्रभावित हुई। मौत की सही परिस्थितियों का पता लगाने के लिए आज शुक्रवार को पोस्टमार्टम किया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में FCC की जांच के तहत BA एक्सचेंज के पूर्व मैनेजर 42 वर्षीय नीतीश सिबारत को गिरफ्तार किया गया है। गुडलैंड के एटलस रोड में स्थित उनके आवास पर तलाशी ली गई, जहां से करीब 2 लाख मॉरिशन रुपए और विदेशी मुद्रा, साथ ही विदेशी मुद्रा की खरीद से संबंधित बी एक्सचेंज के दस्तावेज जब्त किए गए। जांच से मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार नीतीश सिबारत ने कथित तौर पर ऐसे धन से विदेशी मुद्रा खरीदने में मदद की जिसके अवैध गतिविधियों से प्राप्त होने का संदेह है। इस काम में कई अन्य लोगों के कथित तौर पर शामिल होने की भी बात सामने आई है। नीतीश सिबारत से उनके वकीलों की मौजूदगी में अंडर वार्निंग पूछताछ की गई, जिसके बाद उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के एक अस्थायी आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन्हें आज शुक्रवार 21 अगस्त को सुबह करीब 11:30 पर पोर्ट लुइस साउथ कोर्ट में पेश किया जाएगा। जांच के दौरान कई अन्य लोगों की भी पहचान हुई है, जिनसे FCC द्वारा पूछताछ किए जाने की संभावना है। जांच जारी है और अधिकारियों का मुख्य उद्देश्य धन के स्रोत का पता लगाने के साथ साथ इस मामले में अन्य संभावित लोगों की भूमिका निर्धारित करना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जापान में टोक्यो के उत्तर में स्थित शिन कामुमा स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से 4 कर्मचारियों की मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब कर्मचारी रेलवे लाइन के पास खरपतवार नाशक यानी पेस्टिसाइड का छिड़काव कर रहे थे और पुलिस अब ये जांच कर रही है कि सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन किया गया था या नहीं। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहे, सुन पाएंगे शुभ समाचार। शुभ समाचार सुनिए। क्लेफोन नंबर एक फिनिक्स में 87 साल की 87 ईयर्स ओल्ड की बीबी आयसा उसैन बकस पैदाइश नाम हुमाल दाऊ और जिन्हें आयसा के नाम से लोग ज्यादा जानती थी, इंतकाल कर गई है। इनका जनाजा आज दिन के 12:30 इनके मकान फिनिक्स से उठाकर सबसे पहले नमाज जनाजा के लिए फिनिक्स की मस्जिद ले जाया जाएगी, फिर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान। फ्यूनरल टुडे एट हाफ पास्ट नून। नंबर 20 एवेन्यू डॉविन कैट्रबोन में 44 साल के 44 ईयर्स ओल्ड के श्री यानिश अपादू जिन्हें यानिश के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 3 बजे उनके पिता योगेन अपादू के घर कैट्रबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
2: News on NBC Play.

0: MBCRadio.tv. MBCRadio.tv.
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: श्रोताओं, आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियां सुनिए। जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से कई इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। सबसे पहले गश्तिया के रहने वाले निवासियों को, जी हाँ, गश्तिया के रहने वाले निवासियों को, खास करके गश्तिया रोड, सुशील लेन, शिवाला रोड, मस्लिम सिमेट्री रोड, स्कूल लेन और रेजिडेंस रामा के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि रविवार 23 अगस्त 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर दिन के 12 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ में है सैक्वा के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है रू निकोले, डेबुशेर, मारियामेन टेम्पल, अलेटामारे और रेजिडेंस पल टोरो के रहने वाले निवासियों को रविवार 23 अगस्त 2026 को दिन के 12:30 बजे से लेकर दोपहर के 2:30 बजे तक। और साथ में है पेचित रिविया के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है रू ला जूलियट, मकनामारा, ओल्ड ट्राफोर्ड, ला फोश के रहने वाले निवासियों को शनिवार 22 अगस्त 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे के बीच। और वालेटा के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है रूट रॉयल, शिवाला रोड, मोरी रोड, सवाना रोड, मदुराई रोड, जमाल रोड और आसपास की गलियों के रहने वाले निवासियों को शनिवार 22 अगस्त 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 2:30 बजे के बीच। और अंत में है फॉरेस्ट साइड के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है देवायन, मुनिये, लुमिना और आसपास की गलियों के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि रविवार 23 अगस्त 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 2:30 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियाँ सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है, तो आइए अब सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम में। जी हाँ, उर्दू कार्यक्रम हम सुन सकेंगे सायदा की पेशकश में।
3: रेडियो मॉरिशस
4: 800 किलोहर्ट्ज़ पर, ये है रेडियो मॉरिशस।
3: रेडियो मॉरिशस,
4: रेडियो मॉरिशस।
5: शम्मे फरोजा,

0: अफजल दिन जिस पर सूरज तुलू होता है वो जुम्मा है। आप तमाम सुनने वालों को आज का मुबारक दिन, जुम्मे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आपको ऐसे हज़ारों जुम्मे नसीब फरमाए। मौजूद सामीन, आज की इस उर्दू मजलिस में आप समात फरमाएंगे तिलावत कुरान पाक, हम्द और नातो सलाम। ताखिर ना करते हुए आइए हर जुम्मे की तरह आगाज़ करते हैं सूरह अल कहफ की तिलावत से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
1: बिस्मिल्लाह।

मौज़ सामीन, माहे रबी अव्वल का महीना हमें दावत देता है कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, अखलाक, सब्र, अदल, रहम, सकावत और हुस्न सलूक को जाने और अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। रबी अव्वल के मौके पर सिर्फ खुशी का इजहार ही नहीं बल्कि ये सोचना भी ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के कितनी करीब है। हकीकी मोहब्बत का तकाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तालीमात पर

माहे नूर माहे रबीउल अव्वल में दरूद पाक की कसरत एक खूबसूरत अमल है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अहले ईमान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजने का हुक्म दिया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को मोहब्बत, भाईचारे, माफ़ी, अदल, गरीबों की मदद, यतीमों की किफालत और पड़ोसियों के हुकूक का दर्ज दिया। रबीउल अव्वल इन तालीमात को दोबारा याद करने का बेहतर

जुम्मे का मुबारक दिन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग जुम्मा छोड़ने से बाज आ जाएं वरना अल्लाह ताला ज़रूर दिलों पर मोहर लगा देगा, फिर वो यकीनन गाफिल लोगों में से हो जाएंगे। बाहवाला सही मुस्लिम शरीफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मे के दिन गुस्ल करना हर बालिग मुसलमान पर वाजिब है, और ये कि वो मिसवाक करे और अगर खुशबू मयस्सर यानी दस्तियाब हो तो वो भी लगाए। बाहवाला सही।

इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पजीर हो जाएगी। पाक परवरदिगार हमें आज के इस मुबारक दिन की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक आज के इस मुबारक दिन के सदक़े हम सबको वो खुशी दे जिसकी दुआ हम हमेशा करते हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम सुनने वालों को एक बार फिर जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

योजन शतशतयोजन शरथियोजन शरपरिलङ्घन हरिभाजन हरि हरिभाजन हरिमदभाजन दशमुखकम्पण बडवाकृत बड बडवाकृत बडबाणलकृत बहुभस्मार्चन जय

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: मौजिला गुजरात नो रंग रंगारंग एमबीसी रेडियो पर गुजराती गीतों नो प्रोग्राम रंगारंग रंगारंग।

生就这样的已经的心曲却再有浪潮，斩了千次的情丝却断不了

चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये रेडियो मॉरिशस है, मीडियम वेव 1019 की दहेज पर हमारा पसंद मिला है कार्यक्रम है आपकी पसंद। आपकी पसंद कार्यक्रम 4085 पे हमारा व्हाट्सएप नंबर 5517005। चलिए जहाँ से भी आप हमें सुन रहे हैं, हमारा प्यार बड़ा नमस्कार आप सभी सुनने वालों को। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं।

चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस पे हमारे साथ काफ़ी लोग जो है जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सुदेवी जी है, वाकवा की रहने वाली, और ये अगला गीत जो है जाने वाला है उनके समस्त परिवारों के लिए। त्रियो की दीदी ललिता है, कुशल परिवार है, आत्माराम भैया है, मैनंगा के केशनी, कृषय, कृषिका, लक्षिका, समस्त राम रतन परिवार है। तो चलिए उनके नाम जो है ये अगला गीत हम चलाने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत सा नजराना इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक गीत जो है आपके नाम हम कर रहे हैं। तो बहुत ही प्यारा सा गीत उनके नाम हम कर रहे हैं, तो गीत की ओर हम बढ़ेंगे। 4028085 आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, अपनों के नाम जो है शुभकामनाएँ भेज सकते हैं। तो व्हाट्सअप नंबर है वो है 5251705। तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे।

तो चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद रेडियो मॉरिशस पे हम चला रहे हैं इस समय अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे, और हमारे साथ इस समय विश्वानी दुमन जी हैं, बहुत ही प्यार के साथ निभा रही है। तो चलिए उनके नाम जो है ये अगला गीत हम चलाने वाले हैं, बहुत ही खूबसूरत सा नज़ाना जो है इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं। तो गीत की ओर हम बढ़ेंगे और उनके नाम पे ये अगला गीत हम चलाएंगे उनके समस्त परिवारों के लिए। और ये प्यारा सा गीत जो है जाने वाला है उनकी दो बहनों के लिए, इंदिरा है, शारदा है, उनकी सहेलियों है नीला, प्रतिभा, शोभा, साथ में है गीता गजाधर। तो इन सभी लोगों के नाम जो हैं, ये बहुत ही प्यारा सा गीत जो है हम शामिल कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। साथ में हैं राधा जी जो कि पिछवेरे सैंपिया की रहने वाली है, उनके नाम जो है ये अगला गीत हम चला रहे हैं। जी हाँ, इन सभी लोगों के नाम जो हैं हम शामिल कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। गांगोप की सुनीता जी हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है, तो उनके नाम भी ये अगला गीत हम करने वाले हैं। तो चलिए श्रोताओ, गीत की ओर हम बढ़ेंगे, बहुत ही प्यारा सा नज़ाना हम शामिल कर रहे हैं इन सभी लोगों के बीच। हम आपको बताते चले कि आपकी पसंद कार्यक्रम जो है ये रोज़ाना आपका प्रोग्राम है, जहाँ पर आपके मनपसंद गीत हम शामिल करते हैं इस कार्यक्रम में। तो आप हमें याद कर सकते हैं, अपनों के नाम जो है शुभकामनाएं जो हैं भेज सकते हैं इस कार्यक्रम के ज़रिए। तो गीत की ओर हम बढ़ेंगे, बहुत ही खूबसूरत सा नज़ाना जो है हम शामिल कर रहे हैं इस कार्यक्रम में।

तो चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ इस समय जो है व्हाट्सएप मैसेज पे हमारे साथ जो है इस समय धीरज जी है, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपके समस्त परिवार है, आपकी बहनें हैं रोमा, आरती, इंदिरा, सिमरा, ये सब लोग जो है बेलरोज के रहने वाले हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सा गीत जो है हम शामिल कर रहे हैं आप लोगों की।

रोड पे, तो गीत की ओर हम बढ़ेंगे और ये बहुत ही पॉपुलर गीत है। तो इन सभी श्रोताओं के नाम जो है ये प्यारा सा नज़ाना जो है इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रही है। तो चलिए श्रोताओं, हमारे साथ इस समय सुरेखा जी है, डिपिने की रहने वाली, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। तो उनके नाम पे भी ये अगला गीत हम चलाएंगे। और मांगात्री जी है, न्यू फ्रांस की रहने वाली, उनके बेटे अजय हैं, उनके सभी परिवारों के लिए भी ये बहुत ही प्यारा सा गीत हम करने वाले हैं इन सभी लोगों के नाम।

0: एग्जैक्टली 3 PM देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है आस्था, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, सुपहर 3 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। पेनल्टी पॉइंट सिस्टम को लागू हुए 6 महीने हो चुके हैं। 31 जनवरी से 31 जुलाई 2026 तक के आंकड़ों में तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना और सीट बेल्ट नहीं लगाना आम यातायात उल्लंघनों में शामिल रहे हैं। इन 6 महीनों के आंकड़े सड़कों पर नियमों के पालन और वाहन चालकों के व्यवहार की मौजूदा तस्वीर भी सामने रखते हैं। वर्कर्स राइट एक्ट और एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस एक्ट में बदलाव इस साल के अंत तक किए जाने की उम्मीद है। इस सिलसिले में नेशनल ट्राइपार्टाइट बैठक की बैठक लगी। इसमें प्रस्तावित बदलावों के पहले मसौदे पर चर्चाएं आगे बढ़ी। इनमें PRGF की भूमिका, स्वतंत्र अनुशासन समितियों और नियोक्ताओं के दबाव से श्रमिक संगठनों की सुरक्षा को मजबूत करने जैसे मुद्दे शामिल रहे। श्रम मंत्री रिजाउद्दीन ने साफ किया कि इस पर काम पिछले साल ही शुरू हो गया था और इसका आत्मा शांतु की भूख हड़ताल से कोई संबंध नहीं है। देश में खाद्य आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए सरकार स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। इसी के तहत बीज उत्पादन, स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल नई किस्मों के विकास, उनकी बिक्री और किसानों को जानकारी देने पर जोर है। फेगिना या नुआ 45 नाम की सेम की किस्म को अच्छी पैदावार और आयरन की अधिक मात्रा के कारण चुना गया है। सरकार इसके बीज पर 75% की सहायता प्रदान कर रही है। इसके बीज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड में 130 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध है। स्विट्जरलैंड में एक इमारत में भीषण आग लगने के बाद 5 लोग लापता हैं और 8 घायल बताए जाते हैं। शुरुआती जांच के मुताबिक दूसरी मंजिल पर आग लगी। सीढ़ियां गिर जाने के कारण करीब 100 दमकलकर्मियों को आग बुझाने में काफी मुश्किलें हुई और क्रेन की मदद से छत को खोलना पड़ा। 14 लोग इमारत से सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे। आग लगने के कारणों की फिलहाल जांच की जा रही है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। Montfleury, circonstance Saint-Piamé, circonstance Saint-Piamé, Béa 6 साल की 82 years old की नीलामा नीलादू की मृत्यु हो गई है। नीलामा नीलादू की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम डालापा, लोग उन्हें सेलिया के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी कल सुबह के 10 बजे उनके बेटे

0: टे श्री नीलादू कृष्णा के मकान सैंपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेकोस्टॉन्स की शमशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। वाल्मीकि रोड बुआमोंग प्लेंदी पपाई में बुआमोंग प्लेंदी पपाई में 30 साल के 30 years old के चंद्रशेखर रंगलोल की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें किलान के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी कल सुबह के 9 बजे उनके पिता देवानंद रंगलोल के मकान प्लेंदी पपाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पितों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 9 AM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: News on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस,
3: चलिए श्रोताओं, सपहर के 3:03 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में, तो आइए सेंट्रल एक्सिस बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियां सुनिए। जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से कई इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। पोर्टविस के रहने वाले निवासों को, जिनमें है रुई राउल रिवे, उनेसिफो, बुजाओ, लागेटे, सेंट जेम्स, टर्ने, सेंट जॉन, ऑनरी ले सिडाने, नहाबू, सालिम और मेयर बार्टेलेमी के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि रविवार 23 अगस्त 2024 को सुबह 8:30 बजे से लेकर सपहर के 3 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ में है सैंक्वा के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है रूट दे पॉम्पलेमूस और पोल्टोरो के रहने वाले निवासियों को शनिवार 22 अगस्त 2024 को सुबह 8:30 बजे से लेकर दिन के 1 बजे तक। फिर है द वेल के रहने वाले निवासियों को, रॉयल रोड, सुचीज रोड और बॉम्बू रोड के रहने वाले निवासियों को शनिवार 22 अगस्त 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर की 2:30 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और अंत में है लाल माची के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है नेहरू रोड, ब्रांच रोड, जिरोदी रोड, महात्मा गांधी रोड, बसदेव, बिसुनदयाल रोड, स्टेशन दे पुलिस के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि रविवार 23 अगस्त 2026 को सुबह के 8:15 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल एक्सिस बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल एक्सिस बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियाँ सुन रहे थे, ये रेडियो मॉरिशस है। तो चलिए, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं आपके मनपसंद रेडियो चैनल पर।
4: आपकी पसंद

श्रोताओं, आपके पसंद कार्यक्रम इस समय से लेकर शाम के 4 बजे तक आपके लिए इस रेडियो चैनल पे। तो हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। तो चलिए, केश जी के लिए कथकबोन की रहने वाली ये गीत जाएगा उनकी दो बेटियों के लिए, नेहा नितिशा उनके दामाद है, आनंद जी और उनके सभी परिवारों के उनके दामाद है अरविन। तो इन सभी लोगों को नाम ये अगला गीत है। हमारा सुमारू जी है कथकबोन की रहने वाली, उनके पति है सूर्यदेव जी, उनके सभी बच्चों के लिए कुछ मॉरिशस में है कुछ कनाडा में है। तो ये प्यारा सा गीत इन सभी लोगों का नाम, फिल्म का नाम है वापस।

श्रोताओ, मनचाहे गीतों का ये प्रोग्राम आपकी पसंद। हमारे साथ इस समय शोभा जी है, पॉम्पे म्यूजिक की रहने वाली। ये गीत जाएगा उनके खास दोस्त के लिए, किशोर कुमार का गाया हुआ गीत, फिल्म कोरा कागज से लिया गया।

चलिए श्रोताओ, बहुत ही प्यारा सा गीत किशवंती जी है गुडलैंड्स की रहने वाली, हमारे साथ निभा रही हैं बहुत ही प्यार के साथ। चिच्चे उनके पति ज्ञान जी के जन्मदिन के मौके पर शुभकामनाएं सभी परिवारों की तरफ से, उनके दो बेटों की तरफ से, तीन बेटियां हैं, नाती पोती है, और समस्त परिवारों की तरफ से, सगे संबंधियों की तरफ से शुभकामनाएं जो हैं हम भेज रहे हैं ज्ञान जी के नाम। उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं, वो हमेशा जो है स्वस्थ बनी रहे, अपनों के नाम खुशियां बांटे। तो बहुत ही प्यारा सा गीत इनके नाम हम कर रहे हैं।

जी चलिए श्रोताओं, सपहर के 3:19 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। मन चाहे गीतों का ये प्रोग्राम आपकी पसंद। अगली भेंट में हमारे साथ इस समय हमारे साथ जो है सामिना जी है, जो बहुत ही प्यार के साथ निभा रही है वाकवा से, तो उनका ये मनपसंद गीत जो है हम शामिल कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। बहुत ही प्यारा सा गीत है, फिल्म का नाम है लैला मजनू, और इस फिल्म से लिया गया गीत जो है उनके नाम हम करेंगे, और ये गीत जाएगा उनके समस्त परिवारों के लिए। तो चलिए श्रोताओं, बहुत ही प्यारा सा नजाना है और इस गीत को आप बेहद ही पसंद जो है करने वाले हैं, तो गीत की ओर हम बढ़ेंगे। तो 4028085 पे हमारे साथ जो है इस समय गीता जी है, पोफिया की रहने वाली, हमारे साथ जुड़ी हुई है। उनकी बहन मीरा जी है न्यूकोव की रहने वाली, जो हमारा साथ दे रही है इस समय, और यही गीत पे जो है उनके पति है रोहित जी उनके नाम जोड़ रहे हैं, उनके सभी बच्चों के लिए आदित्य, अरव, जानवी, तनिश, तो इन सभी लोगों के लिए ये प्यारा सा गीत। तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की मीठी आवाज़ों में ये प्यारा सा गीत हम सुनेंगे।

चलिए श्रोता, आपकी पसंद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अगला गीत हम कर रहे हैं, हमारे साथ इस समय मोहम्मद शफीक जी है, सैंपिया के रहने वाले। तो ये गीत जो है उनके सभी दोस्तों के लिए।

तो चलिए श्रोताओ, आप ये लाए हैं अगला गीत, फिल्म प्रोफेसर से लिया गया, विद्या जी है न्यून पार्क की रहने वाले, उनकी पसंद पे ये गीत हम चला रही है।

ये श्रोता हुआ अगला गीत हमारे साथ बंधु परिवार है त्रियोले के रहने वाले, फिल्म का नाम है परदेसी बाबू, इसी फिल्म से लिया गया गीत उदित नारायण की आवाज़ में आप सुन पाएंगे।

चलिए श्रोताओ, हमारे साथ दिलीप जी है कुंगुमा के रहने वाले। ये अगला गीत जाएगा संगीता, योगेश, कृष्णवी, कविता, निशान, दानन, इंदिरा, तो इन सभी लोगों के नाम ये गीत जो है खास दिलीप जी की फरमाइश पे।

चलिए श्रोताओ, आपकी पसंद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। ये अंतिम नजाना हम चला रहे हैं और हमारे साथ जो है काफ़ी लोग हैं, वैसे नाम जुड़ेंगे, लॉन्ग माउंटेन की नारायणी जो है हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो चलिए उनके नाम पे ये अगला गीत। साथ में है श्यामा रघुनंदन जी, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है, उनके नाम भी ये गीत हम चला रहे हैं। त्रिवेणी जी है गुडेंस की रहने वालों के पति अनिल जी, सभी मोहन परिवार के लिए ये अगला गीत हम चला रहे हैं। और साथ में है इस समय सरिता जी है फ्लोरियाल की रहने वाली, उनके पति के लिए, उनके सभी बच्चों के लिए, तो चलिए बहुत ही प्यारा सा नजाना। और साथ में है चित्रा जी है मोराबिया की रहने वाली, ये गीत उनके पति ज्ञान जी के लिए और उनके सभी विश्राम परिवार के लिए, ये बहुत ही प्यारा सा गीत हम चला रहे हैं। तो चलिए श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही आपकी पसंद कार्यक्रम का समय पूरा हो चला, साथ निभाने के लिए धन्यवाद। तो अगले कार्यक्रम की ओर हम बढ़ने वाले हैं, ये अगला गीत जो है हम चलाएंगे। जी हाँ, बहुत ही प्यारा सा नज़ाना जो है, वैसे बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम हम चलाने वाले हैं निसार की प्रस्तुति में, गुलदस्ता उर्दू। तो चलिए बहुत ही खूबसूरत सा गीत इस समय आप सभी सुनने वालों के नाम हम कर रहे हैं।

0: रुपा है नहीं माल ये चोरी का।
1: चलिए श्रोताओ एक अंतिम नज़ाना जो है नाम जोड़ेंगे, वैसे किसी का बर्थडे है। सुनीता मुच्चा जी, आप बनिया रोड त्रियोले की रहने वाली हैं और आपका जन्मदिन है, तो चलिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपके पति सुदेश की तरफ से। बेटियों हैं श्वेता और श्विनी, संयुक्ता है, साथ में है सुनी और जो सभी दामाद की तरफ से नीलेश है, अरविंद है और सभी ग्रैंड टोटल्स की तरफ से, साथ में है माइवा। तो इन सभी लोगों की तरफ से सुनीता जी आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपकी लंबी उम्र की कामना करते हैं, आप जहाँ भी रहे खुश रहे। तो चलिए आप तंदुरुस्त बनी रहे, ये प्यारा सा गीत आपके नाम जोड़ रही है। जी हाँ, ये प्यारा सा गीत आपके नाम हम जोड़ रहे हैं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ।

वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू ज़बां आए। सामईन ज़ीहत शाम, निसार अख्तर की तरफ से आदाब व तस्लीमात कबूल फरमाइए। लफ्ज जब महकने लगे और दिल उर्दू की आवाज़ पे ठहर जाए, तो समझ लीजिए कि गुलदस्ते उर्दू का वक्त आ गया है। तमाम उशाक़े उर्दू का हम खैर मकदम करते हैं। याद रहे, ये ख़ास प्रोग्राम उर्दू स्पीकिंग यूनियन की जानिब से नशर किया जाता है। बाज़ कलम वक्त के साथ खामोश नहीं होते, वो नस्लों तक बोलते रहते हैं। बाज़ तख्लीकार सिर्फ अदब नहीं लिखते, वो तहजीबों की याददाश्त रकम करते हैं। आज ही के दिन एक ऐसी अजीम अदीबा की वफात हुई थी जो उर्दू फिक्शन की मलका कहलाती हैं, बल्कि यूँ कह लीजिए जिनके बग़ैर उर्दू फिक्शन की तारीख अधूरी महसूस होती हैं। नावल निगार, अफसाना निगार, ये नाम है कुरतुल ऐन हैदर का। उनके योम वफात के मौके पर आज की अदबी नशिश्त में हम उन्हें खैराज अकीदत पेश करेंगे, उनकी ज़िंदगी और बेमिसाल खिदमात का तज़किरा करेंगे। कुरतुल ऐन हैदर एक ऐसी अदीबा थीं जिनके कलम से लफ्ज़ नहीं ज़माने बोलते थे, जिनकी तहरीरें महज कहानियां नहीं दास्तानें थीं। वो सिर्फ नावल निगार नहीं, एक पूरा अहद थी। उन्होंने तारीख़, तहजीब, हिजरत, शनाख्त और इंसान के दाखिली सफ़र को ऐसे अंदाज में पेश किया कि उनके बाद उर्दू फिक्शन का मयार ही बदल गया। कुरतुल ऐन हैदर की पैदाइश 20 जनवरी सन 1927 को अलीगढ़ में एक ऐसे घराने में हुई जहां अदब सांस लेता था। उनके वालिद सैयद सज्जाद हैदर यल्द्रम उर्दू के मारूफ अदीब, मुतरजिम और दानिशवर थे। उनकी वालदा भी एक ज़बरदस्त मुसन्निफा थीं। गोया कुरतुल ऐन हैदर ने आँख ऐसे घर में खोली जहाँ किताब, ज़बान, ख्याल और तहजीब महज मौजू न थे बल्कि रोज़मर्रा के हिस्से थे। यही वजह है कि उनके अंदर अदबी शऊर किसी बैरूनी मश्क से नहीं बल्कि घर के माहौल में पैदा हुए। बाद में यही अदबी विरासत उनके फ़न में एक गैर मामूली तहजीबी एतमाद और फिक्री वसअत में सामने आई। कुरतुल ऐन हैदर के बचपन और लरप्पन में जो तहजीबी मुशाहिदा जमा हुआ, वो बाद में उनके नावल और अफसानों में एक वसी तहजीबी मंजरनामे के तौर पर उभरा। जवानी के आगाज ही में कुरतुल ऐन हैदर ने लिखना शुरू कर दिया। उनकी इब्तदाई तहरीरों से ये अंदाज़ा हो गया था कि ये कलम आम नहीं। उनकी पहली नुमाया तख्लीकात ने उर्दू दुनिया को हैरत में डाल दिया था, क्योंकि उनमें एक तरफ निस्वानी शऊर था, दूसरी तरफ तहजीबी इदराक और तीसरी तरफ ऐसी फ़नी पुख्तगी जो कम उम्री में कम देखने को मिलती है। उनके इब्तदाई नावल मेरे भी सनम खाने ने उन्हें संजीदा अदबी हलकों में मुतारफ़ करवा दिया। ये नावल दरअसल एक तारीखी दस्तावेज़ हैं। इसमें ख़वातीन के किरदार को गैर मामूली गहराई और बसीरत के साथ पेश किया गया। इस नावल में औरत सिर्फ एक रिवायती किरदार नहीं

बल्कि एक फिक्री, समाजी और सियासी शऊर की नुमाइंदा बनकर सामने आती हैं। सामईन, आइए खुद कुरतुल ऐन हैदर की जबानी उनकी तख्लीकात के बारे

कोई उन्हें कभी कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ी, इसलिए कि वो औरतें थीं। नॉवल लिखे उन्होंने बहुत अच्छे और वो मेन स्ट्रीम लिटरेचर में शामिल रही हैं। आज से 50-60 साल पहले से भी मुझसे अक्सर ये पूछा गया कि आपको तो बड़ी मुश्किल पड़ी होगी उर्दू में, क्योंकि अब आजकल समझा जाता है कि सोसाइटी हमारी बड़ी ऑर्थोडॉक्स है, तो सोसाइटी ऑर्थोडॉक्स अब हो गई है और होती जा रही है ज़्यादा, लेकिन ऐसा नहीं था। और हमारे यहाँ उर्दू में औरतों का अपना अलग से भी एक बड़ा स्ट्रांग उनका प्रेस था, फेमिनिस्ट प्रेस। मेरी वालदा खुद एक बड़ी अपने ज़माने की अर्लीस्ट हिंदुस्तान की फेमिनिस्ट में थी। मैंने अपना मुल्क चुना, अपनी सोसाइटी चुनी, अपना समाज चुना और मैंने देखा कि उसमें जो कुछ मुझे दिलचस्पी लगी जिन चीज़ों में, मैंने उसके बारे में लिखा। मेरे नावलों में आमतौर पे आपको मुख्तलिफ जो समाज के जो मुख्तलिफ वर्ग हैं उनके बारे में लिखती हूँ। जब मैं इंग्लिस्तान गई हूँ तो उस वक्त मैं काफ़ी कम उम्र थी, तब मैंने बहैसियत कब रिपोर्टर डेली टेलीग्राफ में काम किया और BBC में उर्दू प्रोग्राम्स में। मेरा जो पूरा ट्रेडिशन है उसमें आपको एक किस्म का जो ह्यूमनिज्म मिलता है, ह्यूमनिज्म, वो सूफी परंपरा की देन है। और मैं समझती हूँ कि जितना भी इंसान कुड़ता रहता है, जो सेंसिटिव राइटर है वो बहुत कुड़ता है, मैं बहुत कुड़ती हूँ हालात पे दुनिया के, लेकिन मैं समझती हूँ कि कभी इंसान को निराश नहीं होना चाहिए, हम बराबर लिखते रहेंगे। मेरी मिसाल उस चिड़िया की सी है, छोटी सी चिड़िया जो अपनी अपने पंजे ऊपर कर लेती है, सोचती है कि इस तरह वो आसमान को गिरने से बचा लेगी। मेरे नावल गर्दिश रंगे चमन, जिसमें तीन जनरेशन हैं औरतों की, माँ बेटी नानी परनानी, उन्होंने किस तरह मुख्तलिफ जो हिंदुस्तान का बदलता हुआ जो समाजी मंजर है उसमें उन्होंने किस तरह क्या कुछ झेला और अपने सब आज़ादी के बावजूद उन पे उन्हें किस तरह कितने सरल तरीके से एक्सप्लॉयट किया गया। यानी अपनी तालीम के बावजूद, अपनी आज़ादी के बावजूद, हमारी जो सिर्फ हमारे यहाँ नहीं पूरी दुनिया में औरतों को एक खास बहुत सटल तरीके से एक्सप्लॉयट किया जाता है, तो मैंने अक्सर उसके बारे में भी लिखा है। मैं अपने आप को फेमिनिस्ट नहीं कहती, मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं एक्सप्लॉयटेशन के बारे में लिखती हूँ, जो भी जिस तरह का भी एक्सप्लॉयटेशन हो, इकोनॉमिक या इंसान जो एक दूसरे पे जुल्म करते हैं, इंसानी ह्यूमन रिलेशनशिप्स में जो एक दूसरे पे इंसान बराबर जुल्म करता रहता है। तो मेरा प्रोफेशन जो रहा है वो है जर्नलिज्म अंग्रेजी में। तो मैंने लिखा, पहले मैंने शुरू किया डेली टेलीग्राफ में लंदन में एज ए कब रिपोर्टर, फिर मैंने काम किया इम्प्रिंट मैगजीन में एज मैनेजिंग एडिटर, फिर इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में 8-9 साल मैंने फिल्म रिव्यू लिखे और आर्टिकल्स लिखे, बहुत फीचर्स लिखे, फिक्शन एडिटर थी मैं उसकी। उसके अलावा मैंने और भी मुख्तलिफ रिसालों में अंग्रेज़ी की लिखती रही हूँ, ब्रॉडकास्टिंग बहुत की, यहाँ पर भी बचपन से की, ऑल इंडिया रेडियो में BBC में की, और मैंने तकरीबन दुनिया के काफ़ी रेडियो स्टेशन से मैंने ब्रॉडकास्ट किया। हम लोगों ने अपने लिए एक एक जहनों में एक स्टीरियोटाइप बना लिए हैं, एक सेट माइंडसेट बन गया है, उसको हमें तोड़ना चाहिए। और ये काम राइटर्स कर रहे हैं और करते हैं, करते रहे हैं, और उनकी आवाज़ मगर अब ज़्यादा नहीं पहुँच, ज़्यादा दूर तक नहीं जाती, पहले जाती थी। मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी है कि हम जितनी भी हिंदुस्तान में कम्युनिटीज़ हैं वो एक दूसरे के खिलाफ जो माइंडसेट बन गया है उसको कम करने की कोशिश करें। सब सही साधारण इंसान हैं, महज उनको हम लोगों के एक दूसरे के खिलाफ जो प्रेजडिसेस हैं उन्होंने ऐसा बना दिया। इतने टेंशन्स हैं सोसाइटी में हमारी हिंदुस्तान में, वो हम सिर्फ अगर हम एक दूसरे को ज़्यादा जानने की कोशिश करें, एक दूसरे के जो पहले था अब क्यों नहीं रहा,
कि हम एक दूसरे को ज़्यादा एक दूसरे के लिटरेचर को उनके रहन सहन के तरीके को

0: उनकी भाषाओं को हम ज़्यादा जानें, तो मेरे ख्याल में जितनी ये गलत फहमियाँ हैं, मिसकंसेप्शंस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ये कम हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी।
1: जब उर्दू अदब शायरी के तसल्लुत में था, नावल का मकाम कुछ ख़ास न था, कुरतुल ऐन हैदर ने नावल को एक संजीदा सिन्फ के तौर पर मुतारफ़ करवाया। उसे शायराना अहलियत, तहजीबी शऊर और तखयलाती वसअत से आरास्ता किया। कुरतुल ऐन हैदर की सबसे शाहकार तख्लीक आग का दरिया है। उर्दू अदब में बाज़ किताबें सिर्फ शाया नहीं होती, एक अहद की जहनी साख्त बदल देती हैं। आग का दरिया भी ऐसी एक किताब है। ये नावल सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि बर्रे सगीर की 250 साल तहजीबी, फिक्री और तारीख़ रुदात का तख्लीकी बयान है। ये नावल 4वीं सदी कबल मसीह से लेकर तकसीम हिंद के बाद के दौर तक तारीख का एक वसी तर नक्शा पेश करती है। नावल में इंसानी कहानियों के ज़रिए तहजीब और वतन के बदलते रंग को पेश करने का फ़न मिनवन मौजूद है। सामईन कराम, गुलदस्ते उर्दू प्रोग्राम अब अपने अख्तिताम की जानिब रवा दवा हैं। कुरतुल ऐन हैदर के यौम वफात के मौके पर आज हमने उन्हें एक मुख्तसर खैराज अकीदत पेश की। उनके अदबी सफ़र और उर्दू अदब में उनके नक्शे दवाम पर बात की। अगले हफ्ते किसी और मौजू को लेकर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान निसार अख्तर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।

0: This is Radio Marches.
1: घड़ी मिला लीजिए सामिने कराम, शाम के ठीक 4:01 हो रहे हैं।

0: मोहतरम मोहतरम सामीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बज़्मे नूर में आपका दिल की अतः गहराइयों से खैर मकदम है और ये उम्मीद करते हैं बफज़ल रब्बे कायनात ताजदार मदीना राहत क़ल्ब सीना साहिबे मुअत्तर पसीना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला वसल्लम के सदक़े आप खैर आफियत से होंगे। सैयदुल अय्याम जुम्मे का दिन आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो।
1: जो यौम सब अय्याम में सबसे अजीम है, जुमा करीम है, जुमा करीम है।
0: मुस्कुराने लगी हर तरफ रोशनी, जुल्मतों पर यकीनन जवाल आ गया। ये जमीन हो गई रश के खुल्दे बरी, जिस घड़ी आमीना बी का लाल आ गया। और ये हकीकत है, काले थे वो रंग के निस्बते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की अता देखे, हुस्न वाले खड़े देखते रह गए हश्र में जब नबी सल्लल्लाहु ताला वसल्लम का बिलाल आ गया।

पर होता क्या है, जान लोगे पढ़ो सीरते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात भर गम में रोते रहे मुस्तफ़ा, जिस घड़ी उम्मती का ख्याल आ गया।

आइए सामीन, इस बाबरकत दिन के आगाज़ तो नहीं कहेंगे बल्कि इस प्रोग्राम के आगाज़ में हम तिलावत कलाम पाक की से हम आगाज़ कर रहे हैं। बग़ैर अदब समाप्त करके अपने दिलों को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं और उसके बाद हम प्रोग्राम जारी रखेंगे।

को जगह देने की कोशिश करते हैं और फिर वो आपको मजीद गुनाहों की तरफ ले जाता है। लेकिन खैर में हसद क्या, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, पहला वो शख्स कि जिससे हसद जायज़ है, इसको उर्दू में रश्क कहा जाता है, अरबी में हम तो अल-गिबता, इट इज़ परमिसिबल। नबी करीम अलैहिस्सलाम सेज ओनली रिगार्डिंग टू पर्संस, इट इज़ परमिसिबल फॉर यू टू एनवी टू पर्संस, رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق, वो शख्स जिसे अल्लाह ताला ने माल अता फरमाया, लेकिन उस शख्स ने उस माल को हमेशा नेकी के कामों में खर्च किया। नंबर वन, द पर्सन हु वाज ब्लेस्ड विद द वेल्थ फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एंड देन दिस पर्सन कीप्स स्पेंडिंग इट in every single path which would please Allah subhanahu wa ta'ala, neki ke kamon mein, bhalai ke kamon mein, to please Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ko khush karne ke liye jo shakhs apne maal ko kharch kiya karta hai, usse aap hasad kar sakte hain is taur par ke aap ye kahein ki ya Allah तूने उसे माल अता फरमाया तो उसने तेरी राह में खर्च किया, अगर तू मुझे माल भी अता फरमा दे तो मुझे भी माल अता फरमा दे तो मैं भी इसी तरह तेरी राह में नेकी के कामों में खर्च करूँगा। ये हसद जायज़ है बल्कि काबिल तारीफ। नंबर दो, दूसरा वो शख्स, رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها, سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم says, second person from whom you can be jealous religious wise, it is permissible and it is even recommended, it's liked by Allah, and Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, the person who was granted wisdom by Allah, intelligent person, wise, and whenever people, individuals, they call him for any matter, he will use his intellect and wisdom for his judgment, and he will be fair, and he keeps teaching others everything which can be useful for them. Dusra shakhs farmaya jisse hasad jaiz, wo kaun, ke jisse Allah Taala hikmat, danai, samajhdari ata farmata hai, to wo usi samajhdari ke zariye लोगों के फैसले किया करता है, उसी समझदारी के ज़रिए लोगों को तालीम दिया करता है, ऐसी तालीम, ऐसे उलूम सिखाता है कि जो लोगों के लिए, दुनिया के लिए भी फ़ायदेमंद हो और आखिरत के लिए भी फ़ायदेमंद हो। ये नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ज़िक्र फरमाया कि इनसे हसद जायज़। आज हमारा क्राइटेरिया ऑपोजिट हुए, आज हम किसी को किसी तरह की नेमतों में फलता फूलता नहीं देख सकते, नऊज़ बिल्लाह। आज हम किसी को अगर देखें कि उसे अल्लाह ने माल अता फरमाया तो उससे वो हसद करना शुरू करते हैं जो शैतान पसंद करता है, उससे वही हसद करते हैं कि जिस हासिद के शर से अल्लाह ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को पनाह मांगने का हुक्म दिया, जिससे इंसान मजीद गुनाहों की तरफ जाता है,
دلوں میں مزید نفرتوں کو

शर्म दिया करता है और दुश्मनी ना हक एक मुसलमान से ना हक उस पर जुल्म करने की तरफ ये चीज उसे ले जाती है नऊज़ु बिल्लाह और फिर उसे बर्बाद करने की पूरी कोशिश किया करता है। एक बात जिक्र करता चलूं, रबीउल अव्वल का महीना है और एक बहुत बड़ा मुसलमानों का तबका इस महीने में नबी करीम अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत मीलाद मुबारक की खुशी और खुशी मनाने का इजहार करते हैं। तो जिस नबी की विलादत की खुशी में मीलाद और महफिलें कायम करते हैं ना, उसी नबी उसी साहिब विलादत मीलाद वाले नबी ने हसद से मना फरमाया है। कम अज़ कम इस मीलाद वाले महीने को इस तरह न जाने दें कि नऊज़ु बिल्लाह मीलाद का महीना पाकर भी और फिर मीलाद की महफिलों और मजलिसों में आकर भी क़ुरान करीम की तिलावत सुनने के बावजूद भी नबी करीम अलैहिस्सलाम की हर अंदाज़ में तारीफ सुनने के बावजूद भी अगर आपने अपने दिलों को नफ़रतों से खाली नहीं किया, बुग़्ज़ हसद जेलसी एनवी से खाली नहीं किया, तो फिर इसका मतलब ये है कि हमने अपने उस अज़ीम नबी की क़दर नहीं की। सुभान अल्लाह। और ये इंसान की बदबख्ती के लिए काफ़ी है। याद रखें, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कई सारी हदीस मुबारक में इससे सख्ती से मना फरमाया। एक हदीस में फरमाया, वला तहासदु ला तबाग़दु वला तहासदु, एक दूसरे से आपस में नफ़रतें न करो, एक दूसरे से बुग़्ज़ मत रखो। डोंट हेट ईच अदर, वला तहासदु, डोंट एनवी ईच अदर, वन अनदर। होली प्रोफेट अलैहिस्सलाम इज प्रोहिबिटिंग। द अदर थिंग इज इमाम मुस्लिम कोटेड अ ब्यूटीफुल हदीस, इन्नल्लाहा ला यन्ज़ुरु इला सुवरिकुम वला इला अजसादिकुम। इंडीड अल्लाह सुब्हानहु व तआला डजंट वांट टू लुक टुवर्ड्स योर फिजिकल फॉर्म फ्रॉम व्हिच ट्राइब यू आर, from which nation you are, to which country you belong, to which nation, which color you have, Allah doesn't care about it. ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. But Allah looks at your hearts and your deeds. This is what Allah Subhanahu wa Taala wants you to do. Which is to purify your hearts from anything which can take you towards Jahannam, na'udhu billah, which can take you away from Allah subhanahu wa ta'ala. Dil Allah ta'ala ka mahalle nazar hai. Aaj hum apne chehron ko sajane ki koshish karte hain isliye ke makhlooq ka mahalle nazar hamara chehra hai. हम कहते हैं कि हमारे चेहरे पर कोई गंदगी ना हो, कोई दाग ना लगा हो, चेहरा साफ कर लें। कितने लोग एक अलग बीमारी में मुब्तला, तरह तरह की क्रीमें लगाते हैं, दिस लोशन, दैट वन, दिस सोलूशन, ऑल दीज रबिश, जस्ट टू ब्यूटीफाई योर फेस वी यूज। व्हाट अबाउट द हार्ट? We take care very well. We take care of our faces, which could be seen by the creation. But why don't we take care of our hearts, which is seen by Allah subhanahu wa ta'ala, for which we have been commanded to keep it pure from hatred, from jealousy, envy towards anyone. سيدنا رسول الله

0: वजह मालूम कर पाता कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने आपके बारे में क्यों फरमाया कि आप जन्नतियों में से एक हैं, तो उस सहाबी के शख्स में आंसू आए और कहने लगे कि वैसे तो मेरी कोई ख़ास इबादत नहीं है, एक इंतहाई सादा मुसलमान, लेकिन ये उस सहाबी का फरमान सुने जिसे हुजूर ने जन्नती फरमाया ला अनामु वफी कल्बी हसद अव गिश लिअहद मिन अल-मुस्लिमीन। फरमाया रात को मैं कभी भी इस हालत में नहीं सोता कि मेरे दिल में किसी मुसलमान के लिए नफरत हो या हसद हो, जलन हो, कभी भी इस हालत में नहीं सोता। रात को सोने से पहले अपने दिल को पाक करके सोता हूँ। इस इबादत को अपनाने की कोशिश करें, इस इबादत, इस अमल को अपनाएं। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु, आखिरी हदीस पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू समेटू। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु सेज अकॉर्डिंग टू द नरेशन ऑफ इमाम तिर्मिज़ी रहिमहुल्लाह, होली प्रोफेट अलैहि सल्लतु वसलाम से, या बुनैया इन क़दरत अन तुस्बिह व तुमसी व लैस फी क़ल्बिक शय लिअहद मिन अल-मुस्लिमीन फ़अफ़अल। बेटा, अगर सुबह शाम दिन रात इस तरह गुजार सको कि तुम्हारे दिल में किसी के खिलाफ कुछ न हो, तो ऐसा कर डालो। फिर फरमाया बेटा, ये मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी सुन्नत को ज़िंदा करने की कोशिश की उसने मुझसे मोहब्बत की। जो मुझसे मोहब्बत करेगा अल्लाह ताला क़यामत के दिन जन्नत में उसे मेरे साथ रखेगा। ओ माई लवली लवली चाइल्ड, इफ़ यू कैन गो थ्रू योर मॉर्निंग एंड इवनिंग वाइल्स योर हार्ट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ इल फीलिंग्स towards anyone, then do so. And then he says, oh my lovely child, my dear child, that's my sunnah, to keep your heart clean and pure. Whosoever does so, he has loved me, and whosoever loves me, he shall be with me in paradise. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: सामीन, अभी आप जुमे के मुबारक मौके पर हज़रत क़िबा हज़रत हाफिज़ क़ारी मौलाना मोहम्मद शामी इब्राहिम दामत बरकतुम अलैह की ज़बानी अलहसद पर ईमान अफरोज़ बयान समाप्त कर रहे थे। रब क़दीर मुझे और हम सब को इन पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। चंद ऐलानात समाप्त कीजिए। दावत इस्लामी की जानिब से इज्तिमाई मीलाद का अहतमाम किया जा रहा है सनीचर, कल सनीचर 22 अगस्त को दिन के 10 बजे कादरी चिश्ती मस्जिद कौशापलों पाई में, और उसके बाद कल ही सनीचर 22 अगस्त को मार्केट रोड सेंट्रल फ्लैक बदरुल इस्लाम मस्जिद कॉलोनी रोजल में दिन के 1:30 बजे। ये तमाम प्रोग्राम बेशक ख़वातीन के दरमियान होंगे। और बरोज़ ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यानी मंगल 25 अगस्त को फजर से नमाज फजर से ता असर तक दारुल उलूम इमाम अहमद रज़ा इरादन लेन बुज़ेवेजिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक यानी कि बाल मुबारक की ज़ियारत कराई जाएगी। मोहतरमा अलीमा शमीमा सुब्राची के रोज़ मर्रा प्रोग्राम बैतुल नूर सिते मौशल में अगले 24 अगस्त तक जारी वसारी है दिन के 9:30 बजे। सनीचर 19 अगस्त को दिन के 1:30 बजे मुस्लिम लेडीज़ काउंसिल की जानिब से इस्लामिक कल्चरल सेंटर पोटली में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहतमाम है, ये सिर्फ ख़वातीन के लिए है। 23 अगस्त को दिन के 10 बजे ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसूसी प्रोग्राम दारुल उलूम मजलिसरा की ब्रंच अबेदो गुलाद पोटली में मोहतरमा अलीमा सैयदा उनाजा फातिमा की सरपरस्ती में किया जा रहा है।

बेशक ये प्रोग्राम भी ख्वातीन के लिए होगा। और आज अंजुमन प्रोग्राम में आप देख सकेंगे ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुश्तमिल ख़ास प्रोग्राम, और आज का उन्वान है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम रहमत। इसमें मौलाना शमशाद कादरी दामद बरकातुहु अलैहि हिस्सा लेंगे, और उसके फ़ौरन बाद कुरान रीडिंग कम्पटिशन मुकाबले कुरान खानी की चौथी और आखिरी प्राइमरी, और इस चौथी प्राइमरी के फ़ौरन बाद फाइनलिस्ट के नाम ऐलान किए जाएंगे। ये रहे चंद ऐलानात, आइए मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़े गए खुतबे की सदाबंदी समाप्त कीजिए।

0: सामी नबी आप खुतबे की सदाबंदी समाप्त कर रहे थे। वो रात कितनी अजीम होगी जब मक्कल मुकरमा की सरजमीन पर वह हस्ती तशरीफ लाएं जिनके कदमों से इंसानियत की तकदीर बदल गई। हजरत आमिना रदल्लाह ताला ने के आगोश में वो बच्चा आया जो आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए रहमत बन गए।
1: जब हुए मुहम्मद मुश्क की आई हवा।

सामीन, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद आमद है, आमद जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत सिर्फ ज़बान से दावा करने का नाम नहीं, मोहब्बत का असल तकाजा यह है कि हमारे अखलाक में मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झलक नज़र आए, हमारे गुफ्तगू में नरमी हो, हमारे मामलात में दयानत हो, हमारे दिल में रहम हो और हमारी ज़िंदगी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हो। इसी नीयत से इस जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद हम आपको पेश करते हैं। आप तमाम लोगों को आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो। दुआ में याद करें अगली मुलाकात तक। अनुर को इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: गीत और गजल रेडियो मॉरिशस पर। मॉरिशस पर, रेडियो मॉरिशस पर।
2: लीजिए समय शाम के ठीक 5 बजे हैं। ये मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का रेडियो मॉरिशस प्रसारण है। मीडियम वाट 19 किलोहर्ट्ज़ पर मैं हूँ रत्ना, आ पहुंची हूँ गीत और गजल आज के इस कार्यक्रम को लेकर। चंद गीत और गजलों के साथ आज की ये शाम हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि जिंदगी में कई बार बहुत से लोग मुश्किलों को सहते सहते खामोश से हो जाते हैं। खामोशी की तह में छुपा लीजिए उलझने, क्योंकि शोर कभी मुश्किलें आसान नहीं करती। खामोशी का भी एक अलग सा अफसाना है, जो इस खामोशी को समझ ले उन्हीं से दोस्ताना है।

हिजाब में मिलने वाला कल ख्वाब में मिला मुझे, ख्वाब में भी वो सितमगर हिजाब में मिला मुझे। एक नगमा जिसकी तलाश में भटकता था कब से, वो सुर वो नगमा आज तेरी आवाज़ में मिला मुझे। किस मोड़ पे ले आए ज़माने के रस्म व रिवाज, किस मोड़ पे ले आए हैं ज़माने के रस्म व रिवाज, तू बता आखिर क्या रस्म व रिवाज में मिला मुझे। एक सुकून जो मुझे तेरे पहलू में मिला था कभी, वो सुकून आज तक भी ना किसी ताज में मिला मुझे। वो जो मिलता था कभी एकदम तपाक से मुझसे, कल शाम राहों में अदबो लिहाज में मिला मुझे। जमाने में हम जिए जिंदगी भर मर मर कर बेखबर, जमाने में हम जिए जिंदगी

हर रात मुझे एक नाम याद आता है, कभी सुबह तो कभी शाम याद आता है। जब दिल करता है कि कर लूं दूसरी मोहब्बत, तब पहली मोहब्बत का अंजाम याद आता है।

को तेरी यादों का गुलाम कर दिया, खुद को तेरी यादों का गुलाम कर दिया, खुद को तेरे खातिर बदनाम कर दिया। क्या सबूत दूँ तुझे अपनी मोहब्बत का, सीने में एक दिल था जो तेरे नाम कर दिया।

गजल इस समय शाम के 5:36। ये वक्त तेरी यादों में है, ये दिल मुझसे संभलता नहीं, कैसे जिएंगे तेरे बगैर पूरी जिंदगी, एक पल तेरे बिना गुजरता नहीं।

प्यार ऊपर वाले की देन है और जिससे प्यार हो जाए उसे खुदा की नेमत मिले। कितने चेहरे हैं इस दुनिया में, कितने चेहरे हैं इस दुनिया में, मगर हमको एक चेहरा ही नजर आता है। दुनिया को हम क्या देखें, दुनिया को हम क्या देखें, उसकी यादों में सारा वक्त गुजर जाता है।

मेहदी हसन साहब की आवाज़ में रखी हुई ये नज़्म आपको पसंद आई होगी। गीत और गज़ल कार्यक्रम के बिल्कुल अंत तक हम आ पहुँचे हैं। जाते जाते बस यही कहेंगे कि सब कुछ मिला सुकून की दौलत ना मिली, एक तुझको भूल जाने की मोहलत ना मिली। करने को बहुत काम थे अपने लिए, मगर हमको तेरे ख्याल से कभी फुर्सत ना मिली। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की ये हसीन शाम आपको पसंद आई होगी, हमारा सिलेक्शन आपको पसंद आया होगा। और बस ये हसीन शाम यूं ही हसीन गजलों की तरह धीरे धीरे करते हुए ढले। तो दोस्तों,

उसी के साथ ये आखिरी नज़्म अनवर साहब की आवाज़ में और ये इश्क नहीं आसां एल्बम से लिया हुआ गीत है। आज की ये हसीन शाम बस यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। आप सभी ने दिल से हमारा साथ दिया, तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करते हैं।

आप सभी के लिए खुशगवार हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस कार्यक्रम को बस यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, शुभ संध्या आप सभी को।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: शाम के ठीक 6 बज रहे हैं, समाचार सुनिए। नमस्कार, 6 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। नजर आज की सुर्खियों पर। आज पोटली में जैव ईंधन और रिन्यूएबल ऊर्जा के रणनीतिक ढांचे का की लॉन्चिंग की गई। इससे पहले भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और ऊर्जा मंत्री पात्रिक असावदन के बीच द्विपक्षीय बैठक। फिकोफ्लक में गला डिनर के दौरान चाइनीज बिजनेस चेंबर ऑफ मॉरिशस की 28वीं वर्षगांठ मनाई गई। प्रधानमंत्री ने व्यापारिक समुदाय के योगदान की सराहना करते हुए आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नौकरशाही की बाधाएं कम करने का आह्वान किया। 6 महीने बाद पेनल्टी पॉइंट सिस्टम का असर सामने आया। 31 जनवरी से 31 जुलाई 2026 तक के रिपोर्ट में 5 प्रमुख यातायात उल्लंघन दर्ज किए गए। इनमें तेज गति और सी बेल्ट नहीं पहनने से आम उल्लंघनों में ये शामिल रहे। विदेश में कोलंबिया में एक अवैध सोने की खदान में हुए भूस्खलन में कम से कम 13 लोग मारे गए और 7 अन्य घायल बताए जाते हैं। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब देते हैं विस्तार। सबसे पहले बात करते हैं कृषि उद्योग सेक्टर के बारे में। इन दिनों फागी एआई का इस्तेमाल करके नई कृषि पद्धतियों को उभारने की कोशिश कर रहा है, सुनिए रिपोर्ट।
2: जलवायु परिवर्तन, मिट्टी का बहाव, पानी की कमी, ये मॉरिशस में कृषि क्षेत्र के सामने मौजूद कुछ प्रमुख चुनौतियाँ हैं। इनसे निपटने के लिए तत्काल समाधान जरूरी है और प्रिसिजन फार्मिंग एक महत्वपूर्ण समाधान साबित हो सकता है। हम क्यों सही और टिकाऊ तरीके से खेती नहीं कर पा रहे हैं? फागे काम करने के तरीकों और स्कीम्स पर फिर से गौर कर रहा है। ये जान ले कि प्रिसिजन फार्मिंग मॉरिशस में पहले से ही काफी हद तक मौजूद है। हमने सभी पशुपालकों के लिए एक निशुल्क एप्लीकेशन बनाया है। इसके जरिए इनवॉइसिंग से लेकर पैदावार तक सभी प्रणालियों पर नजर रखी जा सकती है। मैं मशरूम को अंगूर के पौधे के साथ संक्रामक वातावरण में उगाने में सफल रहा हूँ। मेरा उद्योग अब आगे बढ़ रहा है। खेतिहरों और पशुपालकों को उपकरणों के इस्तेमाल के लिए प्रेरित करने के वास्ते कृषि उद्योग मंत्रालय और फागई ने औपचारिक रूप से प्रिसिजन फार्मिंग एंड एआई ड्रिवन फूड प्रोडक्शन स्कीम की लॉन्चिंग की है। प्रिसिजन फार्मिंग एंड एआई ड्रिवन फूड प्रोडक्शन स्कीम के लिए 2 मिलियन रुपए निर्धारित किए गए हैं। पहले चरण में 40% फाइनेंसिंग, दूसरे चरण में 75% काम पूरा होने के बाद 30% और तीसरे चरण के तहत स्कीम की पूरी रकम मिलेगी। समारोह के मुख्य अतिथि मंत्री अरविंद बुलेल ने कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण पर जोर दिया। उनका कहना है कि कृषि में नवाचार और रचनात्मकता विकसित करना जरूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज बहुत सहायक है और खेतीहर तथा पशुपालक इसे अपना रहे हैं। उन्हें एआई से भूमि की किस्म, उसकी गुणवत्ता, बीज, फसल, पानी की मात्रा और मंडी के बारे में सभी जानकारियां मिल जाती हैं। हम नौजवानों को आकर्षित करना चाहते हैं क्लीन एग्रीकल्चर की ओर। जूनियर मंत्री फैब्रिस दाविद ने कृषि क्षेत्र में अनुभवों को साझा करने के महत्व पर प्रकाश डाला।
3: L'intelligence artificielle pas pour en place
2: AI मनुष्यों की जगह नहीं लेगा, लेकिन नए उपकरण साथ लाएगा जिससे पैदावार बढ़ेगी, मात्रा, किस्म, गुणवत्ता बढ़ेगी, रासायनिक पदार्थों पर निर्भरता कम

0: होगी, दाम में कमी आएगी, खेतीहर पानी की बचत कर पाएंगे। फाहे द्वारा हाल में किए गए अध्ययन में 365 खेतीहरों में से 80% ने इंटेलिजेंट फार्मिंग के पक्ष में जवाब दिए।
1: तो अभी आप याचना मिश्रा को सुन रहे थे। तो आज पोटली में रिन्यूएबल ऊर्जा के रणनीतिक ढांचे की औपचारिक लॉन्चिंग की गई। हम आपको बता रहे थे कि इससे पहले भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस उद्योग मंत्री हरदीप सिंह पुरी और ऊर्जा मंत्री पैट्रिक आस्यावादन के बीच द्विपक्षीय बैठक लगी। 2024 में मॉरिशस को ग्लोबल बायोफ्यूएल अलायंस के बायोफ्यूएल्स पॉलिसी फ्रेमवर्क के लिए पहला पायलट देश चुना गया था। परियोजनाओं को भारत का समर्थन प्राप्त है। और कल के बुलेटिनों में इसकी चर्चा हमने आपके साथ की थी कि मॉरिशस और भारत के बीच पेट्रोली सामानों की खरीद के मुद्दे पर एक समझौता तय हुआ है। सुमेरा अकबर अली।
0: सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम की औपचारिक भारत यात्रा के दौरान पेट्रोली पैदावारों की सप्लाई का मुद्दा चर्चा में रहा था। इस साल की शुरुआत में एआई इंपैक्ट समिट के दौरान श्री नरेंद्र मोदी के साथ फिर से ये मुद्दा उठाया गया था। कल पोटली में इन सभी बातचीत को सच्चाई का रूप दिया गया जो मध्य पूर्व की जंग से पहले की जाती आ रही है। इस युद्ध की वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी आई है। पोटली में दो दस्तावेजों का आदान प्रदान किया गया, पहली मॉरिशस और भारतीय सरकारों की प्रोटोकॉल संधि और दूसरी दस्तावेज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के बीच एक सेल्स एंड परचेस एग्रीमेंट की रही। डॉक्टर नवीन राम गुलाम बताते हैं,
2: द साइनिंग ऑफ दिस मेमोरेंडम इज ऑफ स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस फॉर मॉरिशस, वन दैट इज अबव एवरीथिंग एल्स।
0: ये प्रोटोकॉल संधि मॉरिशस के लिए रणनीतिक अहमियत रखती है। सबसे पहले हमारी ऊर्जा सुरक्षा, हमारी अर्थनीति और पक्के तरीके से दोनों देशों की सॉलिडारिटी और भरोसेमंद रिश्तों को मजबूत किया गया है। सरकार और मॉरिशस जनता की तरफ से भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बहुत आभारी हैं, जिन्होंने मॉरिशस और भारत की साझेदारी को मजबूत करने में खुद कटिबद्धता दिखाई। मॉरिशस के लिए ये प्रोटोकॉल समझौता एक संगीन वक्त पर तय हुआ है, जब ऊर्जा की वैश्विक मंडियां अभूतपूर्व बदलावों और अस्थिरताओं का सामना कर रही हैं।
2: क्रिटिकल जंक्शन व्हेन ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स आर बेसेट बाय अनप्रेसिडेंटेड वोलेटिलिटी।
0: ये G2G समझौता 5 सालों के लिए है। सितंबर के आखिर में इंडियन ऑयल रिफाइनरी से पहली खेप के पहुंचने का इंतजार है। भारतीय पेट्रोल और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ये तरक्की न सिर्फ एक सादा व्यापारिक ट्रांजैक्शन है बल्कि दोनों देशों का भरोसा दर्शाती है। हरदीप सिंह पुरी बताते हैं, अब मॉरिशस में ईंधन की सप्लाई की सुरक्षा टेंडर प्रक्रिया से जुड़ी अनिश्चितता पर निर्भर नहीं रहेगी, बल्कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से 5 सालों की गारंटीड सप्लाई कमिटमेंट पर आधारित होगी। ये कटिबद्धता मॉरिशस की पूरी आयात जरूरतों को पूरा करेगी। ये वास्तव में अपनी तरह का पहला समझौता है जो किसी भारतीय सरकारी तेल कंपनी ने दक्षिण एशिया के बाहर किसी देश के साथ किया है। भारत सिर्फ ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है बल्कि दुनिया के बाकी हिस्सों को रिफाइंड पेट्रोली पैदावारों का निर्यातक भी है। हम इस क्षमता को सिर्फ अपना अधिकार नहीं समझते, हम इसे एक जिम्मेदारी के रूप में देखते हैं, दुनिया भर में अपने दोस्तों और साझेदारों के लिए एक भरोसेमंद, पारदर्शी और स्थिर ऊर्जा स्रोत बनना। डॉक्टर नवीन राम गुलाम के मुताबिक देश की ऊर्जा सुरक्षा की हिफाजत करने में ये रणनीतिक समझौता बड़ी अहमियत रखता है। वे बताते हैं, भारत एक बार फिर मॉरिशस की समृद्धि और मजबूती के प्रति अपनी अटल प्रतिबद्धता का प्रदर्शन कर रहा है। दस्तखत किए गए ये समझौता राजनीतिक इच्छा शक्ति को ठोस और स्पष्ट परिणामों में बदलने के इरादे को दर्शाता है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री की हैसियत से मैं अपनी सरकार की इस प्रतिबद्धता को दोहराता हूँ कि मॉरिशस और भारत के बीच के विशेष और रणनीतिक साझेदारी को और गहरा किया जाएगा। ये साझेदारी हमारे साझा इतिहास, हमारे मूल्यों और आपसी भरोसे जैसे मजबूत स्तंभों पर आधारित है। भारतीय प्रधानमंत्री के मिशन के दौरान ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने, हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर बात करने तथा ग्रीन ऊर्जा की ओर परिवर्तन पर चर्चाएं हुई।
1: समुद्र की लहरें कितनी ऊंची हैं और समुद्र की स्थिति कैसी है, अब इसकी जानकारी तुरंत मिल सकेगी। भारतीय सरकार की ओर से दिए गए वेव गेज यानी

0: समुद्री लहरों को मापने वाले उपकरण से मिलने वाले आंकड़ों के लिए एक नया डिजिटल मंच तैयार किया गया है। ये उपकरण एक साल से अधिक समय से काम कर रहा है। इससे समुद्री लहरों में होने वाले बदलाव को समझने और समुद्र से जुड़े खतरों के लिए बेहतर तैयारी करने में मदद मिलेगी। देश में खाद्य आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए सरकार स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। इसी के तहत बीज उत्पादन, स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल नई किस्मों के विकास, उनकी बिक्री और किसानों को जानकारी देने पर जोर है। फेरिना या न्यूआ 45 नाम की सेम की किस्म को अच्छी पैदावार और आयरन की अधिक मात्रा के कारण चुना गया है। सरकार इसके बीज पर 75% की सहायता दे रही है। इसके बीज और एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड में 130 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध है। और अब रुक करते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल स्लेवरी म्यूजियम की ओर। वहाँ की मरम्मत कार्य योजना जल्द ही संपन्न की जाएगी। वहाँ पर कई अर्ध प्रतिमाओं का संरक्षण किया जा रहा है।
1: फोबियाविल की प्रतिमाएं प्लास्टर से बनी हैं, जिन्हें 19वीं सदी में मानव शास्त्री यूजेन डे फोबियाविल ने मॉरिशस के गुलामों के चेहरों के सांचे से तैयार किया था। उस समय के गुलामों के कुल 53 चेहरों में से 3 बस्त पहले से ही इंटरकॉन्टिनेंटल स्लेवरी म्यूजियम में प्रदर्शित हैं। कभी गोदाम के रूप में इस्तेमाल पोर्टवी का पुराना सैन्य अस्पताल निकट भविष्य में इन सभी प्रतिमाओं को प्रदर्शित करेगा। इसके लिए जगह पर्याप्त है, लेकिन पहले पुनर्स्थापना का काम करना जरूरी है। बहुत काम बाकी है, लेकिन पूरा हो सकता है। हम इसे योग्य बनाना चाहते हैं पूरे कलेक्शन को प्रदर्शित करने के लिए। इसके लिए मरम्मत और एयर कंडीशनिंग की जरूरत होगी।
2: Mais pour cela, évidemment, il va falloir travailler sur l'isolation du bâtiment, sur la climatisation.
1: पहले से प्रदर्शित 3 बस्त फिलहाल कांच की सुरक्षा के भीतर रखे गए हैं, ताकि उन्हें किसी भी तरह के नुकसान से बचाया जा सके। म्यूजियम की योजना है कि बाकी 50 बस्त को अलग तरीके से प्रदर्शित किया जाए।
2: Ça va être un échange avec les équipes de Blois et les équipes de l'ISM.
1: हम चाहते हैं कि इन प्रतिमाओं को खुले में प्रदर्शित किया जाए और न कि कांच के पीछे, जो कि एक बाधा की तरह है। फ्रांस के शैटो रॉयल दे ब्लुआ में रखे गए बाकी बस्त को मॉरिशस लाने के लिए पूरी तरह की लॉजिस्टिक व्यवस्था की आवश्यकता होगी। टेंडर्स आदि जारी होने होंगे, जो शैटो दे ब्लुआ की मांगों की अनुरूप हो। फ्रांस और मॉरिशस के बीच की यात्रा के अधिकारी, साथ में इंश्योरेंस, कस्टम्स, सब देखना पड़ेगा। जायजा लेने के बाद जल्द ही रिनोवेशन शुरू होने की उम्मीद है। म्यूजियम को उम्मीद है कि अगस्त 2027 तक इन सभी प्रतिमाओं को यहां प्रदर्शित किया जा सकेगा।
0: समुद्र की लहरें कितनी ऊंची हैं और समुद्र की स्थिति कैसी है, अब इसकी जानकारी तुरंत मिल पाएगी। भारत सरकार की ओर से दिए गए एक वेव गेज यानी समुद्री लहरों को मापने वाले उपकरण से मिलने वाले आंकड़ों के लिए एक नया डिजिटल मंच तैयार किया गया है। ये उपकरण एक साल से अधिक समय से काम कर रहा है। इससे समुद्री लहरों में होने वाले बदलाव को समझने और समुद्र से जुड़े खतरों के लिए बेहतर तैयारी करने में मदद मिलेगी।
3: आज सुबह रिकॉर्ड किए गए आंकड़ों में बंदरगाह क्षेत्र में लहरों की कोई असामान्य गतिविधि नहीं दिखी गई। स्क्रीन पर ये आंकड़े वेव रिकॉर्डर से प्राप्त होते हैं, जिसे एक वर्ष पहले समुद्र में स्थापित किया गया था। ये उपकरण पानी की सतह की गतिविधियों को लगातार रिकॉर्ड करता है।
4: Par exemple cyclonique et tout ça a des caractéristiques différentes mais c'est sa fréquence là qui permet de nous déterminer quel type de vague.
3: इस यंत्र की एक और खासियत यह हिंद महासागर के कई देशों को जोड़ने वाली प्रणाली से जुड़ा हुआ है।
4: C'est une bouée qui font partie d'un réseau qui est un réseau régional dans plusieurs pays où gagne même type de bouée donc tout relié.

0: Et comme ça, nous avons connu comment Manvac peut propager à travers le bassin océanique.
1: लेकिन वास्तव में ये उपकरण काम कैसे करता है?
2: Le bouée li émet un signal par signal radio. Ça signal radio là, li transmet li vin sa l'antenne qui situait le bâtiment ici. Depuis sa l'antenne là, li al de nous un ordinateur, côté d'un logiciel qui automatise différentes analyses là-dedans, li envoie ça dans le plateforme de Ocean Observatory. C'est une base de données centralisée géospatiale pour ben données scientifiques marines.
1: इस उपकरण की उपयोगिता केवल समुद्र की गतिविधियों पर नजर रखने तक सीमित नहीं, इससे प्राप्त आंकड़ों का इस्तेमाल समुद्री पूर्वानुमान और समुद्र से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।
0: En hiver, nous gagnons beaucoup anticyclone qui fait que nous gagnons beaucoup la houle depuis le sud. Et justement, ça bouée là, aider pour constater comment ça man houle là peut propager depuis le sud jusqu'à le nord. Ici, nous recevons la donnée, mais après nous diffusons à tous les stakeholders, y compris le pôle. Et donc le pôle, là, il prend souvent une disposition qui besoin par rapport à l'état de mer qui peut être constaté.
1: इस तरह ये उपकरण महत्वपूर्ण आंकड़ों का एक मूल्यवान स्रोत बन गया है, ये हमारे समुद्री पर्यावरण को।
3: Si on veut faire un parallèle, on est dans le cadastre au niveau de la terre, mais ce qui est différent dans la mer, c'est une l'océan qui est dynamique, qui reste changé. Alors, nous pas capable, comme si je dirais, mettre un système figé dans le temps. Alors, nous doit être une approche dynamique et tout le temps par rapport au changement qui finit là dans un paramètre, nous adapter nous dans un système pour capable un développement soutenu.
1: बेहतर ढंग से समझने, प्रबंधित करने और उसका सतत उपयोग करने की दिशा में एक और अहम कदम है।
4: देश में खाद्य आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए सरकार स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। इसी के तहत बीज उत्पादन स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल नई किस्मों के विकास, उनकी बिक्री और किसानों को जानकारी देने पर जोर है।
1: बासे में उमेश भोला 30 पर्च जमीन पर बीन्स की खेती करते हैं। अब वे पुरानी किस्म रेड पर्ल को छोड़कर पूरी तरह फेगिना की खेती करने का इरादा रखते हैं।
5: Ça c'est un voiture red pearl. Red pearl, il y a une maladie un peu vite. Il n'est pas résistant aux maladies. Ça c'est Ferina. Vous trouvez son rapport même, vous mettez une différence avec ça. Ça, il est résistant contre maladies.
1: फेगिना के बीजों पर 75% सब्सिडी दी जा रही है और एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड द्वारा इसे 130 रुपए प्रति किलो बेचा जा रहा है। किसानों के अनुसार इसका उत्पादन लाभदायक है। बाजार में फेगिना लगभग 150 रुपए आधा किलो बेचा जा रहा है। फेगिना को इसके पोषण तत्वों के लिए भी चुना गया है। इसमें आयरन की मात्रा अधिक है और अनीमिया की रोकथाम के लिए उपयोगी है। फागई फिलहाल स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल नई बीन्स की किस्मों पर प्रयोग और विकास कर रहा है। ये किस्में कोलंबिया से प्राप्त हुई हैं और ट्रॉपिकल कृषि केंद्र के मार्गदर्शन में इन पर काम किया जा रहा है।
6: Nous arrivons à 5 variétés prometteuses et ça va une variété là, nous pouvons évaluer ici que le bon planteur. Nous trouvons que même s'il n'est pas gagné trop beaucoup la pluie, il n'est pas gagné trop beaucoup fertilisant, mais still, il est capable de survivre. Nous n'avons pas besoin de dépendre de l'importation de bonnes semences de haut parce que le prix des semences, il peut remonter, il peut aller même.
1: Beans qui khéti mein anusandhan aur vikas ka uddesh khadya padarthon ke ayat par hone wale lagbhag 35 billion rupaye ke varshik kharch ko kam karna hai. टिकाऊ जमीन प्रबंधन के लिए चीनी विशेषज्ञता की भी मदद ली जा रही है। इस वर्ष AMB 600 किलो बीज बेचने का इरादा रखता है। एक बीघा जमीन के लिए लगभग 100 किलो बीज की आवश्यकता होगी और इससे करीब 3 टन उत्पादन प्राप्त होने का अनुमान है।
4: पेनल्टी पॉइंट सिस्टम को लागू हुए 6 महीने हो चुके हैं। 31 जनवरी से

जुलाई 2026 तक के आंकड़ों में तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना और सीट बेल्ट नहीं लगाना आम यातायात उल्लंघनों में शामिल रही है। इन छह महीनों के आंकड़े सड़कों पर नियमों के पालन और वाहन चालकों के व्यवहार की मौजूदा तस्वीर भी सामने रखते हैं। गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी के दौरान कुछ महिलाओं को डायबिटीज हो सकता है। इसे जेस्टेशनल डायबिटीज यानी गर्भावस्था में होने वाली डायबिटीज कहा जाता है। इसका पता आमतौर पर 24वें से 28वें सप्ताह के बीच चलता है। बच्चे के जन्म के बाद ये अक्सर ठीक हो जाती है, लेकिन माँ और बच्चे की सेहत पर इसका असर पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरों में कैंसर के खिलाफ लड़ाई में एक नई उम्मीद, मर्क एनको और मोडर्ना की ओर से तैयार इंटिसमेरान नाम के एक खास वैक्सीन ने त्वचा के कैंसर को दोबारा होने से रोकने में अच्छे नतीजे दिए हैं। 1000 से अधिक मरीजों पर इसका परीक्षण किया गया। शरीर के लोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने वाले इलाज के साथ दिए जाने वाले इस टीके ने कैंसर के दूसरे हिस्सों में फैलने के खतरों को भी काफ़ी कम किया है। दुनिया के मौसम पर एलनीनो का बड़ा असर पड़ने के संकेत मिल रहे हैं। प्रशांत महासागर में बन रहा एलनीनो अब तक के सबसे शक्तिशाली एलनीनो में से एक हो सकता है। समुद्र का तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा बढ़ चुका है और आने वाले महीनों में ये अंतर 3 डिग्री तक पहुंच सकता है। इसका असर बारिश, गर्मी और तूफानों पर पड़ सकता है। भारत में मानसून की बारिश सामान्य से कम रही, जबकि अटलांटिक महासागर में तूफानों की गतिविधि भी घटी है। वैज्ञानिकों की चेतावनी है कि एलनीनो और जलवायु परिवर्तन का मिला जुला असर 2027 को दुनिया का अब तक का सबसे गर्म साल बना सकता है। और अब चलिए जानते हैं कि मौसम का हाल कैसा रहेगा। हमारे इलाके पर पूर्व से आ रहे अस्थिर बादलों का असर है। आज रात को और कल सवेरे के दौरान देश के उत्तर और ऊंचाइयों पर रहकर बरसात होगी। शाम को पश्चिम और सेंट्रल प्लाटू पर बादल घिरे रहेंगे और बरसात हो सकती है। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटो पर 16 से 18 और अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम शहरी इलाकों पर 20 से 22, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। सूर्यास्त होगा 5:58 पर, सूर्योदय 6:27 पर।

0: तो देश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। तकनीकी सहायक हमारे साथ रहे फैजान, उनको हम धन्यवाद देते हैं। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

शोक समाचार सुनिए। मोहम्मद नूरानी मुदू 51 साल के इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज रात के पौने दस बजे उन्हीं के घर मोगुयाव रोड कौंदमास पावे से उठाकर मस्जिद रजा ले जाया जाएगा और फिर दफनाने के लिए इलाके का कब्रिस्तान फ्यूनरल टुनाइट एट 9:45 PM। मोफियाटिल न्यू ग्रोव में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड की श्री तिरभुवन टैगोर की मृत्यु

हो गई हैं। श्री त्रिभुवन तेंगौ की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें सूरज के नाम से, सुखराज के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज दिन के दौरान उठाई गई। चंबित लेन मैडम लुलू रोजबेल में 49 साल की 49 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती किसुंती शाम की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम कुंती राम, लोग उन्हें आरती के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल दिन के ढाई बजे उनके पति संजय शाम के मकान रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रोजबेल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2:30 PM। रॉयल रोड अमोरी में 21 साल के निमालेन मुनिसोमी की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें निलविन के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल दिन के 10 बजे उनके पिता विसालेन मुनिसोमी के मकान अमोरी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अमोरी ही की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। बेनोदेर दु सेंट पियर वाली दे प्रेत में 60 साल के 60 ईयर्स ओल्ड के चंद्रनाथ बुल्किया की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उन्हीं के मकान वाली दे प्रेत से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भूले की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। वाल्मीकि रोड बुआमोंग प्लेन दी पापाई में 30 साल के 30 ईयर्स ओल्ड के चंद्रशेखर रंगलोल की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें किलान के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल सुबह के 9 बजे उनके पिता दिवानंद रंगलोल के मकान प्लेन दी पापाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पितों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9 AM। Montfleury, circonstance Saint-Piamé, 82 years old qui ni la main ni la doux qui mritu ho gai hai, ni la main ni la doux qui mritu ho gai hai. पैदाइश नाम डालापा, लोग उन्हें सिलिया के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल दिन के 10 बजे उनके बेटे कृष्णा नीलादू के मकान सैंपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सर्कंस्टांस की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। डब्लिया लेन बेलव्यू मोरेल में 66 साल के 66 ईयर्स ओल्ड के सत्यदेव सिडोनी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके बेटे रवि अखिलेश सिडोनी के मकान बेलव्यू मोरेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लामोरी की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। Route des Pamplemousses, la croisée vallée des prêtres, Port-Lumet, 60 years old, chez Durga Lachuman qui est mritu ho gai hai. Unke arthi kal din ke 2 baje, unke bhai Vikram Lachuman ke makan, Port-Lumet se utha kar antim sanskar ke liye sipahi brule, vallée des prêtres ki shumshan humi le jaye jayegi. Cremation tomorrow at 2 PM. रॉयल रोड फोंडू साक में 73 years old की लक्ष्मी प्रसाद हीरा की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे श्री अमित हीरा के मकान फोंडू साक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फोंडू साक की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। बेटका रोड यूनियन पार्क में 88 years old के मोहर लाल सिंह राम खिलावन की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें महेश के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे कैलाश राम खिलावन के मकान बेटका रोड यूनियन पार्क से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मारी जानी रोजबेल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।

0: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
1: शनिवार 22 अगस्त श्री श्री कृष्णा बलराम मंदिर, नवजीवन काली मंदिर, शिव मंदिर, बृहत वैष्णव सभा, रामेश्वरनाथ मंदिर और प्लेंदेहोश और रिवियर जुहांपा की अन्य धार्मिक सभाओं के साथ मिलकर

0: यात्रा का आयोजन कर रहा है जो नवजीवन काली मंदिर से जो प्लेंदिगोश में है निकलकर रामेश्वरनाथ मंदिर गविया जी गौपत तक जाएगी। समय रहेगा 2:30 बजे। शनिवार 22 अगस्त को मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा के तत्वधान में आर्य रविवंश सभा जो गिरिया जगहों में है श्रावण यज्ञ का आयोजन कर रहा है जो शाम के 3 बजे होगी। शनिवार 22 अगस्त सुबह 4 बजे से रात के 10 बजे तक सिंधमा काली सभा जो टैगोर रोड लालमाटी में है 108 हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन कर रहा है। श्रावण मास के संदर्भ में शनिवार 22 अगस्त को मॉरिशस आर्य ऋग्वेद प्रजननी सभा के तत्वाधान में विवेकानंद सभा जो तोंबो बे शाखा नंबर 2 में है शाम के 4 बजे यज्ञ और प्रवचन का आयोजन कर रहा है। जगह श्री राम लाखनलाल लेन तोंबोवे रोड त्याहूर। शनिवार 22 अगस्त को मिडलैंड्स के श्री जगदीश्वरनाथ शिवाला द्वारा श्री नरसिम्हा देव तथा नवग्रह की मूर्ति स्थापना की जा रही है। इस संदर्भ में 2:30 बजे एक जुलूस निकाला जाएगा।
1: एमबीसी रेडियो 24 आवर्स अ डे।
2: सेबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से इन इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। शनिवार 22 अगस्त को सुबह के 8:30 बजे से लेकर दिन के 1 बजे तक सैखवा और आसपास के इलाकों में गुद्दे पॉम्पलमूस और पर्लटोरो में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और शनिवार 22 अगस्त को सुबह के 8:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक रॉयल रोड सोचीज रोड और बॉम्बू रोड में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और शनिवार 22 अगस्त को सुबह 8:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक वालेता और आसपास के इलाकों में रुथवायाल शिवाला रोड मोरी रोड सावाना रोड मदुराई रोड जमाल रोड और रुयल रोड में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और रविवार 23 अगस्त को सुबह के 8:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक फॉरेस्ट साइड और आसपास के इलाकों में देवोयन मुनिये लुमिना रोड में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और रविवार 23 अगस्त को सुबह के 8:30 बजे से लेकर दिन के 3 बजे तक पोर्ट लुइस में और आसपास के इलाकों में रू राहुल रिवे डॉक्टर वानसिपो बुगार्ड ला गेटे सेंट जेम्स टियाने सेंट जॉन हेनरी ले सिडाने नाहाबू सोलिम और मेया बार्टलेमी रोड में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और रविवार 23 अगस्त को सुबह दिन के 12:30 बजे दिन के 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक सैखवा में और आसपास के इलाकों में रुई निकोले देबूशे मारिया मैन टेम्पल आले तमारे और रेजिडेंस पर्लटोरो में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और रविवार 23 अगस्त को सुबह के 8:30 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक रिश्तिया में और आसपास के इलाकों में जैसे कि रिश्तिया रोड सुशील लेन शिवाला रोड मुस्लिम सिमेट्री रोड स्कूल लेन और रेजिडेंस रोमा में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना सूचना दिए ही बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी और सेबी अपने ग्राहकों से क्षमा चाहते हैं और अपना इंतजाम कर लेने की मांग करते हैं। शुक्रिया।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।
1: बजली प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।
2: श्रोताओं, श्रावण का महीना सिर्फ पूजा का नहीं बल्कि अपने भीतर की शांति को जगाने का महीना है। महादेव को जल चढ़ाते हुए हम अपने अहंकार, चिंता, नकारात्मकता को भी उनके चरणों में अर्पित कर सकते हैं। हर हर महादेव इस मंत्र का जाप करते रहिए और अगले गाने को आप जरूर गाइए, गुनगुनाइए हमारे साथ।

भजले प्रभु का नाम। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रोताओं, हम शिव की महिमा का गुणगान कर रहे हैं आपके मनपसंद रेडियो चैनल पे। श्रावण मास का महीना चल रहा है, भोलेनाथ को एक लोटा जल, कुछ बेलपत और सच्चे मन की प्रार्थना इतनी ही काफ़ी है भक्ति की राह पर आगे बढ़ने के लिए। शिव हमें सिखाते हैं कि सादगी में भी अपार शक्ति होती है।

श्रोताओं, सावन का महीना, सावन की फुहारे, मंदिर की घंटियों और हर तरफ गूंजता महादेव का नाम। सच कहे तो श्रावण का हर पल अपने आप में एक भक्ति गीत बन जाता है। आइए आज दिल से कहे ओम नमः शिवाय।

श्रोताओं, शिव जी हमें ये सिखाते हैं कि विष जैसी परिस्थितियों भी जीवन में आए तो धैर्य और विवेक के साथ उनका सामना किया जा सकता है। श्रावण में हमें इसे संयम और विश्वास की याद दिलाता है। तो चाहिए, कार्यक्रम का समापन हम करने जा रहे हैं। साथ निभाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे तकनीकी सहायक डोमिनिक को धन्यवाद देंगे। एक और मुलाकात तक आप हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।

तू ही राजिक हर एक बशर, तू ही मालिक शाम सहर, तेरी हमद से बेदिलों को नूर, तू ही बख्श दे सभी का कसूर। तेरी ज़ात पाक है ऐ खुदा, तेरी शान सबसे जुदा जुदा। ये रेडियो मॉरिशस है उर्दू नशरियात में फिलिशप में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। मजीद सामीन, दुनिया में अजीम लोग बहुत आए लेकिन रहमतुल आलमीन सिर्फ एक हैं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।

हर तरफ तेरी ही कुदरत के हैं जलवे या रब, तेरी रहमत से मुनव्वर हैं ज़माने या रब। तूने सूरज को ज़िया दी, तूने तारों को चमक, तेरी कुदरत का है हर सिमत नज़ारा या रब। ये रेडियो मॉरिशस है उर्दू नशरियात महफिल शब में एक बार फिर आप सबको दिल की गहराई से खुशामदीद। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, यकीनन तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है।

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का सबसे रोशन पहलू था रहमत। जो पत्थर मारते थे उनके लिए भी दुआ, जो जलील करते थे उनके लिए भी बख्शिश, जो दुश्मनी करते थे उनके लिए भी मोहब्बत। सुभान अल्लाह। मज़ीद आमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया वालिदैन का एहतराम, हमसायों का ख्याल, यतीमों से मोहब्बत, गरीबों की मदद, सच्चाई और अमानत। मज़ीद आमीन। अगर हम इन चंद उसूलों पर अमल कर लें तो हमारी

ज़िंदगी भी नूर से भर सकती है। या अल्लाह, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को समझने, उस पर अमल करने और उसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। आमीन। हमें भी अपनी दुआओं में शामिल करें। तकनीक की मदद अंजू की रही है, शुक्रगुजार है हम। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक परवीज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
2: भोजपुरी तड़का।

तड़का में तो हर स्वागत करत हैं जा अभी 9:08 होल बा और तो हर खातिर लेके आल हैं जा हमने उ कार्यक्रम जन के इंतजार तो लग के हर रोज रहेला रोज रात के 9 से शुरू होला। आज थोड़ा सा देरी हो गल और फिर भी तोहर खातिर तोहर पसंद के गाना हम जरूर चलावब जा। चला शुरू करी जा हमने मुकेश चंडी जी के गावली गाना संगे कसम खाई होला गाना है। चला शुरू

0: भोजपुरी तड़का
1: चल तड़का लगावा जाता नहीं भोजपुरी में हमने के कार्यक्रम में भाग ले जा और हमने के बोला जा कौन गाना सुने खोजा था वह 5251700005 हमने के नंबर है मैसेज भेजे के और जैसे टेलीफोन करे खोजवा जा तो टेलीफोन करके जा दो गपशप भी कर ले अब जा 4028085 पर और हमने के कार्यक्रम में भाग लेके बोला जामे के कौन गीत सुने खोजा था और सुने खोजा था केकरा सुनाई खोजा था सुनवाई खोजा था बल्कि और साथ साथ थोड़ी ये थोड़ा गुनगुना भी लिया जा हमने के भोजपुरी के कार्यक्रम है एक में तड़का जब बोली ला जाता तड़का तोहर आवाज़ से भी लगे ला संगे संगे मिल के एक कार्यक्रम प्रस्तुत करी जा और ये अभी संजय हरिचरण जी के गावल गाना सुनी जा विश्वानी जी के पसीन के गाना है विश्वानी जी रहेलन बॉम्बू और ये गाना मंगले हवन अपन भाई शेखर के नाम अपन भाई शेखर के एक गाना सुनवाई खोजत हवन और भोजपुरी के भोजपुरी बोले के खुशी रहलन उनकर भाई और उनकर भाई खुशी रहलन भोजपुरी सिखाई के भी एक खातिर गाना मंगले हवन संजय हरिचरण जी के गावल

अभी चला संजय हरिचरण जी के गायला गवल गाना सुन लीजा। संजय जी के तो बड़ी फरमाइश हुआ था। अभी कुछ संजय सिगुलाम जी के गवल गाना सुना जाओ रे। ई बड़ा रोमांटिक सन गाना वा। चलो हमने सुनी जाए गीत विद्या जी के पसंद पर सैंपल से। विद्या जी गाना मंगले हमन भाई मानव खातिर।

दिल तो चलिए जला जिक के पसीन कर लेवेला तो ओकर संगे ही चल जला। दिल के हमने कितना दिन से अपन संगे रखी ला जा, बस बेवफा हो जाला कबो कबो जब अपन अपन अंदर प्यार महसूस करेला। चला ये दिल होला गाना के बाद, प्यार होला गाना के बाद, चला हमने सुनी जा मित्रो एक्सप्रेस के बारे में। मित्रो एक्सप्रेस की गीतवा हमने के महेश विश्वजीत जी सुनई हन, और ये गाना मंगले हवन शांति जी त्याहूर से। शांति जी गाना मंगले हवन दागुचिया के अपन पूरा मराठी परिवार खातिर, अप्पा दागुचिया के अपन भगीना ओम खातिर, और ये अपन भाई बलराम जी खातिर, अपन लापलिस भाई बलराम जी खातिर। तो चला हमने ये गाना पूरा परिवार के नाम करी राजा।

चहल पहल भी मचेला और संगे संगे हमने के चेला अनुशासन के भी पालन करे के जहाँ भर चली ला जा। सड़क सुरक्षा हमने खातिर बहुत आवश्यक है और सड़क सुरक्षा खाली हमने गाड़ी लोग से गाड़ी चालक लोग से नहीं स्प्रे करी ला जा, हमने ई एक्सपेक्ट करी ला जा कि जो पदयात्री लोग हवन जा जोन पदयात्री लोग हवन जा उन लोग भी करियन से खूब तरह से बहुत तरह से सड़क सुरक्षा के पालन। और ऐसे में चला हमने आगे बढ़ते बढ़ते जाए ला जा ज्ञान महिपत लाल जी की आवाज़ के संगे उम्दा आवाज़ बहुत ही प्रोफेशनल आवाज़ ज्ञान महिपत लाल जी की गावरी गाना हमने आत्माराम जी के नाम करत हैं जा बेरिया से आत्माराम जी गाना मंगले हवन अपन बहिन लोग खातिर सुदेवी ललिता छोटी जी और प्रभावती जी खातिर और बेलिया के स्नो परिवार खातिर।

दादा दादी की कहानी चला सुनी जा हमनी। और दादा दादी के ई कहानी बड़ा पीड़ा देवेला। कितना पीड़ा सहले रहलन जा, अपन देश छोड़ के आ रहलन जा, अपन देश परिवार अपन सब कुछ छोड़ के आ रहलन जा। इतना समय बीत गलन कर यात्रा में, और यात्रा के बाद आके है जा पर अपन तरफ से कड़ी मेहनत कर लन जा। कड़ी मेहनत भी ऐसा जहाँ पर उनका राग को

सुविधा नहीं मिला था हल, बड़ी पीड़ा होला उन लोग के जीवन रहल, बड़ा ही दुख भरा जीवन रहल लोग के। चला ये कहानी हमने सुनी जगासेन सिंगारो जी के गावल नोवेल फ्रांस के गायत्री जी के फरमाइश पर। अपन बेटा अजय खातिर मंगलवन गायत्री जी गाना और मायबू के मामी कल्याणी मोहन जी खातिर, फिर मोतायलों के बाबी शकुंतला जी खातिर, नोवेल फ्रांस के अपन सखी गीता बाई जी खातिर।

दादा की कहानी, दादी की कहानी, मन के बड़ा दर्द दे दे वेला। चलो अभी कुछ सुनी जाओ हमने विश्वानी दुमन जी के पसीन के गाना और गाना है सुनानो यन जी के गावल। विश्वानी जी गाना मंगल हवन अपन बहिन लोग खातिर, उनकर बहिन हवन इंदिरा और शारदा और ये अपन सहेली लोग खातिर भी मंगल हवन गाना नीला और प्रतिभा खातिर, फिर शोभा जी खातिर और गीता गजाधर जी खातिर।

सुना नहीं अंजू के गावल गाना के बाद चला गीत गवाई में चले के बाद चला हो चंदा गायला जा संगे संगे भिजमावती संपत जी के आवाज के और फुलवंती जी गाना मंगले हवन वाकवा से अपन पूरा परिवार खातिर और संगे संगे सब लोग के गाना नजर करत हवन जिनकर घर में शादी बा इस सप्ताहांत के।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का,
2: भोजपुरी तड़का में चला सुनी जा हमनी कोन फुलवा फुलेला तो रंगदवाई सनाने यंज के गावल गाना आई तो जाने ले जा। अब ये गाना हमने से मंगले हवन श्रीमती जी सुयाग से और पूरा परिवार खातिर, मोहेश परिवार और चंद्रमुनी परिवार खातिर मंगले हवन गाना, तो चला सुनी जा कोन फुलवा फुलेला।

अरे गुनी बुलाने से क्या होगा, जब देवता देवी आसन छोड़ दिया तो खीर पूरी चढ़ाने से क्या होगा। आ भर पेट जब भात खा लिया तो अब खुदी चुनने से क्या होगा, अरे गंदे पानी पीकर

अरे रिश्ता जोड़ने से क्या होगा, अपने घर के कुत्ता जब काट दिया तो पुलिस को बताने से क्या होगा। अरे सफेद चादर में दाग लग गई तो अरे नदी में जाकर धोने से क्या होगा, जब घर की चौकट साफ किया नहीं तो आंगन झलकाने से क्या होगा। जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा, जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने

अभी श्रावण मास चलता ही पावन समय है और ये पावन समय में हम इसे फ्लिक ऑफ फ्लैग के अनमृत अनिता जी मंगले होमानी को गाना गहल बहल गौरी जी के आवाज़ में और यही गाना हमने बजवाया था जहाँ मोदार बेया के अनिता जी के पसीन पर। अनिता जी भी बहुत बहुत मंगल कामना देवत हवन अनिता जी के संगे संगे, मतलब दुगो अनिता जी मंगले हवन, एगो मोदार बेया के और एक गो फ्री ऑफ फ्लैग से दुनो जना मंगले हवन जा ई गाना और सबको के जन ई जन महीना बा श्रावण मास के करके एकर खातिर मंगल कामना देवत हवन जा। अनिता लाल जी जी गाना लाल जी परिवार खातिर, गोगा परिवार खातिर और ईतू परिवार खातिर मंगत हवन और अनिता ता फ्लिक ऑफ फ्लैग से मंगत हवन गाना अपन सब परिवार लोग खातिर, अपन सब संगतिया लोग खातिर और हमने के सब श्रोता लोग खातिर।

जरा आप पूर्णिमा फकीरा जी के गावल गाना सुनी जा गंगा मैया होला। अभी श्रावण मास के अवसर पर गंगा मैया के दर्शन शिव जी के दर्शन करे के सब भक्त लोग बढ़त हवन जा गंगा तालाब बगल। तो चला ये गाना हमने बजावत है जा कल्याणी जी खातिर बॉशी से कल्याणी जी गाना मंगले हवन। गीता राधे किशुन खातिर, अंजू खातिर, सत्यानंद सारिक जी खातिर, बड़की मुनोवा खातिर और खुद पूर्णिमा फकीरा जी खातिर।

चल अब गांव गोप के सुनीता जी के बगल से, उनकर बगल से हमने उनकर बहिन कुंगुमा रहलन, उनकर बहिन विमाला जी खातिर बजावत है जाए गाना। यानी कि गांव गोप से सुनीता जी कुंगुमा के अपन बहिन विमाला के नाम करत हवन कृष्ण उखट जी के गावल ई गीत। चल सुनी जा।

और एगो गाना हमने कृष्ण उखद जी के ही गावल सुनब जा और ये गाना बजवाई ला जा हमने विवेक जी खातिर प्रेंडी पापा से विवेक जी गाना मंगले होवन उनका शादी के आज सालगिरह बा तो ई शादी होला गाना मंगले होवन अपन पत्नी अनुषा खातिर।

पूर्णिमा फकीरा जी गावा धवन पलना में झूले श्री राम इलालना चला सुनी जा हमने फकीरा परिवार खातिर कालिया चेती परिवार खातिर दीबी दयाल परिवार और दसोई परिवार खातिर और पूर्णिमा जी गाना मंगले हवन नखोशनुआ के अपन सब छात्रा लोग खातिर और SSON के अपन सब संगतिया लोग खातिर

और चला हमने कुणाल बाबूलाल के गावाले को गाना सुनी जा। ये गाना हमने से महेंद्र जी मंगले हवन नेपाल मा से दीदी मान के नाम करत हवन गाना।

उमा जी के तरफ से विनोद शिवदत्त जी के गावल ई गाना हमने प्रस्तुत करे थे, जहाँ उमा जी सब भक्तगण के मंगल कामना देवत हवन श्रावण मास के, और परितालाब की ओर जात हो जा तो परितालाब की ओर जाते जाते तो हर मन बहुत बहुत ही शांत और बहुत ही हिम्मत

सुनी जाओ अब हमने विजय राव जी के गावेली गाना नारी प्रगति परी गाना गावत हुआ विजय राव जी ये गाना हमने बजावत है जा अनुषा जी खातिर।

और चल अपन बचपन याद करी जा, हमने गांव के लाफों तेन मा गाना सुनी जा। राजकमल चिंतामणि जी गैले हवानी गाना और ई गाना हमी सुभाष जी खातिर बजवाओ थे जा। प्लेंडे पापाई के सुभाष जी गाना मंगले हो वन और ये अपन सब संगतियालो के नाम करत हवन, बल्कि बचपन के संगतियालो के नाम करत हवन।

और हमने के कार्यक्रम में अभी कुत्ता लग के सुनवाई ला जब भी धरती बाल माँ संगेतनी सन सिकवा शिकायत चला सुनी जा लीलो माथुर सुगन जी के गावली गाना। और ये गाना हमने बजाया था जा संदेश जी के पसंद पर अपन पत्नी के नाम करत हवानी गाना।

चला सुनवाई ला जाते हो लोग के हमने ई गाना चट्टनिया मीरा मोहन जी के गावल गाना और मीरा मोहन जी के गावल ई गीत हमने बजाओ थे जा त्रियोले के ललिता चाची खातिर ललिता चाची मंगले होनी गाना अपन बहन सुदेवी देवी ना ज्ञानी और नीता खातिर छोटी जी प्रभावती जी आत्मा राम जी खातिर माला राम जवन जी खातिर सुखलाल मौसी और उषा लुकाना जी खातिर

0: भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
2: चला हमनी माँ के प्रणाम करी जा, माँ के आदर करी जा और माँ पर आधारित ही गाना सुने जा। यह मेवानंद ठाकुर जी के गावल गाना, यानी कि किशोर ठाकुर जी के गावल गाना।

और अब चला सुनी जा हमने रोशनी नोबिन जो के कवाली गाना और ये हमने के इतिहास पर थोड़ा सा बातचीत रही, थोड़ा हमने के डेवलपमेंट पर बातचीत रही। तो नोबिन रोशनी जी के कवाली गाना के संगे संगे हमने के भोजपुरी तड़का कार्यक्रम भी समाप्त हो जाए। ये कार्यक्रम के बाद सुनिया जा आज के हमने के सुनहरे पल कार्यक्रम लेके आई हन की निशा और पुराना गीत के कार्यक्रम सुनते रहिए। आवतला फिर मिलब जा, शुभ रात्रि, नमस्ते।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: पुरानी फिल्मों के गीत आज भी इसलिए अमर हैं क्योंकि उनमें सिर्फ सुर नहीं, दिल की सच्चाई बसी हुई है। आइए उन अनमोल नगमों का स्वागत करें। जी हाँ दोस्त, आप सभी लोगों का भी स्वागत करना चाहेंगे इस खूबसूरत से शो में जिसका नाम है सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस। गुड इवनिंग, नमस्कार और गिनिशा का प्रणाम।

हर शाम एक नई कहानी लिखी है और हर पुराना गीत उस कहानी को और भी खूबसूरत बना देता है। तो चलिए आज की शाम, आज की रात को यादों के नाम करते हैं और उन्हीं खूबसूरत यादों को दोबारा फिर से जीने के लिए आप तैयार हो जाइए ऑन रेडियो मॉरिशस।

जिंदगी चाहे कितनी भी तेज क्यों ना चल रही हो, पुराने गीत हमें वो दो पल रुक कर जीना सिखा देते हैं। इसी सुकून के साथ बने रहे, हमारा साथ यूं ही देते रहे। ये गीत सिर्फ रेडियो पर नहीं बज रहे हैं, ये हर उस दिल में गूंज रहे हैं जहां प्यार, यादें और एहसास आज भी जिंदा है। और ये है आपका सुनहरे पल।

वैसे हर लफ्ज, हर धुन और हर आवाज में एक जादू है मेरी जान, जो सिर्फ पुराने बॉलीवुड के गीतों में ही मिलता है। आज उसी जादू का आनंद लीजिए और आराम से बैठ जाइए और इन खूबसूरत खूबसूरत नगमों में खो जाने के लिए तैयार हो जाइए।

रात बहुत हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर चाय पीने का इरादा है तो हम तो कहेंगे कि एक कप चाय, ठंडी हवा और रेडियो मॉरिशस पर बजते पुराने गीत जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का असली मजा इसी में है। बिल्कुल जी, अगला नगमा हमारी तरफ से उन तमाम सुनने वालों के नाम जो प्यार से शिद्दत से बैठे हुए हैं और जो हमारा साथ गुनगुना रहे हैं।

एवरग्रीन गाने सबके दिलों को एक एक साथ जोड़ देते हैं। आज हम वही दिलों का रिश्ता लेकर आए हैं। कभी अपने माँ बाप के साथ बैठकर ये गीत सुनिए और समझ जाएंगे कि असली संगीत किसे कहते हैं। ये है आपका सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस, दिल से आपके लिए।

कुछ गीत वक्त के साथ और भी खूबसूरत हो जाते हैं और आज हम उन्हीं गीतों का खजाना लेकर आपके बीच हाजिर हैं। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हर एक गीत को आप दिल से एंजॉय कर रहे हो और बस हर इन खूबसूरत इमोशंस को फिर से जी रहे हो। बस यूं ही साथ देते रहे गिनिशा का ऑन रेडियो मॉरिशस इन योर सुनहरे पल।

तो चलिए जी, फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, फिर से मिलेंगे एक और सुनहरे पल के खूबसूरत शो में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि,

0: मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस
0: रेडियो मॉरिशस
1: रेडियो मॉरिशस

0: so sexy. Radio Mauritius.
1: 819 किलोहर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस.
0: रेडियो मॉरिशस.
1: रेडियो मॉरिशस.